आपने अपने रेडियो से पर ट्यून किया है नब्बे दशमलव हर्ट्ज रेडियो आजाद है। सुबह के 7 बजे हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आज दिन गुरुवार शक संवत 1947 के श्रावण मास की एकवीं तिथि तदनुसार 13 अगस्त 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

जीवन सौरभ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के बारे में ये बात प्रचारित हो गई कि उसका चेहरा बहुत मनहूस है। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इस बात की जांच खुद करने का फैसला किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रख लिया और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंचा। संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजा भोजन नहीं कर सका। इस घटना से राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का हुक्म दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना तो उसने पूछा, महाराज, आप इस निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा और मुझे दिन भर भोजन ही प्राप्त नहीं हो सका। एक राजा होकर मैं दिन भर भूखा रहा। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, क्षमा करें, किंतु प्रातःकाल इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका मुख देखा था। आपको तो मात्र भोजन ही नहीं मिल सका, लेकिन आपके मुख दर्शन से तो इसे मृत्यु दंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि अधिक मनहूस कौन है। मंत्री की बात सुनकर राजा भौचक्का रह गया। राजा को किंग कर्तव्य विमूढ़ देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता, वो तो ईश्वर की देन है। मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। अंधविश्वास करना कभी भी उचित नहीं होता। जीवन में घटनाओं को खुली और नई दृष्टि से देखने पर मन अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि सूक्त 187 और उसके बाद आनंद लीजिए का भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर आधारित होगा आज का वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। खेलों की परीक्षा, जी बिल्कुल परीक्षा, लेकिन वो भी खेलों की। इस विषय पर बात होगी आज हमारे कार्यक्रम बाल सभा में और जो हम आपको सुनाएंगे सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम में स्वर होंगे परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी के। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में चर्चा सुनवाएंगे आपको सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से पूर्वा खले की। हमारा विशेष कार्यक्रम नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में विषय पर सुनिए सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। देश के संस्थान कार्यक्रम सुनिए सुबह 10 बजे। इसमें आज बात होगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नीमा और भगवती सक्सेना का। याद करो कुर्बानी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। रमेश चंद्र दत्त की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा का समय होगा 11 बजे। 11 बजे सुनाएंगे रेडियो रिपोर्ट, उसके बाद आनंद लीजिए परिक्रमा का। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर।

तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। तो अब एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद सुनते हैं अक्षय निधि।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 187 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अन्न, छंद है अनुष्टुप गर्भा उष्णिक, बृहती और गायत्री।
2: पितुम न स्तोषम महो धर्माणं तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्व मर्दयत। जिसके ओर से तीनों लोकों में यशस्वी इंद्रदेव ने वृत्र नामक असुर के अंग प्रत्यंगों को काट काट कर मारा, उन महान शक्तिशाली सबके पोषक और धारणकर्ता अन्नदेव की हम

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्व मर्दयत, जिसके ओर से तीनों लोकों में यशस्वी इंद्रदेव ने वृत्र नामक असुर के अंग प्रत्यंगों को काट काट कर मारा, उन महान शक्तिशाली सबके पोषक और धारणकर्ता अन्नदेव की हम स्तुति करते हैं। स्वादो पितो मधो पितो वयम् त्वा ववृमहे अस्माकमविता भव। हे स्वादिष्ट पालक और माधुर्य युक्त रसों के पोषक अन्नदेव, हम आप में विद्यमान पोषक तत्व को धारण करते हैं, आप हमारे संरक्षक हैं। उपनः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भुरद्विषेण्यः सखा सुषेवो अद्वयाः। हे पालन कर्ता अन्नदेव, आप कल्याणकारी सुखप्रद विद्वेष रहित मित्र के समान हितैषी भली भांति सेवनीय और ईर्ष्या द्वेष से रहित हैं। आप मंगलकारी संरक्षण युक्त पोषक तत्वों से युक्त होकर हमारे समीप आए। तवत्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः दिवि वाता इव श्रिताः। हे परिपोषक अन्नदेव, जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपके वे विभिन्न रस संपूर्ण लोकों में विद्यमान हैं। तव त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो प्र स्वाद्याम्नो रसानाम तु विग्रीवा इवे रते। हे परिपोषक अन्नदेव, आपके उपासक कृषक आपसे दान वृत्ति को ग्रहण करते हैं। हे माधुर्य युक्त पोषक देव, आपके साधक आपकी पोषण शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके रसों का सेवन करने वाले पुष्टि ग्रीवा युक्त होकर सर्वत्र विचरण करते हैं। त्वे पितो महानाम देवानाम मनोहितम अकारी चारु केतुना तवा हिम वसावधीत। हे सर्वपालक अन्नदेव, महान देवों का मन भी आपके लिए लालायित रहता है। इंद्रदेव ने आपकी श्रेष्ठ पोषक शक्ति एवं संरक्षक शक्ति से ही अहि असुर का वध करके महान कार्य किया। यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाम अत्राचिन्नो मधो पितोरम भक्षाय गम्याः। हे सर्वपालक अन्नदेव, जब जलों से परिपूर्ण बादलों का शुभ जल आपके समीप पहुंचता है, तब आप हमारे पोषण के लिए इस विश्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यदमा पोषधीनाम परिम शमा रिषा महे वातापे पीव इद्भव। जब जलों और औषधि तत्वों से युक्त सभी प्रकार के कल्याणकारी अन्न को हम ग्रहण करते हैं, तब हे शरीर, आप इस पोषक अन्न से स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट हों। यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे वातापे पीव इद भव। हे सुख स्वरूप अन्न देव, जब अन्न में जौ गेहूं आदि पदार्थों के साथ गाय के दूध घृतादि पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, तब हमारा शरीर स्वस्थ सुदृढ़ हो। करम्भ ओषधे भव पीवो वृक्क उदारथि वातापे पीव इद भव। हे परिपक्व अन्न देव, पौष्टिक आरोग्य प्रद तथा इंद्रिय सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, पके हुए अन्नों के सेवन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े। तम त्वा वयम् पितो वचोभिर् गावो न हव्या सुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यम् त्वा सधमादम्। हे पालनकर्ता अन्नदेव, आप देव शक्तियों और मनुष्यों दोनों को ही समान रूप से आनंदित करने वाले हैं। प्रशंसित स्तोत्रों से आपको उसी प्रकार अभिशुत करते हैं जैसे गोपाल गौओं से दूध दुहते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 187 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

हर देश का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन भारत की धरती से इतिहास कुछ अलग तरह से गुजरा है। इसके अतीत में अनगिनत कहानियां हैं, वीरों की, जय पराजय की। सदियों से कितने घात प्रतिघात सहे भारत ने, कितने ही आक्रमण हुए भारत पर, अनगिनत युद्धों की साक्षी रही भारत की धरती। इस देश पर शासन तो बहुतों ने किया, लेकिन भारत और भारतीयता को कोई जीत नहीं सका। देश की अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे वीर दुर्गादास राठौर, जिनकी वीरता, समर्पण और त्याग की गाथा राजस्थान के जन मन में आज भी बसी हुई है, जो आज भी लोक कंठ से सहज प्रवाहित होती है कि डबक डबक ढोल बाजे दे दे ठौर नगारा की, जे आसे घर दुर्गो न हो तो सुन्नत होती सारा की। अर्थात ये ढोल, ये उत्सव, ये स्वाभिमान, ये आनंद नहीं होता, हमारी अस्मिता न बचती अगर दुर्गादास राठौर नहीं होते। दुर्गादास राठौर एक वीर राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को पराजित कर अपनी रणनीति, वीरता, त्याग और समर्पण के बल पर मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखा। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की तरह उन्होंने भी मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। औरंगजेब को परास्त करने के लिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि उसका बेटा मोहम्मद अकबर तक उनके पाले में आ गया था। आज भी दुर्गादास राठौर की वीरता और ईमानदारी की गाथा पूरे राजस्थान में गाई जाती है। दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त सन 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण राठौर जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनकी मां का नाम नेत कमर बाई था। उनके माता पिता के बीच कुछ मतभेद रहे, जिसके कारण दुर्गादास के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। इस तरह दुर्गादास राठौर का पालन पोषण लुनावा नामक गांव में हुआ। खेती किसानी के बीच यहीं बालक दुर्गादास धीरे धीरे बड़े हो रहे थे।

दुर्गादास राठौर अपनी माँ की छत्रछाया में बड़े हुए। सूर्यवंशी राठौर राजपूत कुल का रक्त उनके भीतर बह रहा था। वो बचपन से ही अत्यंत वीर और साहसी थे। स्वाभिमान और देशभक्ति के संस्कार माँ ने दिए। एक दिन पशुपालन का कार्य करने वाले एक रायका ने उनके खेत में अपने ऊंट छोड़ दिए। ऊंटों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। जब दुर्गादास राठौर ने अपना खेत देखा तो उन्होंने रायका से इस बात की शिकायत की, लेकिन रायका ने अपनी गलती नहीं मानी और बातचीत बढ़ गई। इस बातचीत के बीच ही रायका जोधपुर दरबार और राजा को भला बुरा कहने लगा। जोधपुर दरबार के लिए अपशब्द सुनकर दुर्गादास राठौर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी कटार

तुम्हारी देशभक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि ये लड़का विशेष है, ये मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और भविष्य में ऐसा ही हुआ भी। महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौर को अपनी सेना में रख लिया। राजा हर पल उन्हें अपने साथ रखते। दुर्गादास राठौर उनके विश्वास पात्र लोगों में शामिल हो गए। युद्ध अभियान में भी वो राजा के साथ जाया करते। ये वो समय था जब औरंगजेब की नजर मारवाड़ पर थी, इसलिए मुगल सेना से लगातार संघर्ष जारी था। दुर्गादास राठौर पूरी निष्ठा और वीरता के साथ महाराजा जसवंत सिंह के साथ थे। लगातार कई युद्ध और संघर्ष के बाद अंततः औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच संधि हुई। तय हुआ कि अगर जोधपुर पर कोई आक्रमण हुआ तो मुगल सेना साथ देगी और मुगलों के दुश्मन के विरुद्ध महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देंगे। औरंगजेब ने पहले दक्षिण में युद्ध के लिए महाराजा जसवंत सिंह का सहयोग लिया और फिर पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें काबुल भेजा। इस संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया, लेकिन मरते हुए राजा की चिंता मारवाड़ को लेकर ही थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी संतान गद्दी पर नहीं बैठी तो मारवाड़ पर औरंगजेब अपना अधिकार कर लेगा, और औरंगजेब के शासन का अर्थ है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का समाप्त हो जाना। ऐसे समय में दुर्गादास राठौर ने महाराजा जसवंत सिंह को वचन दिया कि उनकी संतान को वो मारवाड़ का शासक अवश्य बनाएंगे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्गादास राठौर के भीतर जी उठा एक संकल्प और मारवाड़ के रक्षक के रूप में उनकी यात्रा आरंभ हुई। एक यात्रा जिसमें पल प्रतिपल सुलग रहे थे अनगिनत युद्ध और लगातार संघर्ष।

महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनकी गर्भवती रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र की मृत्यु बीमारी से हो गई, लेकिन दूसरा पुत्र अजित सिंह जीवित रहा। औरंगजेब ने उसका लालन पालन अपनी देखरेख में अपने ही महल में करवाना चाहा, लेकिन वीर दुर्गादास राठौर औरंगजेब की मंशा को भली भांति समझते थे। उन्होंने अजित सिंह और रानियों को दिल्ली से छुड़ाने का फैसला किया। मुगलों के साथ उनका संघर्ष हुआ और अंततः वो युवराज अजित सिंह और उनकी मां को मारवाड़ अब वो सिरोही के पास पहाड़ियों में ले आए। यहीं अजित सिंह पले बढ़े। मारवाड़ का भविष्य दुर्गादास राठौर के हाथों में था और महाराजा जसवंत सिंह को दिया वचन उनके हृदय में। वो लगातार चौकस रहते, छापामार शैली में युद्ध करते। उद्देश्य केवल एक कि किसी भी तरह युवराज बड़े हों और उन्हें राजगद्दी सौंपी जा सके। औरंगजेब ने वीर दुर्गादास राठौर को अनेक प्रलोभन दिए और कहा कि बस अजित सिंह को लेकर दिल्ली आ जाओ, लेकिन दुर्गादास राठौर की निष्ठा कभी डिगी नहीं। मुगलों के साथ लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों ने मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे समय में सिसोदिया वंश के साथ मिलकर दुर्गादास राठौर ने छापामार रणनीति के साथ मुगलों से लोहा लिया। औरंगजेब ने जब मारवाड़ की लड़ाई के लिए अपने पुत्र मोहम्मद अकबर को भेजा, तब कूटनीतिक चाल चलते हुए दुर्गादास राठौर ने उसे पिता के विरुद्ध अपने गुट में शामिल कर लिया। ये संघर्ष लगभग 30 साल तक चला। दुर्गादास राठौर किसी अनमोल रत्न की तरह युवराज अजित सिंह की रक्षा करते रहे। वो 24 घंटे सजग चौकन्ने रहते। कहा जाता है कि वो तब तक घोड़े की पीठ से नहीं उतरे जब तक कि अजित सिंह जोधपुर के राजा नहीं बन गए। आज भी राजस्थान के लोककंठ से दुर्गादास राठौर की महिमा कुछ यूं सुनाई देती है कि 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैल अणी स्यू सैंक तो बाटी दुर्गादास। अर्थात दुर्गादास हर पल हर घड़ी घोड़े पर ही सवार रहा करते थे, यहां तक कि घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही अपने भाले की नोक पर बाटी की लोई लगाकर वो उसे आग में पकाते और उसी से पेट भर लेते। लेकिन अजित सिंह की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने देते। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब महाराजा अजित सिंह ने अपनी सेना लेकर जोधपुर को घेरा और अंततः अपने पुरखों की राजधानी को जीत लिया। इस तरह वीर दुर्गादास राठौर की तपस्या सफल हुई। उन्होंने अपना दिया हुआ वचन निभाया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने जोधपुर राज्य से बाहर ही बिताए। इन वर्षों में वो सदरी, उदयपुर, रामपुरा, भानपुरा आदि स्थानों पर रहे। 22 नवंबर सन 1718 को उज्जैन में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: कल्पना कीजिए 2300 साल पहले की एक ऐसी दुनिया की जहां समुद्र तल को शाही खजाने की तरह माना जाता था। मौर्य साम्राज्य के दौरान खन्याधक्ष यानी समुद्री खानों के अधीक्षक गोताखोरों की एक विशिष्ट टुकड़ी को हिंद महासागर की खतरनाक गहराइयों में उतारते थे। केवल पत्थरों के वजन और अटूट साहस के दम पर ये गोताखोर समुद्र की तलहटी से चंद्रमा के आंसू यानी बेशकीमती मोती निकालने के लिए डुबकी लगाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि यह केवल मछली पकड़ना नहीं था बल्कि एक परिष्कृत सरकारी उद्योग था। अधीक्षक विशाल बेड़ों और विशेष रिफाइनरियों का प्रबंधन करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर रत्न को उसकी चमक और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। शार्क से भरी मन्नार की खाड़ी से लेकर दूर दराज की चट्टानों तक इन जोखिम भरे अभियानों ने साम्राज्य की भव्यता को वित्त पोषित किया। यह एक खतरनाक लेकिन अत्यधिक लाभकारी सीमा थी जहां भारत ने पहली बार अथाह गहराइयों से तरल संपत्ति निकालने की कला में महारत हासिल की थी।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेल भी एक परीक्षा है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और हाजिर हूं लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप सप्ताह भर इंतजार करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम है बाल सभा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मुझे जवाब कैसे देंगे क्योंकि मेरी आवाज़ तो रेडियो के भीतर से आ रही है। तो बस आपने करना इतना है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए और अगर मन है तो खिलखिलाइए क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उदास हो क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस वक्त आपके वो टर्म वन टर्म टू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना छोटे बच्चों के, वो शुरू हो जाते हैं और जब वो शुरू हो जाते हैं तो किसी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है तो बड़ा खुश होता है और किसी का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है कई बार तो उसका मुँह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आँखें झुक जाती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है और सोचता है अब क्या करूं। तो उन बच्चों से भी मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए, प्यार की समझाइश समझिए, वो यही है कि हर जगह परीक्षा होती है, कई बार हम सफल होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सफलता हमें मिलती ही रहे मिलती ही रहे मिलती ही रहे मिलती ही रहे, क्योंकि अगर हम कभी हारे नहीं ना तो हम जीत के स्वाद को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने आपकी पढ़ाई वाली परीक्षा की बात कर ली, लेकिन बच्चों जानते हैं खेलों में भी एक परीक्षा होती है। हाँ खेल में भी परीक्षाएं होती हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा तो क्या खेल का भी रिजल्ट आता है? डेफिनेटली आता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप पोडियम पे पहुंचता है और पीछे से राष्ट्रगान बजता है तो वो खेल का रिजल्ट ही तो है। कॉमनवेल्थ गेम में जब अस्मिता डे ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता ना और बच्चों पीछे से राष्ट्रगान बजा तो बस मैं अपनी ही जगह पे खड़ी हो गई और उसकी आंखों में तो वो चमक दिखाई दे ही रही थी लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे क्योंकि मुझे पता है बच्चों जब कोई खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचता है ना, जैसे मैंने बताया कि टॉप पोडियम तक जब आप पहुँचते हो ना तो उसके पीछे अथक मेहनत होती है, बहुत कड़ा परिश्रम होता है, बहुत अनुशासन होता है और बहुत सारे लोगों का त्याग होता है क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बच्चों अकेला नहीं बनता। मैं अस्मिता डे की भी आपको कहानी सुनाऊंगी और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी नीरज चोपड़ा की भी, सायना नेहवाल की भी, पीवी संधू की भी और कहानी आपको सुनाएंगे महेंद्र सिंह धोनी की भी। कोई भी खिलाड़ी जिन्हें आप आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट से घिरा हुआ देख रहे हैं ना बच्चों, उन्होंने बहुत फांके लगाए होते हैं। फांके सिर्फ खाली पेट भोजन वाले फांके नहीं होते, स्ट्रगल के भी फांके होते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, कितनी तपस्या की होती है उन खिलाड़ियों ने, आपको वो सब कुछ नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है एक खिलाड़ी जिसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी कैमरा लाइट्स उस पर पड़ रही हैं, और आपको दिखती हैं लोगों की तालियां, उनके इंटरव्यूज़। लेकिन सच में बच्चों, यकीन मानिए, जब भी आप किसी ऐसे सफल खिलाड़ी को देखते हैं तो उसकी कहानी पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि उसकी ज़िंदगी दरअसल कैसी थी, है ना? क्योंकि ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक होती हैं वो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सब कुछ कल्पनाओं के देश में ले जाती हैं, कि रानियों का देश, परियों की कहानी, है ना, अच्छा लगता है ये सब कुछ। लेकिन कभी कभी अपने असली जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ भी हमको जाननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक होती हैं। अब आपको मैं अपनी बात पर ले आती हूँ कि इतनी सारी बातें मैं आपसे कर क्यों रही हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि खेलों में भी परीक्षा होती है। आज हमारा बाल सभा का विषय यही है और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ। तो चलिए बताइए तो जरा कि आप में से कितने बच्चों को दौड़ना अच्छा लगता है, कितनों को बैडमिंटन, कितनों को कबड्डी, हॉकी या बॉक्सिंग पसंद है? जरा मन ही मन में अपना हाथ उठा लीजिए। अच्छा, एक और सवाल, कभी आपने सोचा है कि जो खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर खेलते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई एक दिन में भारत की टीम में आ जाता है? नहीं, उनकी कहानी भी आपकी और हमारी तरह शुरू होती है एक छोटे से स्कूल से, किसी गांव के मैदान से, किसी पार्क से, या फिर घर के आंगन से। मान लीजिए आपके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई, आप पहले स्थान पर आ गए, फिर आपको ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता है, फिर आप वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आप कहां पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर पहुंचते हैं। अब आप जिले में भी जीत जाते हैं, जैसे ग्वालियर, जैसे शिवपुरी, जैसे भोपाल, ऐसे आप अलग अलग जगह पे जीत जाते हैं। फिर होता है संभाग स्तरीय, है ना, संभाग मतलब उस संभाग में जितने जिले आते हैं आपको वहां पे प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाना होता है। अब क्या हुआ, अब जब आप संभाग में भी प्रथम आ गए, फिर आप आते हैं स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अब जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आ जाते हैं तब आपकी जो मेहनत है वो और भी दुगनी, तिगुनी, चौगुनी हो जाती है। आपका अनुशासन और महत्व रखने लगता है, क्योंकि जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, जैसे मैं मान लूं कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोई खेल प्रतियोगिता है और टीटी नगर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अगर वहां वो हो रही है, तो कोई खिलाड़ी ग्वालियर से आया होगा, कोई खिलाड़ी भोपाल से, कोई खिलाड़ी आया होगा किसी दूसरे संभाग से। आपस में खूब अच्छी प्रतियोगिता होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से जो खिलाड़ी प्रथम आएगा ना वो स्टेट का यानी कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये आपके आंगन से शुरू हुई कहानी कहाँ तक आप पहुंची है? और फिर आप जाओगे नेशनल टीम में खेलने। नेशनल टीम में कैसे खेलोगे? आप जाओगे, अपनी स्टेट का रिप्रेजेंट करोगे और नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप भाग लोगे। तो अब मान लीजिए कि वो राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता कहाँ पर है, मान लीजिए कि भोपाल में ही है, तो भोपाल में कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आएंगे? कोई खिलाड़ी आंध्र प्रदेश से होगा, कोई खिलाड़ी महाराष्ट्र से होगा, कोई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से होगा। भारत के जितने राज्य होंगे वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और जो खिलाड़ी अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ना बच्चों, उसके साथ बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे मैनेजर, ये सब कुछ आए होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। और फिर आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आप खाने में क्या खा रहे हैं, ये प्रदेश स्तर के खेलों से जुड़े जो अधिकारी होते हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी बन जाता है। बच्चों, हर चीज का आपके ख्याल रखा जाता है। फिर आता है वो दिन जब आप अपने स्टेट के लिए खेलते हुए जीत जाते हैं। अब क्या होगा, उत्सुकता लग रही है? फिर बच्चों, आप मान लीजिए कि नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आ जाते हो, क्या होगा? अब क्या होगा? अब वो होगा जिसका हमें इंतजार था। अब वो होगा बच्चों कि आप भारत के लिए खेलने के लायक माने जाने लगते हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पे कैंप आयोजित होता है जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स एकेडमी होती हैं जहां आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अब देश के जो सबसे बेहतर कोच हैं वो आपको तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कोई एक नहीं होती, दो नहीं होती, बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे एशियाई गेम्स, और कुछ होती हैं सिर्फ आपके खेल की, जैसे एथलेटिक्स मीट, जूडो मीट। फिर इधर आ जाइए आप, तैराकी का कोई कॉम्पिटिशन होगा इंटरनेशनल, तो उसमें अगर आप भारत के लिए खेलेंगे। तो ऐसे हर स्तर पर आपको खुद को साबित करना पड़ता है बच्चों। पूरे भारत से हजारों बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेलों का जब आयोजन होता है तो आप पहनते हैं भारत देश की जर्सी। भारतीय खिलाड़ी के सीने पर तिरंगा लगा होता है और फिर वो दुनिया के सामने उतरते हैं। ये सोचने मात्र से ना आपको कितना गर्व महसूस होने लगता है। तो सोचिए कि जिस दिन आप ये कर रहे होंगे बच्चों, वो कितने गौरव के पल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, अगर कोई खिलाड़ी केवल एक प्रतियोगिता वाले दिन ही अभ्यास करे तो क्या वो जीत पाएगा क्या बच्चों? नहीं, जीत उसको मिलती है जो रोज अभ्यास कर रहे हैं, जो समय का पालन कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, दोबारा दोबारा और दोबारा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खेलों में हर बार आपको जीत मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, खेल भी एक परीक्षा है, तो जो हार गए हैं वो फिर खड़े हो रहे हैं। और याद रखिए, मेडल गले में भले ही एक दिन पड़ता हो बेटा, लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, पसीना और धैर्य छिपा होता है। तो आज जब आप ये बाल सभा सुन लीजिएगा तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर अपने माता पिता और खेल शिक्षक से बात कीजिएगा कि आपके सपनों की शुरुआत कैसे की जाए। क्या वो दिन आज का ही है, मतलब जब ये बाल सभा आप सुन रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही है कि आज मुझे दीदी ने बता दिया है कि मैं कैसे एक एक एक एक स्तर पार करता जाऊंगा और एक दिन मैं भी भारत की जर्सी पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, तो फिर आज से ही सपने देखना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ सपने देखना शुरू मत कीजिएगा बच्चों, उसके पीछे कड़ी मेहनत भी कीजिएगा। को मैं कुछ उन लोगों की बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपने सिर्फ मेडल पहनते हुए देखा है, लेकिन उसके पीछे उनका बहुत कड़ा अभ्यास है बच्चों। नीरज चोपड़ा, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब जब नीरज चोपड़ा मैदान में आते हैं तो लाखों करोड़ों भारतीय टकटकी बांधे बस उनके भाले को और उनकी स्पीड को देखते रहते हैं कि कैसे भी वो जो आखिरी लाइन है उसको क्रॉस कर जाए नीरज चोपड़ा का भाला और देश को मेडल मिल जाए, है ना। तो जब ये हम उम्मीद बांधते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं और अपने गांव में उन्होंने एक दिन स्टेडियम में भाला फेंकते कुछ खिलाड़ियों को देखा, सिर्फ देखा था, लेकिन वो स्टेडियम गए क्यों थे ये पता है आपको? मैंने एक बार नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि मैं बहुत मोटा हुआ करता था और घर वाले कहते थे कि थोड़ा फिट हो जाओ, और जब फिट होने की शुरुआत करने के लिए मैं स्टेडियम के मैदान में सिर्फ दौड़ने गया हुआ था तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी फेंक सकता हूँ। देखिए सपने की शुरुआत कैसे होती है, जो लोग भाला फेंक रहे थे उनको देख कर नीरज चोपड़ा ने ये सोचा कि अब से मैं भी जेवलिन थ्रो करूँगा, लेकिन वो लोग आज नीरज चोपड़ा जी के लिए तालियां बजाते हैं। पता आपको, जो सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने गए थे वो आज भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, वो आज भारत के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल ला रहे हैं, एशियाई खेलों में मेडल ला रहे हैं और एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में तो ना जाने कितने कितने मेडल ला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। मीराबाई चानू, मणिपुर के एक छोटे से गांव की बेटी हैं। जंगल से लकड़ियां उठा उठा कर घर लाती थी। सुना तो मैंने ये भी है कि वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा वजन की लकड़ियां अपने घर लाती थी, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे बच्चों। कई बार हार लगी, कई बार चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन वही मीराबाई चानू चैंपियन बनती हैं। भारत की जर्सी फिर से छा जाती है, फिर से ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स एशियाई गेमों में भारत के लिए पदक जीतकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाती हैं मीराबाई चानू। पीवी संधु नाम तो सुना होगा। सबसे बड़ी ताकत उनकी जानते हैं क्या है? उनकी ताकत है उनका अनुशासन। रोज सुबह जल्दी उठकर कई कई किलोमीटर दूर अपनी एकेडमी जाकर अभ्यास करती हैं। जब बहुत सारे बच्चे बच्चों छुट्टियां मना रहे होते थे ना, तब पीवी सिंधु कोर्ट पर पसीना बहा रही होती थी, और वर्षों की इसी मेहनत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी। हाँ, कितनी बड़ी बातें हैं, कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन उसके पीछे उनकी माँ का भी हाथ है, उनके पिता का भी हाथ है। ये लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों। कई बार हमें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर बसना पड़ता है। अब मान लीजिए वो सब जूनियर खेल रही हैं, और सब जूनियर सबसे छोटी उम्र के बच्चों के प्रतियोगिताएं होती हैं, और सब जूनियर में बच्चा अकेला तो जा नहीं सकता, तो कई बार पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है। तो वो तो खेल रही हैं, लेकिन उनके साथ उनकी माँ अपना घर छोड़कर वहाँ रह रही हैं। ये त्याग है कि नहीं? तो अकेले कोई खिलाड़ी नहीं जीतता, खिलाड़ी के कोच, खिलाड़ी के पेरेंट्स, खिलाड़ी के वो दोस्त जो उनको उनकी हार के वक्त भी प्रेरित कर रहे थे अच्छा खेलने के लिए, उन सब लोगों के सपने एक साथ जीतते हैं बच्चों। निखत जरीन, आपको पता है कई लोगों ने कहा कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन निखत जरीन ने ये साबित किया कि वो बॉक्सिंग न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि जीत भी सकती हैं। और आज निखत जरीन हजारों हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। जो भी बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, निखत जरीन उस हर शख्स की प्रेरणा है। अब आप सोचिए कि कितना अजीबोगरीब है सब कुछ, कि एक लड़की घर में बैठी है और उससे सब लोग कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अब तुम पढ़ाई करो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर देख लेना, हम तुम्हें अच्छे स्कूल से निकाल लेंगे। और वो बच्चा बार बार कह रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में भले ही ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा मन कहीं और लग रहा है। हर बच्चा अलग होता है। इसी बहाने एक और बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अकेले बाल सभा नहीं सुनते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी तो बाल सभा सुनते हैं। तो फिर उन लोगों से मुझे यही कहना है कि एक तो अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से मत करिए, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये आपकी परीक्षा है कि आप अपने बच्चे की कला को समझें, पहचानें और उसको उस लाइन चुनने में मदद करें, उसके ऊपर अपने निर्णयों को ना थोपें। तो देखो बच्चों, आपके बहाने मैं आपके मम्मी पापा से भी थोड़ी थोड़े अपने मन की बातें ना कर ही लेती हूँ, ये राज की बात है। अब ऐसा होगा कि बच्चे हंस रहे होंगे कि ओहो, दीदी ने तो आज हमारे बहाने मम्मी पापा को भी समझा दिया। तो सही बात है, थोड़ी थोड़ी समझाइश दोनों तरफ हो जानी चाहिए। वैसे एक बात और है बच्चों, कि आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? आप रिपोर्ट कार्ड लेने जब पहुंचते हो, उसमें जब आपके अच्छे अंक दिखाई देते हैं तो आपको लगता है वाह क्या बात है। पापा आपके गर्व से कहते हैं शाबाश, दादा दादी नाना नानी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी जब 10th का रिजल्ट आया था तो आप यकीन नहीं कीजिए, मेरे को एक बच्ची बता रही थी कि उसके मम्मी पापा को ना ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या रहा आपकी बिटिया का, जिन्हें उससे कोई मतलब भी नहीं था, जो उसकी तैयारी में भी शामिल नहीं थे। तो कई लोगों को ये भी होता है कि पता करें कैसा पढ़ी थी ये बच्ची, है ना। तो कई बार हमको क्या होता है बच्चों, कि कई बार हमको ये भी देखना होता है कि किस तरह हमारे साथ जो खड़े हैं उसके अलावा हमारे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, है ना। तो सबके लिए हमें क्या करना है, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ी हार के लिए भी तैयारी, क्योंकि एक बार में सब नहीं जीतते हैं। ठीक है, अब आगे की बात बताएं आपको। ज्ञानेश्वरी यादव ये क्या करती हैं? वेटलिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव और सामान्य परिवार से आने वाली ज्ञानेश्वरी अपने पिता से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करती थी। उनके पिता के पास ट्रेनिंग और डाइट का खर्च उठाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया, कुछ लोगों से उधार भी लिया, लेकिन अब आप देखिए, अब आपको पैरा एथलेटिक्स की बात बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शर्मिला धनकर बहुत गंभीर और अकल्पनीय संघर्षों को झेलने के बावजूद पैरा शॉटपुट एथलीट शर्मिला धनकर ने हार नहीं मानी और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू हुआ अस्मिता डे का सफर। अस्मिता डे जिन्होंने पहली बार जूडो में 48 kg में बच्चों गोल्ड मेडल जीता है। त्रिपुरा के एक बहुत छोटे से शहर से आती हैं अस्मिता डे। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत और जिद की कहानी है अस्मिता डे की कहानी। मैंने कहा था ना, कई बार हमें काल्पनिक कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए, हमें कई बार वो कहानियां पढ़नी और सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए जो रियल लाइफ से आती हैं, मतलब हमारे देश के असली हीरो की कहानी। हाँ, उनके पिता साइकिल की मरम्मत का काम करते थे और वो देश के लिए जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक ले आई हैं। फाइनल में उन्होंने कनाडा की खिलाड़ी को हराया। अस्मिता ने खेल की शुरुआत जूडो से नहीं की थी, ये और एक खास बात है। उन्होंने 800 मीटर की दौड़ से अपने खेलों की शुरुआत की थी। ठीक, मतलब उनका इवेंट जूडो नहीं था, उनका इवेंट क्या था, 800 मीटर रेस। लेकिन 2015 में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने प्रशिक्षकों की सलाह पर जूडो को अपनाया था, क्योंकि जूडो में लोगों को लगता है सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे जूडोका सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी फुर्ती से भी जीतते हैं, कई बार अपनी टेक्निक से भी जीतते हैं, क्योंकि खेलों में टेक्निक्स का बहुत महत्व है कि आप तकनीकी रूप से कितने सजग हैं, कितनी जल्दी आप ये पहचान लेते हैं कि आपके सामने वाले, मतलब आपके अपोनेंट की कमजोरी क्या है और उसी पर आप वार करते हैं, तब आप जीतते हैं। बहुत रणनीति होती है बच्चों खेलों के पीछे। आपको एक कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आपके अपोनेंट यानी कि आपके दूसरी तरफ जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है उसके ढेर वीडियो देखने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है कि ये किस तरह से खेलता है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये खेलों की परीक्षा ऐसे होती है, और जब आप देख लेते हैं कि ये खिलाड़ी ऐसे खेलता है, ये इसकी ताकत है, ये इसकी कमजोरी है, तो फिर आप अपनी खेल की रणनीति उस हिसाब से बनाते हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको एक और राज की बात बताऊं, जो भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र हैं उसमें भी अस्मिता डे ने प्रशिक्षण लिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भोपाल से भी इस गोल्डन गर्ल का नाता है। खास बात यह है कि ये जब लगातार मेहनत कर रही थी, इनके पिता की स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, लेकिन इनकी माँ ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो मेरी बेटी इस वक्त खेलने जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब परिवार पे संकट हो और उस वक्त भी हम बच्चे की जीत को चुने, तो ये बेटा बहुत कठिन निर्णय होता है। इसके लिए हमें अपने माता पिता को ढेरों धन्यवाद देना चाहिए, है ना। और आज जब वो मेडल जीत गई हैं, सब लोग उनके तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, तब वो गर्व से कह पा रही हैं कि ये मेडल मैं अपने कोच और अपने पिता को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा लगता है ना ये सब सुन के। तो खेलों की परीक्षा किस तरह से होती है ये आप समझ गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं खेलों की बदौलत उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी भी मिली हुई है। तो कई बार जब आप अच्छा खेल खेल रहे होते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो बच्चों आपको सरकारी नौकरियों में भी जगह मिलती है, क्योंकि हर विभाग अपनी तरफ से कुछ खिलाड़ियों को भेजता है। जैसे रेलवे के अलग प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम में ये सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहती यही हूँ बच्चों कि आप लोग जो भी बाल सभा से जुड़े हुए हैं वो बच्चे खूब खेलें और खेलों को प्रोफेशन की तरह भी अपनाएं। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं खेल के मैदान पर, वो इसे प्रोफेशन की तरह लें। तो इतनी सारी बातें बता देने के बाद आपको पता ही है कि हमारे कुछ संकल्प हम बाल सभा के अंत में जरूर लेते हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हमने बात की है कि खेलों में भी परीक्षा होती है, तब पहला संकल्प हम सब मिलकर यही लेंगे कि हमारी जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। पढ़ाई के अलावा किसी ना किसी खेल को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आज का तीसरा संकल्प यह है कि जीवन में अनुशासन के महत्व को समझेंगे। और आज का आखिरी संकल्प ये है कि हम जो भी काम हमें पसंद है उसमें एकाग्रता, परिश्रम और फोकस, इन तीनों को एकाकार करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें आप खोल सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, संकल्प भी हम सब ले चुके हैं, इतनी सारी कहानियां भी आपको सुना चुके हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की और उनके जीवन की। तो अब आप अपना ध्यान रखिए और आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उन्हें एक ठंडा ग्लास पानी जरूर दीजिए, ठीक है? इसी छोटी सी सीख के बाद मुझे भी बाय बाय कहिए, है ना? तो चलो, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ। और अब आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का विषय था खेलों की भी परीक्षाएं होती हैं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीदी गौड़, ध्वनि संपादन अमित पुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरेज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक निजी व्यापार पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया। क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: ...90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, गर्व है हमें अपने आप पर कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां के युवा स्वेच्छा से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और देश सेवा के लिए स्वेच्छा से हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। वरना विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां उस देश के हर युवा पर सेना में जाने की अनिवार्यताएं बनाई गई हैं, चाहे वो इसके लिए उत्सुक हो या ना हो। श्रोताओं, आजादी के बाद से ही हमारे राष्ट्र ने कई तरह की आपदाओं और युद्धों का सामना किया है और जब जब भी राष्ट्र की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न आया है, हमारी भारत की युवा शक्ति ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के रूप में इन कठिनाइयों से बड़े ही साहस के साथ मुकाबला किया है। आज का भारत युवाओं का भारत है, क्योंकि हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा ही तो हैं, और युवा पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। यदि देश की युवा पीढ़ी अनुशासित, स्वस्थ और साहसी है तो देश के विकास को और देश की सुदृढ़ता को कभी ठेस नहीं पहुंच सकती। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही कई कदम उठाए गए ताकि देश का युवा नेतृत्वशाली, सशक्त और साहसी नागरिक बन सके। और NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की गठन इसी सोच का परिणाम है। तो आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे NCC पर, और हमेशा की तरह हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडियो में।
4: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। नेशनल कैडेट कोर
3: जी,
4: जब भी आप ये शब्द का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो एक बहुत ही यंग स्मार्ट बॉय और गर्ल ड्रेस्ड अप इन अ यूनिफॉर्म मूविंग अराउंड इन अ डिसिप्लिन मैनर दिखता है।
3: बिल्कुल सर,
4: आरडी परेड जब होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है, आप उनको देखिए उस समय जो उनके चेहरे पे
3: जोश आता है जी, वो देखते ही बनता है,
4: और जिस तरह से उनकी मेहनत झलकती है, मतलब वो ऑलमोस्ट रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रहे होते।
3: बिल्कुल सर,
4: सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऐसी फोर्स है ये जो कि युवाओं को डिसिप्लिन करने में, उनमें एक जोश भरने में जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा
3: जी,
4: है।
3: बिल्कुल सर,
4: इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटियर फोर्स है। आपने बिल्कुल सही कहा था
3: जी,
4: कि हमारे यहाँ जो है ये युवा जो है ये इतने तत्पर रहते हैं कि हमें कभी फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
3: जी बिल्कुल,
4: और वही हमने NCVC में भी देखा है कि वहाँ पे भी हर विंग में जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, हर जगह जो है बच्चे जो है बिल्कुल पूरे जोश से तैयार रहते हैं, हमें NCC का हिस्सा बनना है। जो ट्रेन्ड, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन फोर्स है, जो इसको बनाया किस लिए गया था, क्योंकि एक सोच आई थी कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो देश को अगर मुसीबत पड़ती है, मतलब किसी तरह से हमारे पास इमरजेंसी में जो है हमारी देश की आर्म फोर्सेस को मदद कर सके। दूसरा, इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर सके। तीसरा, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि जो देश के युवा है, मतलब उनके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना हो
3: जी,
4: उनके अंदर अनुशासन हो
3: जी,
4: उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, उनको ये पता चले कि हमारा देश क्या है, कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, वो दूसरे स्टेट्स के लोगों के बारे में जान पाए।
3: जी।
4: एक कम्युनल हारमोनी वो हो लोगों के बीच में जो है, तो इन सब एम्स के लिए जो है इस पोस्ट का गठन किया गया था। ये जो है 48 में पार्लियामेंट एक्ट के बाद NCC का मतलब एक जन्म हुआ, और इसमें जो है सबसे पहले NCC सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था,
3: अच्छा,
4: जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि आजकल जिसको हम NCC डायरेक्टरेट बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जब सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था उसको कर्नल जी बीवूर थे,
3: अच्छा,
4: जो बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे जनरल
3: जी,
4: तो वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के।
3: अच्छा,
4: उसके बाद जो है हेडक्वार्टर बना, तो आप देखिए मार्च में, मतलब जैसे हेडक्वार्टर बना था, उन्होंने 31 मार्च को चार्ज अज्यूम किया था, और जुलाई में जो है इसकी जो योजना है, ये योजना स्कूलों में इंप्लीमेंट हुई थी।
3: अच्छा।
4: गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे, जब समर वेकेशन के बाद हुए, तो उस साल 1948 में ही NCC वाज एबल टू एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट 96 यूनिट्स
3: पहले ही साल में,
4: जिसमें कि उन्होंने 83 इन्फेंट्री यूनिट्स थी, आर्मड की एक यूनिट थी, फिर आरटी इंजीनियर सिग्नल्स की यूनिट्स थी। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि वो बेस बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है।
3: अच्छा, जी,
4: एक तरह से
3: बिल्कुल
4: फर्स्ट ईयर में ही तकरीबन 20,000 कैडेट्स जो है इसमें शामिल हो गए थे।
3: क्या बात है।
4: उस समय जो है ये सिर्फ मेल्स के लिए था जब शुरुआत
3: में जी,
4: लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 49 जो है जुलाई 49 में ये गर्ल्स डिवीजन भी आ गई थी।
3: अच्छा, अगले ही वर्ष,
4: अगले साल जो आ गई थी।
3: क्या बात है।
4: फिर एनसीसी का विस्तार हुआ तो 1950 में जो है एयरविंग भी इसमें जुड़ गया, तो उसमें एक स्क्वाड्रन मुंबई में रेज हुई थी, एक कोलकाता में रेज हुई थी, एंड फिर जो नेवी है, नेवल विंग जो है, वो 1952 में हो गया था। तो इस तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई 48 से 52 के बीच में तीनों विंग्स में आ गई थी। और जैसे हमने बोला फर्स्ट ईयर से शुरू करके आज आप ये देखिए कि इट इज द फोर्स consisting of almost 13 lakh plus people.
3: क्या बात है।
4: वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन।
3: सर बहुत गर्व की बात है,
4: बहुत गर्व की बात है। और इसका जो एम था वो यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके में कोर वैल्यूज डेवलप हो, पेट्रोटिज्म हो, मतलब देशभक्ति की भावना हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, इनिशिएटिव होता है, करेज होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल रॉबस्टनेस होती है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है ना, तो सेल्फलेस सर्विस है, तो ये सब जो है मतलब एम को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया।
3: कुल मिलाकर आप मतलब एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने।
4: बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा था कि अगर आपने इनको ट्रेनिंग दी है वो आर्म फोर्सेस में ना भी जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, अपना भी काम करें, तो एक उनके अंदर एक भावना हो
3: जी,
4: और दूसरा है वो डिसिप्लिन रहे, है ना, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज होती है अगर आपने एक बार डेवलप कर दी तो फिर
3: आजीवन है सर,
4: आजीवन है
3: जी।
4: और ये देखा भी गया है कि जो एनसीसी में होते हैं उनका एक अलग पर्सनालिटी होती है
3: जी, बिल्कुल सर, उनका व्यक्तित्व तो अलग ही झलकता है,
4: अलग ही झलकता है
3: जी।
4: हम इसके बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करते हैं
3: जी, बिल्कुल।
4: अगर आप देखें तो दिल्ली में जो है हमारा एनसीसी हेडक्वार्टर है, जिसको कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, उसकी इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में होते हैं, वो उसको कमांड करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टरेट्स होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर,
3: अच्छा,
4: एमपी छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट है
3: जी।
4: तो ऐसे करके 17 डायरेक्टरेट्स हैं,
3: अच्छा,
4: और इनको जो है मेजर या ब्रिगेडियर कमांड कर रहे होते हैं, और जो ये जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनके नीचे फिर ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
3: अच्छा,
4: तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिगेडियर कर्नल जो है कमांड करते हैं, और फिर उसके नीचे जो बटालियंस होती है जो कि कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह एसोसिएटेड होती हैं उनके अंडर में स्कूल्स और फिर कॉलेजेस वगैरह आते हैं। तो ये जो बटालियंस होती हैं ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स में आती हैं, और फिर बटालियंस के अंडर में कंपनीज आती हैं।
3: अच्छा,
4: ठीक है। तो जैसे अगर एक एरिया में अगर वहाँ पे एक बटालियन है तो उसके नीचे जितने स्कूल कॉलेजेस वगैरह होंगे वो आते हैं, उनके फिर वो कंपनीज में मतलब डिवाइडेड होते हैं। तो बटालियंस जो होती है उसको अगेन कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करते हैं, एंड जो उसके नीचे जो कंपनीज होती है, स्टाफ होता है एनसीसी का, उसमें रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के,
3: अच्छा,
4: तीनों विंग के होते हैं जो कि जनरली कमांड में होते हैं, और ग्रुप हेडक्वार्टर में जैसे एडम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके होते हैं
3: जी।
4: फिर इसके अलावा इसमें एक और एंट्री होती है, एएनओस होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बोलते हैं,
3: ओके,
4: जो कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एनसीसी में, जो वॉलंटियर करते हैं
3: जी।
4: तो उनको कॉलेज का जो होती है एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको कंट्रोल करते हैं।
3: अच्छा,
4: इनकी ट्रेनिंग होती है विमेन्स के लिए जो है ग्वालियर में है स्कूल का, और कॉलेज एनसीसी कॉलेज है, और कामटी में जो है ओटीएस कामटी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो है परमानेंट स्टाफ होता है उसमें, ये आर्म फोर्सेस का होता है।
3: अच्छा,
4: फिर सिविलियंस होते हैं जो कि मतलब सिविल स्टाफ होते हैं जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है वो रहता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिक्स होती है।
3: तो सर क्या जो संगठन है एनसीसी वो भी क्या रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है?
4: हाँ जी, ये रक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आता है। और जैसे हमने बताया कि इट्स अ टोटल तरह से मिक्स हो रहता है, तो इसमें जो स्टेट है स्टेट लेवल से भी एम्प्लॉइज होते हैं, देन उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस के होते हैं, सिविलियंस होते हैं, सब मिलके होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एनसीसी में वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है एनसीसी में। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इवॉल्व होते होते आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीसी का वो बहुत ही सशक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि सारे के सारे अपग्रेडेशन होते रहते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं। और इसी से जो हमारे एम है जो एनसीसी के उसको पूरा करने में सक्षम है।
3: तो सर अब एक प्रश्न ये आता है कि स्कूल लेवल से यदि कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होना चाहिए या वो किस स्टैंडर्ड से एनसीसी ज्वाइन कर सकता है?
4: गुड, देखिए एनसीसी के दो विंग्स होते हैं, एक होता है

0: किसी की जो ट्रेनिंग होती है
1: जी,
0: उसको अगर हम बोलें, जैसे एक तो होता है वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल्स में हफ्ते में एक दिन जो है, दो दिन जो है परेड्स होती हैं।
1: हाँ जी।
0: और उनके लेक्चर्स होते हैं, है ना, तो वो उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके बाद जो होता है कैंप्स होते हैं
1: जी।
0: कैंप्स का एनसीसी में बहुत महत्व
1: सर।
0: मैं भी एनसीसी में एंड ऑफिसर रहा हूँ और आप भी एनसीसी स्टूडेंट रही हैं, तो हम दोनों समझते हैं कि कैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इट हैज गॉट अ स्पेशल प्लेस।
1: बिल्कुल।
0: और जितना आपको वहाँ सीखने मिलता उतना शायद कहीं नहीं मिलता। तो इनके जो कैंप्स होते हैं उसमें एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो कि साल में एक बार जो हेड होता है, एंड उसमें जो सेम लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, टीम स्पिरिट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ड्रिल्स होती हैं, फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग एंड इवन सोशल एक्टिविटीज। आपको याद होगा लोग सोशल एक्टिविटीज करते थे। मुझे कैंप्स की एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैं भी था तब भी, कि ये कैंप्स में सबसे बड़ी मदद जो मिलती है, जो हमारा सोशल डिफरेंस होता है, सोशल इनइक्वालिटी जो हो रहती है कि आप कहाँ से आए हो, किस घर से हो, आप कितने अमीर हो, क्या है, मतलब वो सब खत्म हो जाता है।
1: सब खत्म हो जाता है सर, सब एक हो जाते हैं,
0: सब एक हो जाते हैं, और आप सबके साथ मिलके रहना सीखते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल सर।
0: आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, केयरिंग की, शेयरिंग की, डिसिप्लिन की, क्वालिटी की, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मुझे अभी भी मतलब याद है कि जो मेरा एनसीसी का पहला कैंप था उसमें मतलब ये सब चीजें जब देखने को मिली थी, आप समाज के बहुत सारे अलग अलग तबके के लोगों से मिलते, गांव के बच्चे वहां पे आते थे, तो किसी के फादर किसान थे जो, और मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी कभी नहीं हुई थी जितनी कि उस कैंप में जो 10 से 12 दिन का जो हमने कैंप किया था, ट्रेनिंग कैंप, उस दौरान हुई। और उस समय जो दोस्ती भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब वो रही। इसी तरह से ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं ये ग्रुप और डायरेक्टरेट लेवल पे होते हैं स्टेट में। फिर उसके बाद दूसरे कैंप्स होते हैं जैसे सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं।
1: अच्छा।
0: जो कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेवल पे प्लान किए जाते हैं। इसमें लीडरशिप कैंप्स होते हैं, ट्रैकिंग्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग्स वाले कैंप्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं। इवन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें की जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मेजर मेजर अपॉर्चुनिटी व्हिच दे गेट टू इंटरेक्ट विद द इन कंट्री स्टूडेंट्स। वो रहता है लीडरशिप कैंप्स रहते हैं, देन एक एसएसबी ट्रेनिंग कैंप रहता है।
1: अच्छा।
0: यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा एसएसबी ट्रेनिंग कैंप का।
1: हाँ जी बिल्कुल सर।
0: ये जो कैंप होता है इसमें आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कैसे फेस करते हैं।
1: अच्छा।
0: उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे रहता है, उसके बारे में पूरा आपको बताया जाता है। और आई थिंक ये ट्रेनिंग कैंप्स जो थे, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ था।
1: अच्छा।
0: इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा था।
1: क्या बात है सर।
0: और मैं आज भी एनसीसी को धन्यवाद देता हूँ कि उस ट्रेनिंग कैंप के कारण ही जो है, उसके बाद मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था, आर्म फोर्सेस के लिए, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था।
1: क्या बात है।
0: जी, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एनसीसी that had sent me across for this training camp, SSB training camp. It was in OTS, Kamti में हुआ था। It was a wonderful thing and I believe till date it is continuing. तो ऐसे और भी मतलब बहुत सारे specific service oriented camps भी होते हैं जो अलग अलग आर्मी, नेवी, एयर फोर्स भी कराती है। एंड सबसे जो बड़ा कैंप होता है उसको रिपब्लिक डे कैंप बोलते हैं।
1: RDC
0: मतलब उसका नाम सुनते ही हर एनसीसी के कैडेट के मतलब सबसे बड़ा सपना होता है कि आरडी का करना है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: 1 जनवरी से 29 जनवरी को तक जो है हर साल ये होता है।
1: जी।
0: एंड इट इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईयर।
1: बिल्कुल सर।
0: और उसमें सिलेक्शन कितना टफ होता है, आपको कितना प्रूव करना पड़ता है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कंसिडर्ड एट नेशनल लेवल इज की इट इज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और जो कल्मिनेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब
1: करते हैं। जी बिल्कुल सर।
0: एंड उसमें जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बैनर दिया जाता है।
1: हाँ जी।
0: इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर अ स्टेट टू गेट। ड्रिल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना मतलब बहुत बड़ा होता है। और कितने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जब हमने वहाँ पे देखे हैं। तो इसमें ओनली सिलेक्टेड कैडेट्स ओनली वो
1: पूरे राष्ट्र से सेलेक्ट होके आते हैं सर वहाँ।
0: बिल्कुल पूरे के पूरे स्टेट्स के जो है बच्चे वहाँ पे मिलते हैं और क्या माहौल होता है, कितना मतलब सीखने को मिलता है। इसमें एक और एक एम अचीव होता है हमारा कि हम जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: एनसीसी का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आप जो है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सके, और इस मकसद में ये जो कैंप्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कैंप एनसीसी कराती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कि अगेन जो नेशनल इंटीग्रेशन कल्चर एंड कम्युनल हार्मोनी के बारे में नेशनल लेवल पे होता है। अलग अलग स्टेट से जो है कैडेट्स आते हैं, मिलते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स मतलब जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एनसीसी की तरफ से। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, मिलिट्री अटैचमेंट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे इंडियन आर्मी के बटालियंस के साथ होते हैं, ताकि उनको एक मौका मिलता है कि बटालियन में कैसी फंक्शनिंग होती है, सोल्जर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रहते हैं। इवन ओटीए आईएमए वगैरह में भी उनको जो है मौका दिया जाता है।
1: तो सर आपने तो ये जो कैंप की बात की, इसके साथ एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जब कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है तो क्या उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं या कोई स्कॉलरशिप भी होती है क्या?
0: बिल्कुल होती है
1: जी।
0: अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेनिंग की और ये सब तो है ही, इसके अलावा सबसे बड़ा जो उनको इंसेंटिव मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलता है, एंड प्राइमरली इन आर्म फोर्सेस।
1: जी।
0: अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं सीनियर डिवीजन के आर्म फोर्सेस में, अगर आप अफसर बनने के लिए जाते हैं, जैसे अगर आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो होता है तो उसका रिटन एग्जाम आपका वेव ऑफ हो जाए।
1: अच्छा।
0: आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं।
1: हाँ, यानी आपको लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं,
0: आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा जो है इंसेंटिव है, मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई इंसेंटिव हो सकता
1: बिल्कुल
0: है। एंड बच्चे जो रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे 5-10% बोनस मार्क्स मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किसका रिक्रूटमेंट है, कौन से डायरेक्टर करा रही है, इन्फेंट्री है, मतलब अलग अलग वो रहता है, तो उसके हिसाब से 5-10% बोनस मार्क्स देते हैं। देन अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे, वो लोग बोनस मार्क्स देते हैं, जो है प्रेफरेंस देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं, पुलिस फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन रिजर्वेशन फॉर वुमेन आल्सो देयर, ठीक है, महिलाओं के लिए भी जो है सर्विसेस में रिजर्वेशन होता है।
1: जी।
0: और ये जो बच्चे होते हैं जो एनसीसी क्वालिफाइड होते हैं, अगर ये आगे चल के एनसीसी में ही किसी अपॉइंटमेंट में काम करना चाहते हैं, लाइक वो एएनओ बनना चाहते हैं या परमानेंट स्टाफ में जो विमेन आना चाहते हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलता है। एंड एक इनकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होती है।
1: अच्छा।
0: अगर किसी कैडेट को किसी तरह की इंजुरी हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई फैटल इंजुरी होती है तो भी जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारे स्टेट्स लेवल पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं एनसीसी के, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इंसेंटिव्स तो बहुत ज्यादा हैं इसमें, हम नटशेल में बता रहे हैं। और ये टाइम टू टाइम इनके बारे में और आते रहते हैं।
1: जी सर, हम कहीं भी अप्लाई करते हैं और यदि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो इंटरव्यूअर है उसका देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंटरव्यूअर का देखने का नजरिया बदल जाता है, आपकी खुद के एक कॉन्फिडेंस में फर्क आता है,
1: आपको
0: बिल्कुल पर्सनैलिटी फर्क आता है, आप कैसे अंदर जाते हैं, वॉक करते हैं, वो बहुत मायने रखता है और बहुत फर्क आता है। और पता नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम एनसीसी में ओटीएस कमिटी में से, जैसे मैंने बताया एडवांस लीडरशिप कोर्स कर रहे थे, तो हम तीन दोस्त बने थे, तीन लोग, एक उसमें से नॉर्थ के थे, एक साउथ के और एक मैं सेंट्रल भोपाल से था, एंड आज तक हम तीनों दोस्त हैं।
1: वो समय ही सर ऐसा रहता है, कैंप का समय तो कभी भूला नहीं जा सकता,
0: मतलब आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है।
1: जी।
0: और अभी अभी रिसेंटली ही मतलब मेरे, हम तीनों से एक जो दोस्त है उसके बेटे की शादी थी, तो हम सब वहाँ फिर से एकत्रित हुए थे, और आज भी जब मिले थे तब भी हम एनसीसी को याद कर रहे थे, वो कैंप को याद कर रहे थे, एक दूसरे से वही बात हो रही थी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ व्हिच आई हैड स्पेंड इन एनसीसी एज अ कैडेट, एंड आई से कि दिस इज वन organization which is doing an extremely wonderful job. इन ट्रेनिंग इन ओरिएंटिंग इन डिसिप्लिनिंग द यूथ।
1: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि एनसीसी युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना जगाकर बड़ा ही मौलिक बदलाव लेकर आता है। कठोर प्रशिक्षण विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क और साथ ही निर्णय लेने की कुशलता सिखाता है, जो आगे उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नियमित व्यायाम, खेल और ड्रिल उनमें शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, जबकि तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं उन्हें समाज और देश के प्रति जिम्मेदार होना सिखाती हैं। श्रोताओं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति उन्हें जीवन की चुनौतियों से निडरता से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की ताकत देती है। एनसीसी उन्हें एक बेहतर नागरिक और एक सक्षम इंसान बनने में मदद करता है। तो फिर प्रेरित करिए अपने नौनिहालों को और अपने युवाओं को कि वे एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आज की कड़ी का यहीं समापन करते हैं। सर, आपने एनसीसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद पूर्वा जी, धन्यवाद श्रोताओं। जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना रही अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार। नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के या पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडी द्वीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है। कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं, भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए, और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय, ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कौल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कौल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएं थी, सबने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ, वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग् दिग्दिगंत है, दिग्दिगंत दिग् दिग्दिगंत दिग् दिग्दिगंत दिग् दिग्दिगंत है, काल प्रलय घनघोर गहन, दिग् दिगंत तक घोर गए लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो एकारणो तो एकारणो के निवृत्त मेरे में निष्ठ चेतना चल स्थिर में गंज लीन रस्ते लीन है परसनाथ थिर चेर स्थिर में जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत उलझ पर जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत काल पर घर घोर गए हैं दिग दिगंत तक घोर गए लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो रहो न तब भी रहो न तब भी रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा। हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा शुभम वरेण्य सदा सर्वदा नर्मदाति पुण्य नर्मदा। हरिनिनाद शम शम निनाद शंभु निनाद जलधार सर्वदा शिव स्थापन हृदय हृदय हर हर हर हर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो नर्मदा। काल नहीं बाधा प्रवाह में मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे बहु निरंतर बहु नर्मदा बहु निरंतर बहु नर्मदा नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
2: शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य। विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: मिर्जा एहतशामुद्दीन, वे मुगल दूत जिसे लंदन एक अजूबा समझ बैठा। 1766 में मिर्जा एहतशामुद्दीन नामक एक व्यक्ति अपने साथ एक गुप्त विश्वासघात और एक पैनी पारखी नजर लेकर लंदन की सड़कों पर उतरा। वे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का दूत था, जिसे राजा जॉर्ज तृतीय को सैन्य सहायता के लिए एक हताश भरी अर्जी देने के लिए भेजा गया था। लेकिन वे इस बात से अनजान था कि शक्तिशाली रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही उसका पत्र रोक लिया था, जिससे उसका उच्च स्तरीय कूटनीतिक मिशन एक अकेले और अनचाहे अवकाश में बदल गया। 18वीं सदी के लंदन वासियों के लिए एहतशामुद्दीन एक चलता फिरता अजूबा थे। वे गरीब भारतीय नाविकों को देखने के अभ्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी मुंशी पगड़ी और शॉल पहने एक परिष्कृत भारतीय विद्वान को नहीं देखा था। लोग उन्हें एक नजर देखने के लिए खिड़कियों से बाहर गर्दनें निकालते थे। बच्चे डर के मारे सुन्न हो जाते थे और चीखते हुए अपने घरों में भाग जाते थे। देखो, एक काला आदमी, या यहां तक कि उन्हें काला शैतान भी कहते थे। फिर भी वह डर क्षणभंगुर था। कुछ ही महीनों में वह शैतान एक हस्ती बन गया। एहतशामुद्दीन बाजारों में किसी अछूत की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि की तरह घूमते थे, जहां वह लंदन के यांत्रिक चमत्कारों को देखकर हैरान थे। वहीं उन्हें एक चरम विडंबना का एहसास हुआ। वह यूरोप के दृश्यों का आनंद लेने आए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे खुद वहां के सबसे बड़े दृश्य यानी तमाशा बन गए थे। उन्होंने अंततः इंग्लैंड का पहला भारतीय यात्रा वृत्तांत लिखा, जिससे ये सिद्ध हुआ कि भले ही लंदन वासियों ने उन्हें एक अजीब नमूने के रूप में देखा, लेकिन वे वास्तव में उस व्यक्ति को देख रहे थे जो अंततः भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के बारे में लिखेगा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्धपोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
0: हाँ बेटा।
1: कितनी सारी छुट्टियां हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
0: हाँ बिल्कुल दी है
1: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
0: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
1: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
0: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्धपोत, गश्तीपोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्ती पोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
1: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो, तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
1: सही कहा आपने दादाजी। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
0: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
1: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
0: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी जुआरी जो सदियों से बह रही है।
1: जुआरी नदी?
0: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
1: अच्छा।
0: जाने कितनी नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
1: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड, और पास ही आपकी जुआरी नदी।
0: हाँ बेटा, ये जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
1: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
0: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
1: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
0: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
1: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
1: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
0: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
1: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
0: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
1: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
0: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
1: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
0: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
1: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जुआरी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
1: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
0: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
1: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
0: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
1: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
0: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
1: ठीक है,
0: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
1: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
0: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
0: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
0: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
1: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है, यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यहीं किया जाता है।
1: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
1: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
0: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
1: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
0: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियां भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
1: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
0: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
1: दिमाग में?
0: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
1: सही कहा दादाजी।
0: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
1: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
0: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है, यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है
1: और यहीं पर CAD काम आता है।
0: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
1: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
1: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
0: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
1: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
0: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती हैं। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
1: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
0: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
1: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
0: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है, यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
1: मतलब

0: करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
1: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
1: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
0: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
1: और GSL भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
0: हाँ बिटिया, इसीलिए GSL केवल जहाज नहीं बना रहा बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
1: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
0: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हों। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
1: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
1: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
0: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
1: ऐसा?
0: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
1: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
0: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
0: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
1: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
1: सो तो है दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
1: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
0: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
1: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना। फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
1: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
0: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
1: दादू, GSL खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
0: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
1: तो क्या ये युद्धपोतों से छोटे होते हैं?
0: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
1: दादू, मैंने पढ़ा था कि GSL स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
0: हाँ, सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
1: दादू, आपने कहा था कि GSL की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
0: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
1: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
1: दादू, क्या GSL में अनुसंधान भी होता है?
0: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
1: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
0: देखो बेटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
1: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि GSL अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
0: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
0: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
1: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
0: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
1: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
0: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और GSL ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
1: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
0: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे, GSL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
1: और इसमें होता क्या है?
0: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है, कहां जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
1: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
0: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
1: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
0: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
1: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
0: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
1: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
1: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
0: हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
1: सो तो है।
0: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
1: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिपलिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
0: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिपलिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
1: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
0: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
1: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
0: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
1: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
0: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
1: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
0: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
1: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
0: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई हैं। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
1: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
0: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
1: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
0: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
0: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा, और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
1: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
0: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
1: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
0: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम याद करो कुर्बानी लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र भारती। आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में रमेश चंद्र दत्त की।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
1: श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त योग्य प्रशासक, देशभक्त और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी गिनती बांग्ला के विख्यात साहित्यकारों में होती है। 19वीं शताब्दी में कमिश्नर के उच्च पद पर पहुंचने वाले वो एकमात्र भारतीय थे। उनके प्रशासन और साहित्य दोनों में ही हमें उनकी देशभक्ति देखने को मिलती है। उनके महत्व को ठीक ढंग से आंकने के लिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 1857 के गदर के बाद जिन कर्मठ महापुरुषों ने अंग्रेजी शासन की अभारतीय नीति से उत्पन्न कठिन परिस्थिति में भारत को एक राष्ट्र बनाने का व्रत लिया और मरते दम तक उसे निभाया भी, उनमें रमेश चंद्र दत्त की गिनती सदा अग्रणी रहेगी। इस संबंध में उनका अधिक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में भारतीयों की अभिरुचि फिर से जगाई थी और विदेशियों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा की थी। रमेश चंद्र ने इस बात की भरसक कोशिश की थी कि भारतवासी अपने देश की कला और साहित्य का आदर करना सीखें। उनका विश्वास था कि जो देश अपने प्राचीन गौरव का आदर करना नहीं जानता, उसकी उन्नति ना तो वर्तमान में होती है और ना ही भविष्य में संभव होती है। जब भारतवासियों में अपनी पुरानी उन्नति और गौरव का मान होगा और भूतकाल में उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की उनसे बचने की वो कोशिश करेंगे, तभी ये भारत स्वतंत्र हो पाएगा। श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त के बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और जो केंद्रित है आज रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता के एक धनी सुशिक्षित और साहित्य प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता ईशान चंद्र दत्त डिप्टी कलेक्टर थे। वो डिप्टी कलेक्टरी के सिलसिले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अनेक राज्यों में घूमते रहते थे। इस तरह बालक रमेश चंद्र को कई जिलों की अच्छी जानकारी हो गई। जब रमेश चंद्र की आयु लगभग 11 वर्ष की हुई तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और 2 साल बाद 1861 में सरकारी काम के सिलसिले में दौरे पर जाते हुए नदी में नौका डूबने से पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद 3 साल तक चाचा शशि चंद्र दत्त की देखरेख में ईशान चंद्र के अनाथ बच्चों का पालन पोषण हुआ। उनके चाचा की साहित्य में बहुत अच्छी रुचि थी। जब रमेश चंद्र 4 साल के हुए तभी कलकत्ता की एक पाठशाला में उनका दाखिला करा दिया गया। इस पाठशाला में पहले ताड़ के पत्रों पर फिर केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता था। इस पाठशाला से निकलने पर वो एक बंगला स्कूल में नाम लिखाने चले गए। वहां कुछ समय तक पढ़ने के बाद हायर स्कूल में दाखिल हो गए। इसी स्कूल से उन्होंने 1864 में एंट्रेंस की परीक्षा पास कर ली और 2 साल के लिए 12 रुपए मासिक का वजीफा पा लिया उन्होंने। 2 साल बाद एफए की परीक्षा में जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनमें रमेश चंद्र दत्त का 2रा नंबर था। उन्हें 2 साल तक 32 रुपए मासिक का वजीफा मिलता रहा। 1868 में वो बीए की परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद वो चाचा से पूछे बिना ही विलायत में आईसीएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए चले गए और 1870 में उन्होंने इस परीक्षा में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा ही दिया। इस परीक्षा में बैठे तो थे लगभग 325 विद्यार्थी पर उनमें से केवल 50 लोग ही चुने गए और उन 50 विद्यार्थियों में रमेश चंद्र का नंबर 3रा था। जी हाँ, उनके साथ आईसीएस की परीक्षा देने वाले 3 और भारतीय सज्जन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिहारी लाल गुप्त और श्रीपद बाबाजी ठाकुर। ये 4ों भारतीय विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए चुने गए। इनके पहले सिर्फ 1 भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भारत की सिविल सर्विस में प्रवेश कर पाए थे। श्रोताओं, कैसी थी आगे की विद्यार्थी जीवन की यात्रा रमेश चंद्र दत्त की, जानेंगे इस देशभक्ति गीत को सुनने के बाद।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो आज केंद्रित है रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त इंग्लैंड के विद्यार्थी काल में ग्लैडस्टन और डिज़रेली के भाषण सुनने अक्सर जाते थे। उनका परिचय उस समय के प्रसिद्ध नेताओं जॉन ब्राइट और हेनरी फॉसेट से भी हो गया। इंग्लैंड के जिन साहित्यकारों से उनकी भेंट हुई उनमें जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डिकेंस के नाम उल्लेखनीय हैं। जनवरी 1864 में रमेश चंद्र का विवाह मतंगिनी मोहनी बोस के साथ हो गया। विवाह के बाद 45 वर्ष तक उन्होंने आनंद पूर्वक जीवन बिताया। रमेश चंद्र के 6 बच्चे हुए, 5 लड़कियां और 1 बेटा। उनकी 6 संतानें और उनकी पत्नी 1909 तक साथ रहे। 1871 में रमेश चंद्र दत्त असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर पहली बार नियुक्त हुए और 11 साल तक इसी पद पर विभिन्न परगनों में काम करते रहे। दक्षिण शहबाजपुर गंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक टापू है। 1876 में इस टापू में भीषण तूफान और बाढ़ आने के कारण एक ही रात में 40,000 जाने चली गईं। वहां 20 फुट से भी अधिक पानी भर गया। सरकारी इमारतें नष्ट हो गई, सारा शासन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी भी इस प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हो गए, शेष जान बचाकर भाग गए। दुर्घटना के बाद और बाढ़ के बाद टापू में हैजा फैल गया, जिसके कारण 20,000 आदमी उसके शिकार हो गए। बीमारी को रोकने के लिए भी दत्त महाशय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो घर जाते और घर वालों का हाल सुनकर उनका समुचित प्रबंध करते थे। आखिर कुछ महीनों के बाद इस रोग का प्रकोप शांत हुआ और उनकी बदली किसी दूसरे परगने में कर दी गई। 1873 से 1882 तक वो कई जिलों में जिलाधीश रहे। फिर 1883 में उनकी नियुक्ति स्थानापन्न कमिश्नर के पद पर हो गई और इसके बाद 1895 में वो बंगाल की विधानसभा के सरकारी सदस्य मनोनीत हो गए। कह सकते हैं कि 26 साल तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। जिस समय उन्होंने आईसीएस में प्रवेश किया उस समय देश के शासन में ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, क्योंकि देश के अंग्रेज शासकों की ये धारणा थी कि ऊंचे पदों की जिम्मेदारी भारतीय नहीं उठा सकते। लेकिन दत्त महाशय ने अपनी योग्यता से ये सिद्ध कर दिया कि जहां अंग्रेज अधिकारी जिले की शासन की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सके, वहां उसी जिम्मेदारी को भारतीय अधिकारियों ने पूर्ण योग्यता से निभाया है। फिर भी भारत के शासन में अंग्रेजों का इतना अधिक हाथ था कि दत्त महाशय जैसा प्रतिभाशाली भारतीय भी स्थानापन्न कमिश्नर के पद पर 4 वर्ष तक ही रह पाया था। रमेश चंद्र की योग्यता से भारत के अंग्रेजों ने अपनी अभारतीय नीति को बदलने का फैसला किया, लेकिन ये परिवर्तन इतने अधिक समय बाद हुआ कि अंग्रेजों की निष्पक्षता पर से भारतीयों का विश्वास उठ गया था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रमेश चंद्र दत्त ने सरकारी नौकरी निराशा के कारण छोड़ दी। सरकारी नौकरी तो उनकी दृष्टि में गौण थी। प्रौढ़ होने के बाद भी उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत भूमि की सेवा करना। सरकारी नौकरी का मोह तो उन्हें कभी रहा भी नहीं। सिस्टर निवेदिता का कहना था कि उनका लक्ष्य भारत को ऊंचा उठाना था। यश कमाने की लालसा उन्हें छू भी नहीं पाई थी। वो तो उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अपने देश के लिए बड़ी बड़ी बातों का स्वप्न देखा था और उन स्वप्नों को सार्थक बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। रमेश चंद्र दत्त की लेखनी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले ये देशभक्ति गीत।

सन 1897 से 1904 तक रमेश दत्त ने अपनी वाणी और लेखनी से इंग्लैंड स्थित अंग्रेजों को भारत के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता समझाने की पूरी कोशिश की थी। उनके इस आंदोलन से इंग्लैंड वालों को भारतीयों की राजनीतिक मांगों पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ा था। लेकिन इस आंदोलन में दत्त महाशय को जिस निराशा का सामना करना पड़ा उसकी झलक उनके पत्रों में हमें देखने मिलती है। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने ठीक कहा था कि दत्त महाशय की पीढ़ी वालों के भाग्य में तो असफलता ही लिखी है, बाद में उन लोगों की बारी आएगी जो सफल होंगे। इंग्लैंड में रमेश चंद्र के आंदोलन को देखकर कृतज्ञ भारतवासियों ने 1899 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इस पद से उनका जो संभाषण हुआ उसकी सभी दलों ने प्रशंसा की। उनके संयमित और ठोस तर्कों से विरोधियों का विरोध भी फीका पड़ गया। बात 1904 की है। भूतपूर्व बड़ौदा रियासत के अधिपति सयाजी राव गायकवाड़ के अनुरोध पर रमेश चंद्र दत्त ने राज्य में माल मंत्री के पद पर काम करना स्वीकार कर लिया। इस पद पर उन्होंने 3 साल तक काम किया। राज्य और जमींदारों के कर भार से गरीब किसानों को मुक्त कराने का काम उन्होंने उसी समय किया जब वो अंग्रेज शासित भारत में सरकारी मुलाजिम थे। उनके इस पद पर आने के बाद सभी लोग एकटक इस बात को देख रहे थे कि अंग्रेज शासित भारत में सरकारी नौकरी के आरंभ से ही जिन सुधारों के लिए वो लड़ते आए हैं अब कार्य कर रहे हैं कि नहीं। पर दत्त महाशय भी अपनी धुन के ही व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ौदा में गरीब किसानों का पक्ष लेकर जो सुधार कार्य किया उसको देखकर आलोचक भी उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे थे। राज्य का कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जिस पर रमेश चंद्र दत्त की पैनी दृष्टि ना थी। उसमें कुछ न कुछ सुधार हुए ही हुए थे। बड़ौदा राज्य में उनके प्रमुख सुधारों का उल्लेख करना यहाँ बिल्कुल जरूरी है। किसानों का कर भार घटाना, दुखदायी करों और शुल्कों को बंद करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, राज्य परिषद का संगठन, प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और बड़ौदा राज्य में धनिकों द्वारा उद्योग और व्यवसाय की उन्नति कराना, ये सारे कार्य रमेश चंद्र दत्त ने किए थे। 1907 में विकेंद्रीकरण कमीशन की नियुक्ति हो गई। उसके एक भारतीय सदस्य रमेश चंद्र दत्त ही थे। 2 साल तक इस कमीशन में काम करने के बाद वो भारत लौट आए और जून 1909 में उनकी नियुक्ति बड़ौदा राज्य के दीवान के पद पर हो गई। 6 महीने भी काम नहीं कर पाए थे कि भारत के बड़े लाट की अगवानी में काम करने के कारण वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए और 30 नवंबर 1909 को वो इस संसार से विदा हो गए। अपने जीवन काल में उन्होंने कम से कम 18 ग्रंथों की रचना की। इनमें से अधिकांश वे ग्रंथ हैं जिनको सरकारी अधिकारी रहते हुए छुट्टी के दिनों में उन्होंने लिखा था। इनमें से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं यूरोप में 3 साल 1872 में लिखा, बंगाल के किसान 1875 में, बंगाल का साहित्य लिखा उन्होंने 1888 से 90 के बीच में, प्राचीन भारत की गाथाएं 1894 में। ये चारों ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में हैं। बांग्ला इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह रमेश चंद्र दत्त ने लिखे थे। पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो आज हमने केंद्रित किया है रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त ने ऐतिहासिक और दो सामाजिक उपन्यास बांग्ला में लिखे। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम हैं बंग विजेता, माधवी कंकड़, राजपूत जीवन संध्या और महाराष्ट्र जीवन प्रभात। इन चारों उपन्यासों में मुगल शासन के 100 वर्षों का इतिहास लिखा गया है, इसलिए 100 वर्ष नाम से एक पुस्तक भी निकाली गई, जिसमें चारों उपन्यास एक साथ छापे गए थे। अंतिम दो ऐतिहासिक उपन्यासों का भारत के अलावा विदेशों में भी बड़ा मान हुआ था। रमेश चंद्र ने हिंदू शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था और इन पर लिखना भी चाहते थे। बंकिम चंद्र ने उनके इस विचार का स्वागत किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 2 खंडों में हिंदू शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की। रमेश चंद्र ने जो उपन्यास लिखे उनसे उनकी प्रगाढ़ देशभक्ति और कल्पना की उड़ान का परिचय हमें मिलता है। समालोचकों का कहना है कि ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि सुंदर रूप से की गई है। सामाजिक उपन्यासों में गांवों का जो चित्र रमेश चंद्र ने खींचा है वो अभूतपूर्व है। बंगला भाषा में इस तरह के सामाजिक उपन्यास रमेश चंद्र ने ही पहले पहल लिखे थे। नौकरी से अलग होने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में 4 और ग्रंथ रचे थे, इंग्लैंड और भारत। दूसरा लिखा भारत का आर्थिक इतिहास। तीसरा ग्रंथ था महाभारत और रामायण, इसका उन्होंने अंग्रेजी में पद्यबद्ध अनुवाद किया था। भारत में दुर्भिक्ष, इन चारों अंग्रेजी ग्रंथों के प्रकाशन का उद्देश्य यही था कि अंग्रेज भारतीय संस्कृति में रुचि लेने लगे। उन्हें भारत में अपने देश की अभारतीय नीति के कुपरिणामों को समझने और भारतीय शासन में भारतीयों का अधिकाधिक प्रभाव बढ़ाने के लिए वो विवश हो सके। 1890 से 1904 तक न जाने कितनी सभा सोसाइटियों में रमेश चंद्र बोलते थे और न जाने कितने विषयों पर उन्होंने लेख लिखे, लेकिन उनकी चेष्टा यही रही कि भारत के कष्टों को जानकर इंग्लैंड के अंग्रेज भारत के शासन में अभारतीय नीति को बदल दें। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अंग्रेज कर्मचारियों ने भारत में जो लूट मचाई थी उनकी कहानी आज भी हमें दत्त महाशय लिखित भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास के प्रथम खंड में देखने को मिल जाती है। उन्होंने बार बार इस बात को स्वीकार किया कि अपनी मातृभाषा में लिखकर ही कोई व्यक्ति अमर हो सकता है, विदेशी भाषा में लिखकर नहीं। रमेश चंद्र दत्त ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था भारतीयों को अपनी पुरानी कला और संस्कृति के गौरव का मान करना सिखाना। जब वो अभारतीय परिस्थिति में राजनीतिक कार्य करते थे, सरकारी नौकरी में या स्वतंत्र रूप से, उस समय देश की वो परिस्थिति नहीं थी जो बाद में हो गई। लॉर्ड कर्जन ने रमेश चंद्र दत्त से भेंट में कहा था कि भारत में तो एकाधिपत्य राज्य ही चल सकता है। लॉर्ड कर्जन खुल्लम खुल्ला इस बात को दोहराते थे कि भारत में तानाशाही का बोलबाला रहेगा। ऐसी अवस्था में जिन कर्मठ देशभक्तों ने भारत को स्वराज की ओर बढ़ाया, उनमें रमेश चंद्र का नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के प्रति उन्होंने सदा उदारता का व्यवहार किया। इस संबंध में कभी उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं हुई। गोखले जी उनसे छोटे थे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी समवयस्क, पर उन दोनों की ही प्रशंसा उन्होंने मुक्त कंठ से की थी। मृत्यु से पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र से रमेश चंद्र दत्त की निस्वार्थ देशभक्ति टपकती है। इस पत्र का सार है, एक पीढ़ी के जीवन काल में हमने कैसी आश्चर्यजनक क्रांति देखी है, भारतीय राष्ट्र के विचारों और धारणाओं में कितना परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तन लाने में तुमने कितना उच्चतम भाग लिया। एक एक करके हमारे साथ ही गिरते जाते हैं। बैनर्जी चले गए, आनंद मोहन चले गए, लाल मोहन चले गए, हम दोनों भी शीघ्र ही उड़ जाएंगे। लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रथम चरण का जो इतिहास होगा, उनमें उन देशभक्तों का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा जिनकी बदौलत ये परिवर्तन हुआ है। उन देशभक्तों में तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बहुत संभव है कि रमेश चंद्र की सरकारी नौकरी को लोग भुला दें, लेकिन साहित्यकार और देशभक्त के रूप में उनका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। उसे भूल जाना या भुला देना हम नहीं कर सकते,
ऐसे अप्रीतम रमेश चंद्र दत्त लेखक को हमारा नमन। तो श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त को हम देते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां 11 अगस्त से रूपाभ प्रदर्शनी श्रृंखला के अंतर्गत चित्रों और शिल्पों की समूह प्रदर्शनी का शुभारंभ

0: इस मौके पर हमने बात की वहाँ मौजूद कलाकारों से।
1: मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ।
2: पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में आप कैसे आईं? यह महज एक इत्तेफाक है या बचपन से आप चाहती थी आर्टिस्ट बनना?
1: मैं बचपन से पेंटिंग करती थी और धीरे धीरे उसको अपने एक कहते ना कि अपनी हॉबी में रखा उसको मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना MA ग्रेजुएशन और मेरा PhD भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही किया, तो मैंने अपना पूरा फील्ड, पूरी चीज़ें अपनी अपने पेंटिंग में ही करी है।
2: तो ये सब आपने भोपाल में किया?
1: जी हाँ।
2: तो ये आपका सफ़र कैसा रहा?
1: देखिए, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया क्योंकि देखा उन्होंने कि हाँ काम अच्छा है। फिर मैंने पहले तो इतना नहीं था पता कि इस फील्ड में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, है ना, अपना फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। हमारी फील्ड में बहुत सारे कैंप होते हैं, तो पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। पर जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तब मुझे पता लगा कि इसमें कैंप भी हैं जिसमें ये लोग हमें इनवाइट करते हैं, पे भी करते हैं, हमें पेंटिंग बना के देनी होती है। तो धीरे धीरे करके फिर इस चीज़ में मैं अपने आप को मैंने आगे बढ़ाया और अभी काफ़ी सारे कैंप भी किए हैं, एग्जीबिशंस भी करी हैं, ये भारत भवन में हमारा ग्रुप शो।
2: पहली पेंटिंग आपकी कौन सी थी उसको थोड़ा सा याद कीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, सब बदल गई दुनिया, सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग है ना, उसको भी थोड़ा सा बताइए कितना चेंजेस आए।
1: चेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली क्या था, पहले हमें इतना पता नहीं था कि किस, पहले तो ये होता था कि हमने कोई चीज़ देखी उसे देख के ड्रॉ करते थे, पर उसके बाद पता चला कि मतलब ये होता है कि आर्टिस्ट के मन की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने पेंटिंग में निकालते हैं। फिर जब धीरे धीरे सबके काम देखे तो समझ आया कि हाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने काम को चेंज किया। फिर अभी मैं अपने मेरे जो इष्ट हैं मेरे नारायण, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन पे, उनको लेके और नारायण को लेके मैं पूरे पेंटिंग में आप देखेंगे ना कि मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें पेन से, तो मैं ऐसा मैंने काम शुरू किया। मैं जैसे हमारे भारत भवन में ही गए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अखिलेश सर हैं, यूसुफ सर हैं, उसके अलावा जब यहाँ कैंप हुए थे विजय आचरेकर सर हुए, मनोज सर हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन सब का काम देखा। और भी भोपाल के काफ़ी लोग हैं।
2: जो कलाकार होता है, जो वो जो सोचता है वो बनाता है, है ना। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज़ हम सोसाइटी से, समाज से भी लेते हैं जो घटता है, क्या ऐसा भी होता है?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट को भी अपनी पेंटिंग्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये तो होता है।
2: कोई नया इंसान जो नहीं जानता पेंटिंग को, जैसे कि मैं ही अगर देखूंगा तो जो समझने वाले होंगे वो अलग तरह से समझे, मैं शायद मैं ना समझ पाऊँ। एक नया इंसान जो आके चले जाता है, कोई क्या गायन का हो या थिएटर हो या पेंटिंग हो, आप जो बनाती हैं तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है? मैं ये नहीं पूछूंगा 8 दिन में बनती है, महीने में बनती है, वो अलग अलग शायद डिपेंड करता हो, तो प्रोसीजर उसका क्या रहता है थोड़ा सा वो ज़रूर समझाइए। और एक कलाकार में क्या भावनाएँ आती हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा हम मतलब अपने दिमाग में चीज़ें वो करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कॉपी में हम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या इंक्लूड करना है। मतलब एक दो दिन तो आप ये मान लीजिए कि हम काम करते भी हैं तो भी हम अपनी कॉपी में ही उसको और मेमोरी में जो भी आता है उसको ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम कैनवस पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिर उन पर कलर्स लगाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे फिर कलर करके फिर वो कंप्लीट हो जाता है। या फिर भी लगता है मतलब काम तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है या कुछ ना कुछ बनाना है, तो वो चीज़ तो रहती है, पर कंप्लीट ऐसे ही करा जाता है।

0: मैं डॉक्टर स्वाति एम जैन हूँ, भोपाल से ही हूँ।
1: कला की दुनिया में आप, मतलब पेंटिंग दुनिया में आप कैसे आ गए?
0: एक्चुअली मैं भोपाल की हूँ और मेरा पूरा बचपन और अभी तक सारा टाइम मेरा भोपाल में ही निकला है। भोपाल में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब मैं, हमारे स्कूल में सर थे सचिदा नागदे सर, उनका काम देखती थी, उनको देखती थी, तब से मेरा बहुत मन था इस फील्ड में आने में। बट मैं साइंस स्टूडेंट थी तो ट्वेल्थ तक मेरा साइंस था, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अपने फैमिली में कहा कि मुझे अब मुझे आर्ट की फील्ड में ही जाना है, मुझे साइंस वगैरह नहीं चाहिए। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे कॉलेज ख़त्म किया, एमए किया पीजी करने के बाद, और उस बीच में मतलब बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही, अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे, तो थोड़ा सा और वो लगा कि हाँ चलो अब मुझे इस फील्ड में ही जाना है। तब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। क्या होता है कि लाइफ तो चलती रहती है, अलग अलग सब, हर एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी होती है। जैसे मेरे जर्नी की बात करें तो मैंने जब एमए किया उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, वो किया, वो कर ही रही थी कि मेरा जॉब, हाँ जी वो मैंने भोपाल से किया, फिर मेरा जॉब लग गया। तो मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब मेरा थोड़ा सा गैप हुआ, फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, पहले तो सोचा था कि अब शादी हो गई तो अब ये करेंगे वो करेंगे, बट एक लंबा, हाँ एक ठहराव समझ लीजिए लगभग 10-11 साल का एक लंबा गैप आ गया। उस बीच में मैं अपना घर में काम करती रहती थी बट बाहर नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा जॉब लगा, मैंने 5 ईयर्स जॉब किया, घर से बाहर निकलना था, लोगों से मिलना था, वो सब किया, जी सब भोपाल की बात है, तो वो किया। उसके बाद मुझे कहीं लगने लगा कि अब मुझे लोग जानने लगे हैं, फिर से पहचानने लगे हैं, बट मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। एक लाइफ हो गई कि घर और स्कूल, बस उसके अलावा कोई तीसरा कुछ नहीं था। तो मैंने अपना जॉब छोड़ा और फिर मैं पूरे की पूरी तरह से आर्ट की फील्ड में, जी कहीं ना कहीं मन में एक घुटन सी होने लगी थी कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ।
1: यही तो कलाकार की पहचान है,
0: जी। तो मैंने अपना स्कूल का जॉब छोड़ा और उसके बाद फ्रीलांस करना शुरू किया और कर रही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से मिलती है, कभी होता है कि हमारे कुछ काम किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, तो वो हमारे लिए बोल के भी जाते हैं, बट ये कि हम उससे और नई चीज़ें सीखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाएँ हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
1: आपने कहा ना, एक बात मुझे याद है, आपने कहा कि आपका जो काम रहता है, तो कभी ऐसा भी होता होगा जो काम आपको बहुत पसंद है वो लोगों की समझ में नहीं आता होगा, और जो आपको कमज़ोर लगता है?
0: हाँ होता है, कई बार लगता है कि मुझे लगता है ये काम तो मेरा बहुत सबसे फेवरेट काम है, सब है, लेकिन सामने वाले को लगता है अरे यार इसमें तो ये नहीं है वो नहीं है, और जो काम मैं डर रही होती हूँ लगाने में उसकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग फ़र्क पड़ जाता है सबकी, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग है, उनकी सोच अलग है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है।
1: जब आप शुरुआती दौर में और फिर इतने लंबे टाइम में, वो कौन से आर्टिस्ट थे जिनको आप देख रही थी, उनके काम को देखती थी, उनसे आप इंस्पायर होती थी, उन लोगों के नाम ज़रूर लीजिए।
0: हाँ जी, बेसिकली मैं स्टार्ट किया था तो मुझे लाइनिंग का काम बहुत पसंद है, बारीक काम, तो मैं मधुबनी आर्टिस्टों को देखती थी, मानव संग्रहालय में उनके वर्कशॉप्स होते थे, उस समय एक यशोदा देवी जी करके आए थे, तो उनका काम मैं देखती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, और लाइनिंग वाले काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, जितना बारीक काम होगा उतना मज़ा आता है, तो उनको देखा, मधुबनी में थोड़ा काम किया, फिर उसको करते करते धीरे धीरे मैंने अपना एक स्टाइल निकाला और फिर मैंने अपना एक नया काम शुरू किया, फिर मैंने अपना धीरे धीरे काम निकाला और काम करना शुरू किया।
1: अच्छा, तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था, आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि जब कलाकार बनाता है अपनी किसी भी कला से हो, तो आप लोगों के मन में क्या चलता है?
0: देखिए, जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे जो काम है उनमें आपको सब कामों में टेक्सचर का ज़रूर दिखेगा, मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद है, वो टेक्सचर्स मैं सबसे पहले अपनी उस पर डालती हूँ, और फिर जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चलता है, जैसे आप इस पेंटिंग में भी देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में

0: उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमें कहीं एग्जीबिशन के लिए काम करना और ऐसा है कि अभी हमें तुरंत, हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम रहता है। टाइम
1: तो अगर आप लोगों को बस चले तो आप आराम से करें।
0: हाँ, मैं तो फिर सोच सोच के, क्या होता है ना, कोई काम हम जब करते हैं तो फिर हम उसको बैठ के दूर से देखते भी हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या ठीक लग रहा है कि और क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही। कई बार होता है हमने कुछ बनाया बट हमको वो चीज़ बाद में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको फिर से नए सिरे से करते हैं।
1: जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें, इस पेंटिंग की फील्ड में, उनसे आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी आर्टिस्ट की फील्ड में आना चाहता है तो वो कम से कम एग्जीबिशंस में जाए, लोगों का काम देखे। जितना वो देखेगा उतना उसको सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिस, मतलब आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जल्दबाजी में आप चाहोगे कि आपको फेम मिल जाए और उसके पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको लोग पूछ रहे हैं, बट जब लोग देखेंगे कि ये तो खाली सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनका काम में कुछ वो नहीं है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आपका खुद का मन ही ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है कि आप जितना लोगों को मिलोगे और जितने आर्टिस्टों का काम देखोगे, आपके दिमाग में उतने आइडियाज़ आएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे मेन काम है कि आप देखो, जितना देखोगे उतना सीखोगे, वो चीज़ है।

0: मेरा नाम नेहा सैयद है। मैं एक सेरेमिक आर्टिस्ट हूँ और सेरेमिक में सूफीज़म पे मैं काम करती हूँ।
1: मैं थोड़ा सा सेरेमिक का आपने जिक्र किया, तो सेरेमिक की फील्ड में आप कैसे आ गई?
0: मैं सीखकर तो अपने ग्वालियर से ही आई थी। अच्छा। मैंने यहाँ के प्रैक्टिस स्टार्ट की और मुझे गाइडेंस जरूर मिलता रहा सबका, तो उनके गाइडेंस में फिर मैंने नए नए ग्लेजेस एक्सप्लोर करे और बहुत सारी चीज़ें मैंने नई करने की कोशिश की जो कि ग्लेज में। फिर मैं बाहर भी बहुत सारी एग्जीबिशंस मैंने कर चुकी है बाहर, और पोटस मार्केट भी मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ।
1: अच्छा, तो सेरेमिक आर्टिस्ट लोग तो नहीं समझते, क्या है
0: सेरेमिक? उनको ऐसे बताना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग तो जानते हैं कि सेरेमिक क्या होता है, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता तो उनको बताना पड़ता है चीनी मिट्टी जो होती है उसका ही एक रूप है ये, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है। तो इस तरह से मैं उन्हें बताती हूँ। और मेरी जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो आर्टिस्ट का ही रहा है। तो मेरे नाना जी इंग्लैंड में रहे थे कई साल, तो उनको आर्ट फील्ड बहुत पसंद आती थी, वहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह जो देखते थे। तो उनका कहना था कि एक भी कोई बच्चा है वो कुछ आर्ट में करे। तो जो पहले हम लोग टेराकोटा मिट्टी से कुछ भी बनाते रहते थे, तो फिर पापा को लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है आगे। बचपन से जब मैंने कुछ मिट्टी में बनाया तो मुझे कई अवार्ड स्कूल टाइम में लगे, और ट्वेल्थ में भी मुझे कई अवार्ड मिले, पेंटिंग में भी मिले। तो मैं पेंटिंग भी करती थी और स्कल्पचर भी। फिर मैंने स्कल्पचर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने ग्रेजुएशन स्कल्पचर से किया। उसके बाद मैंने उसमें सोचा कि मैं क्या मीडियम ले सकती हूँ, क्योंकि स्टोन पे जब मैं काम करती थी तो मेरे पूरे हाथ छिल जाते थे। फिर मैंने सेरेमिक लिया कि मैं क्ले में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो मैं सेरेमिक पे और अच्छे से कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या है कि सेरेमिक में जब मैं सूफी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, वो अपने आप उसका जब आप फेस देखेंगे तो पूरा खुद से एक्सप्रेस हो जाए। मुझे कुछ अलग से बताने की या दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं ये चाहती हूँ। तो मैं उसके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं पूरे इस तरह से बनाती हूँ कि लोग देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये पूरा ऊपर खोया हुआ है।
1: ये बनता कैसे है
0: सेरेमिक? तो देखिए, एक तरह के क्ले है, तो क्ले को मैं किसी भी चीज़ का सांचा या मैं टूल्स भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर्स से ही पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ, और उसी से उसका शेप वगैरह और नीचे का जो स्कर्ट होता है उसका पूरा फॉल वगैरह मैं पेपर के थ्रू देती हूँ कि उससे उसमें अच्छे से फॉल आ जाए। और जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, बुक्स बनाई, तो ये भी सारी फ्री हैंड, मैंने कोई मोल्ड वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। और बनने के बाद में हम एक फायरिंग करते हैं जो 800 टेम्परेचर तक जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मजबूती आ जाती है उसमें। उसके बाद में फिर हम इस पर ग्लेज करते हैं, जो भी कलर्स मुझे करना होता है, फिर हम दोबारा से इसको फायर करते हैं। उसमें लगते हैं 8 से 10 घंटे, तो वो 1200 टेम्परेचर तक जाता है। उसके बाद में उसमें जो चमक आती है, जो इफ़ेक्ट आता है, उसके बाद में आता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

राजधानी स्थित प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन की रूपाब ललित कला दीर्घा में आयोजित कला प्रदर्शनी के दूसरे दिन दर्शकों का विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दूसरे दिन 5 प्रमुख कलाकारों ने एक साथ लाइव आर्ट प्रदर्शन किया। कलाकारों ने दर्शकों के सामने ही अपनी रचनात्मकता और कैनवास पर रंगों का लाइव जादू बिखेरा। उपस्थित कला प्रेमियों ने न केवल इन अनूठी कलाकृतियों का लुत्फ उठाया बल्कि कला निर्माण की बारीक तकनीकों को भी करीब से देखा व समझा। प्रदर्शनी के दूसरे दिन कला प्रेमियों की भारी मौजूदगी ने भारत भवन के माहौल को बेहद जीवंत बनाए रखा।

कलाकारों ने अभिनय से रंगकर्मी केजी त्रिवेदी चच्चा को अभिनय से श्रद्धांजलि दी। बुधवार को त्रिकर्षी नाट्य संस्था के ने नाटक आकार का मंचन किया गया। इसमें कलाकारों ने अभिनय के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। नाटक ख्याल प्रेक्षागार में हुआ। ललित सहगल द्वारा लिखित यह नाटक महात्मा गांधी के विचारों, सत्य और अहिंसा के जीवन दर्शन पर आधारित रहा। कलाकार अश्विनी मिश्रा, शिवकांत वर्मा, देवेश झा और शिवम गुप्ता ने अपने सशक्त अभिनय और सटीक संवाद अदायगी से दर्शकों को अंतर्मुखी होकर सोचने पर मजबूर कर दिया।

हरी भरी वादियों के बीच रिसर्चर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर श्यामला हिल्स की लाइब्रेरी में सभी को मेंबरशिप दी जाएगी। यह मानव संग्रहालय में है। बुधवार को भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ पांडे ने बताया कि यहाँ छात्र, शोधार्थी, आम पाठक 1,000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर सदस्य बन सकेंगे। खास बात यह है कि संग्रहालय में होने वाले कार्यक्रमों में सदस्यों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मिजाज देशभक्ति के रंग में रंग गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से तिरंगा यात्रा निकली। हाथों में लहराता राष्ट्रध्वज, फिजाओं में देशभक्ति के गीत और चेहरे पर गर्व का भाव, कुछ ऐसा ही नजारा था संग्रहालय से बोट क्लब तक के पूरे रास्ते का। तीन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा मार्च जीवंत सांस्कृतिक सफर बन गया। यात्रा परिसर स्थित मणिपुर के कांगला द्वार से शुरू होकर राजस्थान की पारंपरिक राजपूत छतरी और असम के कारापात द्वार जैसी मशहूर प्रदर्शनियों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही प्रतिभागियों का दल बोट क्लब पहुंचा, खूबसूरत झील के किनारे मौजूद सैलानियों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यात्रा का स्वागत किया।

गुहर महल में हस्तशिल्प और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित स्वदेशी हैंडलूम मेले में गुरुवार की शाम मेलोडी नाइट के नाम रही। गायिका अरुणा मेहता और उनके साथी कलाकारों ने लता मंगेशकर और आशा भोसले के सदाबहार गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। 14 अगस्त तक चलने वाली इस मेले में देश प्रदेश के 45 से अधिक हस्तशिल्पी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं।

रेडियो प्रोग्राम एंड रेडियो जॉकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजी और वेब जर्नलिज्म करने वाले स्टूडेंट के लिए मौका होगा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सांध्यकालीन व अंशकालीन पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। योग, सोशल मीडिया, फिल्म, मोबाइल व रूरल जर्नलिज्म, वीडियो प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और ड्रामा एक्टिंग जैसे कोर्स में भी एडमिशन होंगे।

पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की 108वीं जयंती पर 19 अगस्त को शाम 6 बजे से रविन्द्र भवन के अंजनी सभागार में यादें आदित्य की वो जब याद आए बहुत याद आए संगीत में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। M3 ग्रुप द्वारा आयोजन होगा। लाइव ऑर्केस्ट्रा में फिल्म जगत के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल म्यूजियम में गोंड कला देखने को मिलेगी। शलाखा श्रृंखला के तहत यहाँ लिखंदरा चित्र प्रदर्शनी में 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में गोंड समुदाय के चित्रकार ब्रजभूषण धुर्वे यह प्रस्तुति देंगे। श्रृंखला के तहत यह 76वां आयोजन होगा। प्रदेश के आदिवासी अंचल की कला और कलाकारों को प्रमोट करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद का जीवन बड़ी ही घटनाओं से भरा रहा है। उनके भारत भ्रमण के दिनों में वे भारत के लगभग सभी प्रांतों में गए। उन स्थानों में उनकी भेंट तरह तरह के लोगों से हुई। उन्हें खट्टे मीठे कड़वे अनुभव भी हुए, पर कभी वे विचलित नहीं हुए। शांत भाव से सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपने ज्ञान तथा भक्ति से सबको प्रभावित किया। केवल मानव ही नहीं, प्रकृति एवं पशु पक्षी भी उनके सामने माथा टेक देते थे।
1: वृंदावन की एक और मजेदार घटना है। एक दिन स्वामी जी ने अपने एक मात्र वस्त्र कौपीन को धोकर किनारे पर सूखने को डाल दिया और स्वयं स्नान करने के लिए श्री राधा कुंड के पवित्र जल में उतर पड़े। स्नान कर चुकने के बाद स्वामी जी ने देखा तो कौपीन गायब। बड़े विस्मय के साथ उन्होंने देखा, एक बंदर कौपीन उठाकर ले गया है और वह वही किनारे पर एक वृक्ष की डाल पर बैठा है। जल में खड़े खड़े उन्होंने उस बंदर से काफी अनुनय विनय की, पर बंदर ने केवल मुंह बनाकर कौपीन ना लौटाया। तब तो ये सोचकर कि संपूर्ण नग्नावस्था में अब कैसे भ्रमण करेंगे, वे बालक की तरह व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, क्या यही श्री राधा रानी की इच्छा है? तुरंत उनके व्यथित हृदय में अभिमान जाग उठा। जल में से निकलकर स्वामी जी घने जंगल में घुस गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक पहनने का वस्त्र ना मिलेगा, तब तक इसी अरण्य में ही अनशन करते रहेंगे।
0: इतने में उन्होंने सुना कि कोई दूर से उन्हें बुला रहा है। घूम कर देखा, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से उनकी ओर चला आ रहा है, पर स्वामी जी ने उसकी परवाह न की। वे अपनी धुन में ही आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आकर स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। स्वामी जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ खाद्य पदार्थ है तथा एक नया गेरुआ वस्त्र भी है। उस व्यक्ति के अनुरोध से मंत्र मुग्ध जैसे स्वामी जी ने उसके उपहारों को जैसे ही ग्रहण किया कि वह व्यक्ति उस घने जंगल में अदृश्य हो गया।
1: संभव है वो व्यक्ति स्वामी जी की दुर्दशा दूर से ही देख रहा हो। खैर, वस्त्र पहनकर स्वामी जी फिर राधा कुंड लौट आए। आकर उन्होंने देखा कि उनका वो पहले का कौपीन जहाँ पर उन्होंने उसे सुखाया था वहीं पर सुरक्षित रखा हुआ है। अब तो वे बड़े विस्मित हुए। इस घटना से सारी युक्ति और विचारों की सीमा को पार कर उनका हृदय प्रेमानंद से भर गया। वे आनंद विभोर हो गए और तन्मय चित से श्री राधा कुंड के तट पर कृष्ण गुणगान करने लगे।
0: वृंदावन प्रवास के दिन खत्म हुए। विवेकानंद वहां से हरिद्वार जाना चाहते थे। रास्ते में हाथरस नामक शहर में वे थोड़े दिन रुके। एक दिन थके हारे विवेकानंद एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। इतने में हाथरस स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त महाशय वहां से गुजरे। उन्होंने विवेकानंद को पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए देखा। शरद चंद्र को जाने क्या लगा, वे उनके पास आए। युवा सन्यासी के मुख पर एक ऐसा सौम्य भाव था जिससे आकृष्ट होकर के शरद चंद्र ने सोचा कि साधु के लिए कुछ करना अच्छा होगा। उन्होंने कहा,
2: प्रणाम महाराज।
3: कल्याण हो तुम्हारा।
2: महाराज, आप क्रांत दिख रहे हैं।
3: हाँ, चलना बहुत हुआ, थक गया हूँ।
2: महाराज, क्या आप भूखे हैं?
3: हाँ, भूख तो लगी है।
2: तो दया कर मेरे घर चलिए और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मेरा घर पास ही है महाराज।
3: क्या खिलाओगे?
1: शरद चंद जौनपुर में पल्ले बढ़े थे। वे बंगला अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने जवाब में फारसी का एक शेर पढ़ दिया जिसका अर्थ है,
2: हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं अपना कलेजा मसाले में पकाकर तुम्हें खिलाऊंगा।
1: दोनों हंस पड़े। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर शरद चंद्र ने उन्हें हाथरस में उनके घर में रहने का अनुरोध किया। विवेकानंद मान गए।
0: आनंद मंगल से भरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से कहा,
2: मुझे कुछ उपदेश दीजिए महाराज।
3: ज्ञान प्राप्ति अगर करना चाहो चंद्र वदन पर राख मलो।
2: जी।
3: कर ना सको ये तो इसी क्षण अपने पथ पर चले चलो।
2: स्वामी जी आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ।
1: शरद चंद्र के बड़े भाई अधर चंद्र गुप्त ने बहुत पहले ही सन्यास ग्रहण किया था, इसलिए शरद चंद्र के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। स्वामी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने सुना कि ब्रिजेन बाबू नामक एक भद्र व्यक्ति निकट ही रहते हैं। जितना कुछ सुना उससे स्वामी जी को लगा कि वे जैसे उनके परिचित हों। अतः उनके घर जाकर उनसे मिले। देखते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और ब्रिजेन बाबू ने स्वामी जी से कुछ दिन अपने घर में रहने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद शरद बाबू के घर लौट कर जाएंगे, ये कहकर स्वामी जी तत्काल वहीं ठहर गए।
0: इस मकान में रहने के समय उनके आकर्षण से बंगाली टोला के लोग मानो वहां टूट पड़े। कुछ दिन पहले से इन लोगों में काफी विरोध और मन मुटाव चल रहा था। स्वामी जी के आगमन से वह समाप्त हो गया। समागत व्यक्तियों के साथ वे धर्म और स्वदेश से संबंधी काफी चर्चाएं करते थे। शरद बाबू और उनके मित्र निकट कृष्ण बाबू के घर भी वे अक्सर जाते थे। दोनों के साथ उनकी काफी घनिष्ठता हो गई थी। इन दोनों के आग्रह पर स्वामी जी इसके बाद कुछ दिन लोगों के घर पर रहने लगे और पहले की तरह ही आगंतुक व्यक्तियों के साथ धर्म चर्चा के दिन बिताने लगे। उनके कंठ संगीत से आकृष्ट होकर के अनेक गणमान्य और उच्च पदस्थ व्यक्ति नित्य उनकी बैठक में भाग लेते। संध्या का समय संगीत में ही कटता।

0: एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से पूछा,
1: महाराज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं?
2: देखो बच्चा, मेरा एक महान जीवन व्रत है, किंतु मैं अपनी अल्प क्षमता के कारण ये सोचकर उदास हूं कि इस व्रत का कैसे निर्वाह करूंगा। इस व्रत को पूरा करने का आदेश मुझे अपने गुरु से मिला है
1: जी।
2: ये व्रत है मातृभूमि का पुनरुद्धार करना। इस देश में आध्यात्मिकता का अत्यंत ह्रास हो गया है और सर्वत्र भूख ही भूख व्याप्त है। भारत को सचेतन और गतिशील होना होगा तथा उसे अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व विजय करनी होगी।
1: मैं आपके साथ इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा कहिए महाराज।
2: क्या तुम भिक्षा पात्र और कमंडलू लेकर इस महत् कार्य को करने के लिए तैयार हो?
1: जी।
2: क्या तुम घर घर जाकर भिक्षाटन कर सकते हो?
1: हाँ महाराज, आपका आदेश सराखों पर।
3: और परीक्षा देने के लिए हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कुलियों के घर से भिक्षा लेने निकल पड़े। शरद चंद्र के मन की दृढ़ता और साहस देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कुछ दिन इस गुप्त परिवार में रहने के बाद स्वामी जी ने हाथरस छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन शरद बाबू को बुलाकर उन्होंने कहा,
2: सन्यासी के लिए एक स्थान में अधिक रहना अनुचित है और विशेषता तुम लोगों के प्रति मैं एक आकर्षण का अनुभव कर रहा हूं, अतः मेरे लिए शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है।
1: स्वामी जी आप मुझे अपने सत्संग से वंचित मत करिए, अपना शिष्य बनाकर साथ चलिए।
2: क्या तुम सोचते हो कि मेरा शिष्य होने से ही तुम्हारी आध्यात्मिक पिपासा तृप्त होगी? किसी व्यक्ति के गुरु होने की योग्यता मुझ में है या नहीं, इसमें संदेह है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर कर्म किए जाओ, वे ही सब प्रकार के कल्याण करेंगे। मैंने अभी श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने का संकल्प किया है। तुम दुखी ना हो, प्रसन्न मन से मुझे विदा दो, मैं फिर से हाथरस लौटने का प्रयत्न करूंगा।
3: शरद चंद्र इस प्रकार की सांत्वना से संतुष्ट होने वाले ना थे। उन्होंने उत्तर दिया,
1: आप कुछ भी कुछ न कहें महाराज, आप जहां जाएंगे मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपको मुझे दीक्षा देनी ही होगी महाराज।
3: विवश हो स्वामी जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। इसके बाद शरद अपना कार्यभार दूसरे को सौंपकर स्वामी जी के साथ ऋषिकेश गए। उनका नया नाम स्वामी सदानंद रखा गया।
0: कल्पना में सन्यासी का जीवन जैसा प्रतीत हुआ था, वास्तव में सामने होकर के शरदचंद्र ने देखा कि यह उनकी अपेक्षा से भी कठिन है। गृह सुख में अभ्यस्त उनकी दृष्टि में यह सन्यासी जीवन कठोर साधन, अनिश्चितता और शारीरिक कष्टों का सम्मिलित रूप प्रतीत हुआ। वो तो मानो विविधताओं से भरा यह जीवन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। उन दिनों को याद करके शरदचंद्र ने कहा था,
1: एक बार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा करते समय भूख प्यास से अवसन्न हो मेरे मूर्छित हो जाने पर स्वामी जी ने सेवा कर निश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की थी। और एक बार भयावह तेज धार वाली और फिसलन भरे पत्थरों से व्याप्त पहाड़ी नदी को पार करते समय वे पथ प्रदर्शक की भांति मेरे घोड़े को पकड़े पकड़े ले गए थे। मेरे जीवन की रक्षा के लिए कितनी ही बार उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। मित्रों, मैं उनकी बात कैसे कहूं, केवल यही कह सकता हूं वे थे प्रेममय, प्रेम मूर्ति, प्रेम स्वरूप। मैं जब इतना दुर्बल हो गया था कि किसी तरह डगमगाते हुए चल पाता था, तब उन्होंने मेरे सामान, यहां तक कि जूते भी अपने कंधे पर वहन किए थे।
0: बाद में जब भयंकर रोग से पीड़ित शरदचंद्र ने एक बार स्वयं को अत्यंत असहाय समझकर स्वामी जी से पूछा था कि क्या वे उनको सदा के लिए छोड़कर के जाएंगे, तब स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक कहा था,
2: कैसे बेवकूफ हो, क्या तुझे याद नहीं मैंने तेरे जूते तक धोए हैं।
0: और एक बार भ्रमण करते करते उन लोगों ने एक जगह पर आकर के देखा कि मनुष्य की बहुत सारी हड्डियां और गेरवे वस्त्र के फटे टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े हैं। स्वामी जी ने उस ओर उंगली से निर्देशित करते हुए कहा,
2: देखो वहां किसी साधु को बाघ ने खाया है, तुझे डर लग रहा है क्या?
1: नहीं स्वामी जी, आपके साथ रहने पर कोई डर नहीं लगता।
0: नव दीक्षित शिष्य स्वामी सदानंद गुरुदेव के बताए हुए पथ पर कठोर साधना में लीन हो गए, पर शारीरिक परिश्रम में अभ्यस्त न होने के कारण वे नवीन सन्यासी कुछ ही दिनों के बाद अस्वस्थ हो गए। स्वामी जी बाध्य हो शिष्य के साथ फिर हाथरस लौट आए, पर यहाँ आकर स्वामी जी ने भी अस्वस्थ होकर के शैया ग्रहण कर ली। यहाँ के कुछ उत्साही नवयुवकों तथा गुप्त परिवार के प्रयत्नों एवं सेवा भाव से थोड़े ही समय में फिर से स्वस्थ होकर के स्वामी जी वराहनगर मठ लौट गए। बाद में कुछ दिनों में सदानंद भी स्वस्थ होकर के सन 1888 ईस्वी के नवंबर महीने में मठ में आ गए तथा अन्य सन्यासियों द्वारा उन्हें भी बड़े स्नेह के साथ रामकृष्ण संघ में सम्मिलित कर लिया गया।
3: इस बार स्वामी जी ने सन 1888 ईस्वी में वराह नगर मठ में पहुंचकर पूरा एक वर्ष गुरु भाइयों के साथ आनंद से व्यतीत किया। केवल बीच में एक बार 1889 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य लाभ एवं आत्मीय स्वजनों से मिलने के लिए वे शिमुलत्ता गए थे। हाथरस से लौटकर वे निश्चय ही अपने अनेक गुरु भाइयों को मठ में नहीं देख सके, कारण उस समय वे लोग तीर्थ भ्रमण या तपस्या में निरत थे, किंतु ग्रही भक्तगण अपने अपने घरों में थे। पहले की भांति इस बार भी स्वामी जी अवशिष्ट गुरु भाइयों के साथ ध्यान धारणा में डूब गए।
0: बिहार और उत्तर पश्चिम प्रदेशों में पैदल भ्रमण कर तथा तीर्थ स्थानों में उन्हें विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहारों एवं रीति रिवाजों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने देखा था धर्म के प्रति अनुराग की कमी नहीं है, पर सामाजिक जीवन में स्वाभाविक गतिशीलता नहीं है। यह समस्या केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोगों की ही नहीं वरन भारत के विशाल जन समुदाय की समस्या है। पूर्ववर्ती सुधारकों की तरह जातीय समस्याओं को कुछ इने गिने तथा कथित शिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से देखने की संकीर्णता उनमें नहीं थी। श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेशों का विश्लेषण कर वे अपने गुरु भाइयों से कहते,
2: दोष धर्म का नहीं है, वरन धर्म के नाम पर धर्म का व्यवसाय करने वाले गुरु पुरोहितों और पंडों ने ही समाज पर अधिपत्य फैलाकर समाज जीवन को पंगु बनाए रखा है। शत शत वर्षों के विधि निषेध के अंधानुकरण ने समाज में एकोर जैसे वंश और रक्त की श्रेष्ठता का मिथ्याभिमान सृष्ट किया है। उसी प्रकार दूसरी ओर उसने हीनता बोध, विभिन्न संप्रदायों तथा अनेकानेक शाखा प्रशाखाओं वाले कृत्रिम जाति विभाग को जन्म दिया है। यदि हम समग्र भारतवासियों को एक अखंड जाति में परिणित करना चाहते हैं तो हमें इन सब गहरे भिदे हुए संस्कारों के विरुद्ध खड़े होकर ये प्रचार करना होगा कि धर्म की साधना में तथा सामाजिक सुख सुविधा की प्राप्ति में प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है। ये ठीक है कि यह भावधारा लोगों को सहज ही ग्राह्य न होगी, काम उतना सरल नहीं है।
3: इस समय लगभग एक वर्ष स्वामी जी ने वराह नगर मठ तथा बाग बाजार कलकत्ते में बलराम बसु के मकान में व्यतीत किया। अधिकांश समय वे शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। अपने विद्वान गुरु भाइयों के साथ वेदांत और पाणिनी व्याकरण का अध्ययन करते थे। इसी समय काशी के प्रमदादास बाबू ने इन निर्धन सन्यासियों को वेदांत तथा अष्टाध्यायी के ग्रंथ दान दिए थे। इस बात का उल्लेख स्वामी जी ने अपने एक पत्र में कृतज्ञता के साथ किया है। 1888 ईस्वी फरवरी मास में स्वामी जी एक बार श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कमारपुकुर तथा श्री माता जी की जन्मभूमि जयराम बाटी गए थे और उसके बाद कुछ दिन शिमुलत्ता में रहकर जुलाई मास में कलकत्ता लौट आए थे।
0: इस समय स्वामी जी बड़े उत्साह के साथ उपनिषद और शंकर भाष्य का अध्ययन कर रहे थे और प्रत्येक समस्या व संदेह को मिटाने के लिए काशी में प्रमदा दास बाबू के पास पत्र लिख रहे थे। इस समय 4 जुलाई के एक पत्र में अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रमदा दास बाबू को लिखा,
2: ये बात ठीक है और कई बार मैंने अनुभव भी किया है कि नाना प्रकार के नए नए मतों को मस्तिष्क में धारण करने से समय समय पर कष्ट झेलना पड़ता है, परंतु अब की बार तो मुझे एक दूसरे ही प्रकार का रोग हुआ है। ईश्वर के मंगल हस्त में मेरा विश्वास अभी मौजूद है जो सदा अटल रहेगा। शास्त्र पर भी मेरा विश्वास है, परंतु भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैंने जीवन के गत 5-7 वर्ष लगातार कई प्रकार की विघ्न बाधाओं को देखा, परंतु पूर्ण रूप से स्वयं अब तक कुछ भी नहीं कर सका हूं, यही बड़ा कष्ट है।
0: उन्होंने एक दूसरे पत्र में लिखा,
2: विशेष रूप से कलकत्ते के पास रहकर तो कुछ भी होने का उपाय नहीं दिखता। मेरी मां और 2 भाई कलकत्ते में रहते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। मझला भाई कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है और तीसरा छोटा है। उनकी स्थिति पहले ही बहुत अच्छी थी, परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद से बहुत शोचनीय हो गई है। यहां तक कि कभी कभी उपवास करके ही दिन व्यतीत हो जाता है। इस पर भी संबंधियों ने उन्हें कमजोर समझकर पैतृक घर से निकाल बाहर कर दिया था। अंत में हाईकोर्ट से मकान का कुछ भाग मिला, पर हुआ ये कि उस मुकदमेबाजी में वे सब कुछ खो बैठे, और ऐसा तो प्रत्येक मुकदमे में होता ही है।
3: इन पत्रों में उनकी मनोदशा लक्षित होती है। उन दिनों में वे बहुत बेचैन रहा करते थे। उन्होंने प्रमदा बाबू को अपनी मनोवेदना जताई थी।
2: कलकत्ते के पास रहने से उनकी दुखद स्थिति देखने के कारण कभी कभी रजोगुण की प्रबलता से अहंकार के विकार रूप कार्यकारी वासना का उदय हो जाता है। उस समय मन के भीतर बड़ा घोर संग्राम होने लगता है। इसलिए तो मैंने लिखा है कि मानसिक स्थिति भयंकर है। अब मुकदमा भी समाप्त हो गया है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ दिन कलकत्ते में रहकर सब कुछ समाप्त कर इस शहर से हमेशा के लिए विदा ले सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हृदय महान ईश्वरी बल से बलवान हो और सभी प्रकार की माया मुझसे दूर हट जाए।
0: परंतु दिसंबर महीने के पहले स्वामी जी कलकत्ता छोड़ न सके। वे कलकत्ते से वैद्यनाथ गए। वहां कुछ दिन रह करके उनके हृदय में काशी दर्शन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हुई, परंतु विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। 30 दिसंबर सन 1889 को वे प्रयाग धाम से प्रमदा बाबू को लिखते हैं,
2: आपको एक पत्र में लिखा था कि 2-1 दिन में काशी जा रहा हूं, परंतु विधि के विधान का खंडन कौन कर सकता है। मुझे इस बात की सूचना मिली कि योगानंद नाम के मेरे एक गुरु भाई चित्रकूट ओंकारनाथ आदि का दर्शन कर यहां आकर माता के रोग से पीड़ित हो गए, अतएव उन्हीं की सेवा टहल करने के लिए मैं यहां आया हूं। अब मेरे गुरु भाई संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, परंतु मेरा मन काशी जाने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है।
0: हम देखते हैं कि स्वामी जी के अशांत मन को शांति नहीं मिली। वे कभी विश्वनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। क्या उन्हें वहां शांति मिली, ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
3: गायन का प्रारंभ एक स्वर रचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सबने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: मैं आई कम इन सर?
3: यस कम इन, फरमाइए।
2: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपनसेशन का सर।
3: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दे तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
4: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई है।
0: ओ, अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी,
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी?
0: मतलब वो
2: ना ना ना ना ना ना
0: गई?
2: सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं? नहीं सर वो।
1: हाँ
0: भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300।

0: साथ।
1: सोचकर उत्तर दीजिए, सोचकर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूं आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं?
0: कह दिया ना सर, सात वचन, फाइनल आंसर।
1: हाँ, वो कैसे? पैनल को समझाएंगे आप?
0: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को सात वचन देते हैं, तो फिर
1: हाँ
0: हिंदी में कितने वचन हुए? सात ही ना।
1: हा हा हा हा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे? हाँ,
0: अंधे कवि? अंधे कवि सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
1: हाँ, एक क्लू देता हूँ आपको।
0: हाँ
1: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
0: सर, याद आ गया,
1: हाँ,
0: तुलसीदास।
1: तुलसीदास। मगर वो कैसे?
0: सर तुलसीदास ही थे ना, जो
1: हाँ,
0: भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
1: ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
0: जी
1: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है? हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
0: सर, ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
1: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ,
0: जी
1: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
0: जी सर, गोविंदा।
1: गोविंदा?
0: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
1: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
0: सर मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे,
1: अरे
0: गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता। अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
1: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
0: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
1: हाँ,
0: सर मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या
0: जी
1: है?
0: जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
1: बताइए।
0: श्री देवी।
1: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
0: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
1: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
2: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
3: धन्यवाद जी। चतुर सेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
0: जी जी सर।
3: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
0: सर 2 × 2 = 4 सर 4 दिनों में।
3: थोड़ा सोच कर चतुर सेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
0: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
3: मगर कैसे समझाएंगे आप हमें?
0: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
3: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
0: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
3: वो कैसे?
0: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और 4 के 4 हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
3: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारिए आदमी आदमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
0: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
3: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
0: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
3: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
0: सर 50 किलोमीटर का।
3: मगर कैसे?
0: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ कम जरूर जा सकती है।
2: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी,
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
2: मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
0: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
2: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
0: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
2: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
0: बहन छायावती ने।
2: मगर वो कैसे?
0: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
2: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
0: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
2: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
0: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
2: अच्छा अब एक आखिरी सवाल।
0: जी,
2: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
0: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर 36 साल।
2: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
0: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18+18 मतलब 36 साल।
2: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
0: जी बेहतर सर।
2: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
3: जी सर।
2: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
3: सर हमारे पास एक आइडिया है।
2: वो क्या?
3: सुनिए सर।
2: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
3: सर
2: फिर बुलाइए बुलाइए बुलाइए बुलाइए। चतुर सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
0: जी सर।
2: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
0: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
2: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर ये टेस्ट का हिस्सा है।
1: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
2: बताइए बताइए,
1: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
2: अभी हमारे है
1: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
0: सर सर सर ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
2: बिल्कुल नहीं, भुंजी भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
0: सर।
2: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
2: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान। और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झपताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वे रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर न चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको? सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर, क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते, ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है।
0: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार हैं, एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं, आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप, अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सूझ रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
1: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
0: ओहो हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक काम करिए आप, रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
1: मगर वो तो नहीं है।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
0: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब हैं? ची ची ची ची ची। जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर आए।
1: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
0: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
1: काय सता रहे हैं पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
0: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
1: यही बात तो आपको समझनी है भैया। जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े खाने की फिक्र करता है।
0: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए, ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
1: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
0: तीरथ पर गया था, तीरथ पर गया था। जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि

0: लेकिन नाम ही ना लिखा जाए।
1: भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार।
0: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता।
1: अरे काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है। अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
0: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे। चलिए हटिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
1: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप।
0: चलिए चलिए, नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
1: ओ साहब, इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
0: अरे जाइए जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, च्यवनप्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फट फट फट।
1: फूटने को बोलता है, पेंशन नहीं देता तो ले।
0: अरे अरे मादा, अरे मादा, अरे
2: अरे बुड्ढा मादा, अरे अरे क्या लाठी से कमर तोड़ दी मेरी। अरे राम कोई है, अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
3: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर, वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
0: दरोगा जी देखिए, इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे। अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
1: अरे कोई गाली वाली नहीं दी है दरोगा साहब, हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था। कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है। तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है। किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो। जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
0: सुन रहे हैं दरोगा जी, आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
4: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तो मैं सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। आईपीसी की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
1: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, हैं? कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
4: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
1: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का, कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
0: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूँ कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
1: वाह वाह वाह वाह, सुना सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूँ। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में, इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना, इतना ही काफी है।
4: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
1: वही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है, ये देखिए आप। लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है। अंधेर गर्दी मचा रखी है, है?
4: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा, और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा। सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे, चलो थाने तुम दोनों, चलो।
0: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
1: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर, ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत। सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो। अब तो ऐसी ऐसे।
0: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों, जेल का मतलब जानता भी है तू?
1: नहीं जानता तो जान जाऊंगा। अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी, भारत सरकार की। गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे, और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ। बढ़िया है।
0: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई? आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
4: ओए, क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को? जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी, और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे, इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो कुछ बोलना है वही जाके बोलना।
0: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
1: अंकल जी, अरे वाह वाह अंकल जी। अरे वक्त, ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया। अरे वाट तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू। नहीं, अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में, दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है। ना आगे कोई रोने वाला है, ना पीछे।
0: हे राम, कहाँ फंस गया रे? हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए, हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
1: बहुत खूब बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था, और कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा। पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
0: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो एकदम, थूक दो, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दया राम जी में है ना,
2: मान गए, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
4: देखो भाई, ये थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी, अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
2: अरे नहीं दारोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
4: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए, तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी। दार
2: 107-16 ये तो बहुत ज्यादा है। अरे जरा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुंच गए डायरेक्ट।
4: अबे तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छांट कर लो, और ज्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा, पर SDM कोर्ट से जमानत करवाना।
2: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
4: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के ज्यादा पकाओ मत मुझे, सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेल वेल भी नहीं होती है, ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
1: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, थाने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
2: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अरे माफ कर दो।
3: तो श्रोताओं, ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन। आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने। भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जेमनी, आलोक चटर्जी और आदित्य शर्मा। सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। ध्वनांकन अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
5: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें, बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल 1 के सूक्त 187 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम पेश किया जाएगा 5:10 पर। 6 बजे का समय है कार्यक्रम पतन का राग कार्यक्रम का, वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर आधारित है। बाल सभा में जरूर सुनिए खेलों की परीक्षा के बारे में शाम 6:30 पर। 7 बजे कार्यक्रम सुनिए हमारी सेना हमारा गर्व, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के भाग 38 का प्रसारण। विशेष कार्यक्रम में सुनिए नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में 7:30 पर। 8 बजे सुनिए कार्यक्रम देश के संस्थान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के भाग 17 का प्रसारण। रमेश चंद्र दत्त की जयंती पर आधारित याद करो कुर्बानी कार्यक्रम सुनिए 8:30 पर। 9 बजे सुनिए रेडियो रिपोर्ट, जिसमें आप सुनेंगे पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में। और युग प्रवर्तक विवेकानंद 9:30 पर पेश किया जाएगा भाग 17। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। वेद पुराण आख्यान मीमांसा, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं और इन दर्शनों से रूबरू कराता है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 187 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अन्न, छंद है अनुष्टुप गर्भा उष्णिक, बृहती और गायत्री।
2: पितुम न स्तोषम महो धर्माणम तविषीम, यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्व मर्दयत। जिसके ओर से तीनों लोकों में यशस्वी इंद्रदेव ने वृत्र नामक असुर के अंग प्रत्यंगों को काट काट कर मारा, उन महान शक्तिशाली सबके पोषक और धारणकर्ता अन्नदेव की हम स्तुति करते हैं। स्वादो पितो मधो पितो वयम् त्वा ववृमहे अस्माकमविता भव। हे स्वादिष्ट पालक और माधुर्य युक्त रसों के पोषक अन्नदेव, हम आप में विद्यमान पोषक तत्व को धारण करते हैं, आप हमारे संरक्षक हैं। उपनः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भुरद्विषेण्यः सखा सुषेवो अद्वयाः। हे पालन कर्ता अन्नदेव, आप कल्याणकारी सुखप्रद विद्वेष रहित मित्र के समान हितैषी भली भांति सेवनीय और ईर्ष्या द्वेष से रहित हैं, आप मंगलकारी संरक्षण युक्त पोषक तत्वों से युक्त होकर हमारे समीप आए। तव त्ये पितो रसा रजांस्य नु विष्ठिताः दिवि वाता इव श्रिताः। हे परिपोषक अन्नदेव, जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपके वे विभिन्न रस संपूर्ण लोकों में विद्यमान है। तव त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो प्र स्वाद्याम्नो रसानाम तुविग्रीवा इवे रते। हे परिपोषक अन्नदेव, आपके उपासक कृषक आपसे दान वृत्ति को ग्रहण करते हैं। हे माधुर्य युक्त पोषक देव, आपके साधक आपकी पोषण शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके रसों का सेवन करने वाले पुष्टिक ग्रीवा युक्त होकर सर्वत्र विचरण करते हैं। त्वे पितो महानाम देवानाम मनोहितम आकारी चारु केतुना तवा हिम वसावधीत। हे सर्वपालक अन्नदेव, महान देवों का मन भी आपके लिए लालायित रहता है। इंद्रदेव ने आपकी श्रेष्ठ पोषक शक्ति एवं संरक्षक शक्ति से ही अहि असुर का वध करके महान कार्य किया। यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाम अत्राचिन्नो मधो पितोरम भक्षाय गम्याः। हे सर्वपालक अन्नदेव, जब जलों से परिपूर्ण बादलों का शुभ जल आपके समीप पहुंचता है, तब आप हमारे पोषण के लिए इस विश्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यदमा पोषधीनाम परिम शमा रिषा महे वातापे पीव इद्भव। जब जलों और औषधि तत्वों से युक्त सभी प्रकार के कल्याणकारी अन्न को हम ग्रहण करते हैं, तब हे शरीर, आप इस पोषक अन्न से स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट हों। यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे वातापे पीव इद्भव। हे सुखस्वरूप अन्नदेव, जब अन्न में जौ गेहूं आदि पदार्थों के साथ गाय के दूध घृतादि पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, तब हमारा शरीर स्वस्थ सुदृढ़ हो। करम्भ ओषधे भव पीवो वृक्क उदारथि वातापे पीव इद्भव। हे परिपक्व अन्नदेव, पौष्टिक आरोग्यप्रद तथा इंद्रिय सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, पके हुए अन्नों के सेवन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े। तम त्वा वयम् पितो वचोभिर् गावो न हव्या सुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यम त्वा सधमादम। हे पालनकर्ता अन्नदेव, आप देव शक्तियों और मनुष्यों दोनों को ही समान रूप से आनंदित करने वाले हैं, प्रशंसित स्तोत्रों से आपको उसी प्रकार अभिशुत करते हैं जैसे गोपाल गौओं से दूध दुहते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 187 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत।
1: एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

यूं तो हर देश का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन भारत की धरती से इतिहास कुछ अलग तरह से गुजरा है। इसके अतीत में अनगिनत कहानियां हैं, वीरों की, जय पराजय की। सदियों से कितने घात प्रतिघात सहे भारत ने, कितने ही आक्रमण हुए भारत पर, अनगिनत युद्धों की साक्षी रही भारत की धरती। इस देश पर शासन तो बहुतों ने किया, लेकिन भारत और भारतीयता को कोई जीत नहीं सका। देश की अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे वीर दुर्गादास राठौर, जिनकी वीरता, समर्पण और त्याग की गाथा राजस्थान के जन मन में आज भी बसी हुई है, जो आज भी लोककंठ से सहज प्रवाहित होती है कि डबक डबक ढोल बाजे, दे दे ठौर नगारा की, जे आसे घर दुर्गो न हो तो सुन्नत होती सारा की। अर्थात ये ढोल, ये उत्सव, ये स्वाभिमान, ये आनंद नहीं होता, हमारी अस्मिता न बचती अगर दुर्गादास राठौर नहीं होते। दुर्गादास राठौर एक वीर राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को पराजित कर अपनी रणनीति, वीरता, त्याग और समर्पण के बल पर मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखा। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की तरह उन्होंने भी मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। औरंगजेब को परास्त करने के लिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि उसका बेटा मोहम्मद अकबर तक उनके पाले में आ गया था। आज भी दुर्गादास राठौर की वीरता और ईमानदारी की गाथा पूरे राजस्थान में गाई जाती है। दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त सन 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण राठौर जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनकी मां का नाम नेत कमर बाई था। उनके माता पिता के बीच कुछ मतभेद रहे, जिसके कारण दुर्गादास के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। इस तरह दुर्गादास राठौर का पालन पोषण लुनावा नामक गांव में हुआ। खेती किसानी के बीच यहीं बालक दुर्गादास धीरे धीरे बड़े हो रहे थे।

दुर्गादास राठौर अपनी माँ की छत्र छाया में बड़े हुए। सूर्यवंशी राठौर राजपूत कुल का रक्त उनके भीतर बह रहा था। वो बचपन से ही अत्यंत वीर और साहसी थे। स्वाभिमान और देशभक्ति के संस्कार माँ ने दिए। एक दिन पशुपालन का कार्य करने वाले एक रायका ने उनके खेत में अपने ऊंट छोड़ दिए। ऊंटों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। जब दुर्गादास राठौर ने अपना खेत देखा तो उन्होंने रायका से इस बात की शिकायत की, लेकिन रायका ने अपनी गलती नहीं मानी और बातचीत बढ़ गई। इस बातचीत के बीच ही रायका जोधपुर दरबार और राजा को भला बुरा कहने लगा। जोधपुर दरबार के लिए अपशब्द सुनकर दुर्गादास राठौर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी कटार निकाली और उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। ये पूरा मामला राजदरबार में पहुंचा। दुर्गादास राठौर ने अपनी सफाई में कहा कि बात फसल की बर्बादी की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जोधपुर दरबार के विषय में जो बातें कही वो मैं सहन नहीं कर पाया, मुझे अत्यंत क्रोध आया और मैंने उसे समाप्त कर दिया। पूरी दलील सुनने के बाद महाराजा जसवंत सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्गादास राठौर को पास बुलाया, उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम अत्यंत साहसी और वीर बालक हो, तुम्हारी देशभक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि ये लड़का विशेष है, ये मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और भविष्य में ऐसा ही हुआ भी। महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौर को अपनी सेना में रख लिया। राजा हर पल उन्हें अपने साथ रखते। दुर्गादास राठौर उनके विश्वास पात्र लोगों में शामिल हो गए। युद्ध अभियान में भी वो राजा के साथ जाया करते। ये वो समय था जब औरंगजेब की नजर मारवाड़ पर थी, इसलिए मुगल सेना से लगातार संघर्ष जारी था। दुर्गादास राठौर पूरी निष्ठा और वीरता के साथ महाराजा जसवंत सिंह के साथ थे। लगातार कई युद्ध और संघर्ष के बाद अंततः औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच संधि हुई। तय हुआ कि अगर जोधपुर पर कोई आक्रमण हुआ तो मुगल सेना साथ देगी और मुगलों के दुश्मन के विरुद्ध महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देंगे। औरंगजेब ने पहले दक्षिण में युद्ध के लिए महाराजा जसवंत सिंह का सहयोग लिया और फिर पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें काबुल भेजा। इस संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया, लेकिन मरते हुए राजा की चिंता मारवाड़ को लेकर ही थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी संतान गद्दी पर नहीं बैठी तो मारवाड़ पर औरंगजेब अपना अधिकार कर लेगा, और औरंगजेब के शासन का अर्थ है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का समाप्त हो जाना। ऐसे समय में दुर्गादास राठौर ने महाराजा जसवंत सिंह को वचन दिया कि उनकी संतान को वो मारवाड़ का शासक अवश्य बनाएंगे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्गादास राठौर के भीतर जी उठा एक संकल्प और मारवाड़ के रक्षक के रूप में उनकी यात्रा आरंभ हुई। एक यात्रा जिसमें पल प्रतिपल सुलग रहे थे अनगिनत युद्ध और लगातार संघर्ष।

महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनकी गर्भवती रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र की मृत्यु बीमारी से हो गई, लेकिन दूसरा पुत्र अजित सिंह जीवित रहा। औरंगजेब ने उसका लालन पालन अपनी देखरेख में अपने ही महल में करवाना चाहा, लेकिन वीर दुर्गादास राठौर औरंगजेब की मंशा को भली भांति समझते थे। उन्होंने अजित सिंह और रानियों को दिल्ली से छुड़ाने का फैसला किया। मुगलों के साथ उनका संघर्ष हुआ और अंततः वो युवराज अजित सिंह और उनकी मां को मारवाड़ अबु सिरोही के पास पहाड़ियों में ले आए। यहीं अजित सिंह पले बढ़े। मारवाड़ का भविष्य दुर्गादास राठौर के हाथों में था और महाराजा जसवंत सिंह को दिया वचन उनके हृदय में। वो लगातार चौकस रहते, छापामार शैली में युद्ध करते। उद्देश्य केवल एक कि किसी भी तरह युवराज बड़े हों और उन्हें राजगद्दी सौंपी जा सके। औरंगजेब ने वीर दुर्गादास राठौर को अनेक प्रलोभन दिए और कहा कि बस अजित सिंह को लेकर दिल्ली आ जाओ। लेकिन दुर्गादास राठौर की निष्ठा कभी डिगी नहीं। मुगलों के साथ लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों ने मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे समय में सिसोदिया वंश के साथ मिलकर दुर्गादास राठौर ने छापामार रणनीति के साथ मुगलों से लोहा लिया। औरंगजेब ने जब मारवाड़ की लड़ाई के लिए अपने पुत्र मोहम्मद अकबर को भेजा, तब कूटनीतिक चाल चलते हुए दुर्गादास राठौर ने उसे पिता के विरुद्ध अपने गुट में शामिल कर लिया। ये संघर्ष लगभग 30 साल तक चला। दुर्गादास राठौर किसी अनमोल रत्न की तरह युवराज अजित सिंह की रक्षा करते रहे। वो 24 घंटे सजग चौकन्ने रहते। कहा जाता है कि वो तब तक घोड़े की पीठ से नहीं उतरे जब तक कि अजित सिंह जोधपुर के राजा नहीं बन गए। आज भी राजस्थान के लोककंठ से दुर्गादास राठौर की महिमा कुछ यूं सुनाई देती है कि 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैल अणी स्यू सैंक तो बाटी दुर्गादास। अर्थात दुर्गादास हर पल हर घड़ी घोड़े पर ही सवार रहा करते थे, यहां तक कि घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही अपने भाले की नोक पर बाटी की लोई लगाकर वो उसे आग में पकाते और उसी से पेट भर लेते। लेकिन अजित सिंह की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने देते। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब महाराजा अजित सिंह ने अपनी सेना लेकर जोधपुर को घेरा और अंततः अपने पुरखों की राजधानी को जीत लिया। इस तरह वीर दुर्गादास राठौर की तपस्या सफल हुई। उन्होंने अपना दिया हुआ वचन निभाया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने जोधपुर राज्य से बाहर ही बिताए। इन वर्षों में वो सदरी, उदयपुर, रामपुरा, भानपुरा आदि स्थानों पर रहे। 22 नवंबर सन 1718 को उज्जैन में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेल भी एक परीक्षा है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और हाजिर हूं लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप सप्ताह भर इंतजार करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम है बाल सभा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मुझे जवाब कैसे देंगे क्योंकि मेरी आवाज़ तो रेडियो के भीतर से आ रही है। तो बस आपने करना इतना है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए और अगर मन है तो खिलखिलाइए क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उदास हो क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस वक्त आपके वो टर्म 1, टर्म 2 वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना छोटे बच्चों के, वो शुरू हो जाते हैं। और जब वो शुरू हो जाते हैं तो किसी का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है तो बड़ा खुश होता है और किसी का रिज़ल्ट थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है कई बार, तो उसका मुंह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आंखें झुक जाती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है और सोचता है अब क्या करूं। तो उन बच्चों से भी मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए, प्यार की समझाइश समझिए, वो यही है कि हर जगह परीक्षा होती है, कई बार हम सफल होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सफलता हमें मिलती ही रहे, क्योंकि अगर हम कभी हारे नहीं ना तो हम जीत के स्वाद को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने आपकी पढ़ाई वाली परीक्षा की बात कर ली, लेकिन बच्चों जानते हैं खेलों में भी एक परीक्षा होती है। हाँ, खेल में भी परीक्षाएं होती हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा तो क्या खेल का भी रिजल्ट आता है? डेफिनेटली आता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप पोडियम पे पहुंचता है और पीछे से राष्ट्रगान बजता है तो वो खेल का रिजल्ट ही तो है। कॉमनवेल्थ गेम में जब अस्मिता डे ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता ना और बच्चों पीछे से राष्ट्रगान बजा तो बस मैं अपनी ही जगह पे खड़ी हो गई और उसकी आंखों में तो वो चमक दिखाई दे ही रही थी लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों जब कोई खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचता है ना, जैसे मैंने बताया कि टॉप पोडियम तक जब आप पहुँचते हो ना तो उसके पीछे अथक मेहनत होती है, बहुत कड़ा परिश्रम होता है, बहुत अनुशासन होता है और बहुत सारे लोगों का त्याग होता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बच्चों अकेला नहीं बनता। मैं अस्मिता डे की भी आपको कहानी सुनाऊंगी और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी नीरज चोपड़ा की भी, साइना नेहवाल की भी, पीवी संधु की भी और कहानी आपको सुनाएंगे महेंद्र सिंह धोनी की भी। कोई भी खिलाड़ी जिन्हें आप आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट से घिरा हुआ देख रहे हैं ना बच्चों, उन्होंने बहुत फांके लगाए होते हैं। फांके सिर्फ खाली पेट भोजन वाले फांके नहीं होते, स्ट्रगल के भी फांके होते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, कितनी तपस्या की होती है उन खिलाड़ियों ने, आपको वो सब कुछ नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है एक खिलाड़ी जिसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी कैमरा लाइट्स उस पर पड़ रही हैं और आपको दिखती हैं लोगों की तालियाँ, उनके इंटरव्यूज़। लेकिन सच में बच्चों यकीन मानिए, जब भी आप किसी ऐसे सफल खिलाड़ी को देखते हैं तो उसकी कहानी पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि उसकी ज़िंदगी दरअसल कैसी थी, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक होती हैं वो पढ़ते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सब कुछ कल्पनाओं के देश में ले जाती हैं कि रानियों का देश, परियों की कहानी, है ना। अच्छा लगता है ये सब कुछ, लेकिन कभी कभी अपने असली जीवन से जुड़ी हुई कहानियां भी हमको जाननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक होती हैं। अब आपको मैं अपनी बात पर ले आती हूँ कि इतनी सारी बातें मैं आपसे कर क्यों रही हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि खेलों में भी परीक्षा होती है। आज हमारा बाल सभा का विषय यही है और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ। तो चलिए बताइए तो जरा कि आप में से कितने बच्चों को दौड़ना अच्छा लगता है, कितनों को बैडमिंटन, कितनों को कबड्डी, हॉकी या बॉक्सिंग पसंद है। जरा मन ही मन में अपना हाथ उठा लीजिए। अच्छा, एक और सवाल, कभी आपने सोचा है कि जो खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर खेलते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई एक दिन में भारत की टीम में आ जाता है? नहीं, उनकी कहानी भी आपकी और हमारी तरह शुरू होती है एक छोटे से स्कूल से, किसी गांव के मैदान से, किसी पार्क से या फिर घर के आंगन से। मान लीजिए आपके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई, आप पहले स्थान पर आ गए, फिर आपको ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता है, फिर आप वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आप कहां पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर पहुंचते हैं। अब आप जिले में भी जीत जाते हैं, जैसे ग्वालियर, जैसे शिवपुरी, जैसे भोपाल, ऐसे आप अलग अलग जगह पे जीत जाते हैं। फिर होता है संभाग स्तरीय, है ना। संभाग मतलब उस संभाग में जितने जिले आते हैं आपको वहां पे प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाना होता है। अब क्या हुआ, अब जब आप संभाग में भी प्रथम आ गए, फिर आप आते हैं स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अब जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आ जाते हैं तब आपकी जो मेहनत है वो और भी दुगनी, तिगुनी, चौगुनी हो जाती है। आपका अनुशासन और महत्व रखने लगता है, क्योंकि जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, जैसे मैं मान लूं कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोई खेल प्रतियोगिता है और टीटी नगर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां वो हो रही है, तो कोई खिलाड़ी ग्वालियर से आया होगा, कोई खिलाड़ी भोपाल से, कोई खिलाड़ी आया होगा किसी दूसरे संभाग से। आपस में खूब अच्छी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से जो खिलाड़ी प्रथम आएगा ना, वो स्टेट का यानी कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये आपके आंगन से शुरू हुई कहानी कहां तक आप पहुंची है? और फिर आप जाओगे नेशनल टीम में खेलने। नेशनल टीम में कैसे खेलोगे? आप जाओगे, अपनी स्टेट का रिप्रेजेंट करोगे और नेशनल जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें आप भाग लोगे। तो अब मान लीजिए कि वो राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता कहाँ पर है, मान लीजिए कि भोपाल में ही है, तो भोपाल में कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आएंगे? कोई खिलाड़ी आंध्र प्रदेश से होगा, कोई खिलाड़ी महाराष्ट्र से होगा, कोई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से होगा। भारत के जितने राज्य होंगे वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और जो खिलाड़ी अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ना बच्चों, उसके साथ बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे मैनेजर, ये सब कुछ आए होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। और फिर आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आप खाने में क्या खा रहे हैं, ये प्रदेश स्तर के खेलों से जुड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बन जाता है। बच्चों, हर चीज का आपकी ख्याल रखा जाता है। फिर आता है वो दिन जब आप अपने स्टेट के लिए खेलते हुए जीत जाते हैं। अब क्या होगा, उत्सुकता लग रही है? फिर बच्चों, आप मान लीजिए कि नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आ जाते हो, क्या होगा? अब क्या होगा? अब वो होगा जिसका हमें इंतजार था। अब वो होगा बच्चों कि आप भारत के लिए खेलने के लायक माने जाने लगते हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पे कैंप आयोजित होता है, जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स एकेडमी होती हैं जहां आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अब देश के जो सबसे बेहतर कोच हैं वो आपको तैयार करते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए। और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कोई एक नहीं होती, दो नहीं होती, बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे एशियाई गेम्स, और कुछ होती हैं सिर्फ आपके खेल की, जैसे एथलेटिक्स मीट, जूडो मीट। फिर इधर आ जाइए आप, तैराकी का कोई कॉम्पिटिशन होगा इंटरनेशनल, तो उसमें अगर आप भारत के लिए खेलेंगे। तो ऐसे हर स्तर पर आपको खुद को साबित करना पड़ता है। बच्चों, पूरे भारत से हजारों बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेलों का जब आयोजन होता है तो आप पहनते हैं भारत देश की जर्सी। भारतीय खिलाड़ी के सीने पर तिरंगा लगा होता है और फिर वो दुनिया के सामने उतरते हैं। ये सोचने मात्र से ना आपको कितना गर्व महसूस होने लगता है। तो सोचिए कि जिस दिन आप ये कर रहे होंगे बच्चों, वो कितने गौरव के पल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? अगर कोई खिलाड़ी केवल एक प्रतियोगिता वाले दिन ही अभ्यास करे तो क्या वो जीत पाएगा क्या बच्चों? नहीं, जीत उसको मिलती है जो रोज अभ्यास कर रहे हैं, जो समय का पालन कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, दोबारा दोबारा और दोबारा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खेलों में हर बार आपको जीत मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, खेल भी एक परीक्षा है। तो जो हार गए हैं वो फिर खड़े हो रहे हैं। और याद रखिए, मेडल गले में भले ही एक दिन पड़ता हो बेटा, लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, पसीना और धैर्य छिपा होता है। तो आज जब आप ये बाल सभा सुन लीजिएगा तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर अपने माता पिता और खेल शिक्षक से बात कीजिएगा कि आपके सपनों की शुरुआत कैसे की जाए। क्या वो दिन आज का ही है? मतलब जब ये बाल सभा आप सुन रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही है कि आज मुझे दीदी ने बता दिया है कि मैं कैसे एक एक एक एक स्तर पार करता जाऊंगा और एक दिन मैं भी भारत की जर्सी पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, तो फिर आज से ही सपने देखना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ सपने देखना शुरू मत कीजिएगा बच्चों, उसके पीछे कड़ी मेहनत भी कीजिएगा। को मैं कुछ उन लोगों की बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपने सिर्फ मेडल पहनते हुए देखा है, लेकिन उसके पीछे उनका बहुत कड़ा अभ्यास है। बच्चों, नीरज चोपड़ा, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब जब नीरज चोपड़ा मैदान में आते हैं तो लाखों करोड़ों भारतीय टकटकी बांधे बस उनके भाले को और उनकी स्पीड को देखते रहते हैं कि कैसे भी वो जो आखिरी लाइन है उसको क्रॉस कर जाए नीरज चोपड़ा का भाला और देश को मेडल मिल जाए, है ना? तो जब ये हम उम्मीद बांधते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं और अपने गांव में उन्होंने एक दिन स्टेडियम में भाला फेंकते कुछ खिलाड़ियों को देखा। सिर्फ देखा था, लेकिन वो स्टेडियम गए क्यों थे ये पता है आपको? मैंने एक बार नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे कि मैं बहुत मोटा हुआ करता था और घर वाले कहते थे कि थोड़ा फिट हो जाओ, और जब फिट होने की शुरुआत करने के लिए मैं स्टेडियम के मैदान में सिर्फ दौड़ने गया हुआ था तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी फेंक सकता हूँ। देखिए सपने की शुरुआत कैसे होती है। जो लोग भाला फेंक रहे थे उनको देख कर नीरज चोपड़ा ने ये सोचा कि अब से मैं भी जेवलिन थ्रो करूँगा, लेकिन वो लोग आज नीरज चोपड़ा जी के लिए तालियां बजाते हैं। पता आपको, जो सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने गए थे वो आज भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, वो आज भारत के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल ला रहे हैं, एशियाई खेलों में मेडल ला रहे हैं और एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में तो ना जाने कितने कितने मेडल ला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। मीराबाई चानू मणिपुर के एक छोटे से गाँव की बेटी हैं, जंगल से लकड़ियाँ उठा उठा कर घर लाती थी। सुना तो मैंने ये भी है कि वो अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा वज़न की लकड़ियाँ अपने घर लाती थी, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे। बच्चों, कई बार हार लगी, कई बार चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन वही मीराबाई चानू चैम्पियन बनती हैं। भारत की जर्सी फिर से छा जाती है, फिर से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई गेमों में भारत के लिए पदक जीतकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाती हैं मीराबाई चानू। पीवी संधू, नाम तो सुना होगा। सबसे बड़ी ताकत उनकी जानते हैं क्या है? उनकी ताकत है उनका अनुशासन। रोज सुबह जल्दी उठकर कई कई किलोमीटर दूर अपनी एकेडमी जाकर अभ्यास करती हैं। जब बहुत सारे बच्चे छुट्टियां मना रहे होते थे ना, तब पीवी सिंधु कोर्ट पर पसीना बहा रही होती थी, और वर्षों की इसी मेहनत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी। हाँ, कितनी बड़ी बातें हैं, कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन उसके पीछे उनकी माँ का भी हाथ है, उनके पिता का भी हाथ है। ये लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों। कई बार हमें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर बसना पड़ता है। अब मान लीजिए वो सब जूनियर खेल रही हैं और सब जूनियर सबसे छोटी उम्र के बच्चों के प्रतियोगिताएं होती हैं और सब जूनियर में बच्चा अकेला तो जा नहीं सकता, तो कई बार पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है। तो वो तो खेल रही हैं लेकिन उनके साथ उनकी माँ अपना घर छोड़कर वहाँ रह रही हैं। ये त्याग है कि नहीं? तो अकेले कोई खिलाड़ी नहीं जीतता, खिलाड़ी के कोच, खिलाड़ी के पेरेंट्स, खिलाड़ी के वो दोस्त जो उनको उनकी हार के वक्त भी प्रेरित कर रहे थे अच्छा खेलने के लिए, उन सब लोगों के सपने एक साथ जीतते हैं बच्चों। निखत जरीन, आपको पता है कई लोगों ने कहा कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन निखत जरीन ने ये साबित किया कि वो बॉक्सिंग न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि जीत भी सकती हैं। और आज निखत जरीन हजारों हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। जो भी बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, निखत जरीन उस हर शख्स की प्रेरणा है। अब आप सोचिए कि कितना अजीबोगरीब है सब कुछ, कि एक लड़की घर में बैठी है और उससे सब लोग कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अब तुम पढ़ाई करो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर देख लेना हम तुम्हें अच्छे स्कूल से निकाल लेंगे। और वो बच्चा बार बार कह रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में भले ही ज़्यादा मन नहीं लग रहा है लेकिन मेरा मन कहीं और लग रहा है। हर बच्चा अलग होता है। इसी बहाने एक और बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अकेले बाल सभा नहीं सुनते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी तो बाल सभा सुनते हैं। तो फिर उन लोगों से मुझे यही कहना है कि एक तो अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से मत करिए, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये आपकी परीक्षा है कि आप अपने बच्चे की कला को समझें, पहचानें और उसको उस लाइन चुनने में मदद करें, उसके ऊपर अपने निर्णयों को ना थोपें। तो देखो बच्चों, आपके बहाने मैं आपके मम्मी पापा से भी थोड़ी थोड़ी अपने मन की बातें ना कर ही लेती हूँ, ये राज की बात है। अब ऐसा होगा कि बच्चे हंस रहे होंगे कि ओहो दीदी ने तो आज हमारे बहाने मम्मी पापा को भी समझा दिया। तो सही बात है, थोड़ी थोड़ी समझाइश दोनों तरफ हो जानी चाहिए। वैसे एक बात और है बच्चों, कि आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? आप रिपोर्ट कार्ड लेने जब पहुंचते हो उसमें जब आपके अच्छे अंक दिखाई देते हैं तो आपको लगता है वाह क्या बात है। पापा आपके गर्व से कहते हैं शाबाश, दादा दादी नाना नानी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी जब 10th का रिजल्ट आया था तो आप यकीन नहीं कीजिए, मेरे को एक बच्ची बता रही थी कि उसके मम्मी पापा को ना ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या रहा आपकी बिटिया का, जिन्हें उससे कोई मतलब भी नहीं था, जो उसकी तैयारी में भी शामिल नहीं थे। तो कई लोगों को ये भी होता है कि पता करें कैसा पढ़ी थी ये बच्ची, है ना। तो कई बार हमको क्या होता है बच्चों, कि कई बार हमको ये भी देखना होता है कि किस तरह हमारे साथ जो खड़े हैं उसके अलावा हमारे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, है ना। तो सबके लिए हमें क्या करना है, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ी हार के लिए भी तैयारी, क्योंकि एक बार में सब नहीं जीतते हैं। ठीक है, अब आगे की बात बताएं आपको। ज्ञानेश्वरी यादव, ये क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव और सामान्य परिवार से आने वाली ज्ञानेश्वरी अपने पिता से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करती थी। उनके पिता के पास ट्रेनिंग और डाइट का खर्च उठाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया, कुछ लोगों से उधार भी लिया। लेकिन अब आप देखिए, अब आपको पैरा एथलेटिक्स की बात बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शर्मिला धनकड़ बहुत गंभीर और अकल्पनीय संघर्षों को झेलने के बावजूद पैरा शॉटपुट एथलीट शर्मिला धनकड़ ने हार नहीं मानी और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू हुआ अस्मिता डे का सफर। अस्मिता डे, जिन्होंने पहली बार जूडो में 48 kg में बच्चों गोल्ड मेडल जीता है। त्रिपुरा के एक बहुत छोटे से शहर से आती हैं अस्मिता डे। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत और जिद की कहानी है अस्मिता डे की कहानी। मैंने कहा था ना, कई बार हमें काल्पनिक कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए, हमें कई बार वो कहानियां पढ़नी और सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए जो रियल लाइफ से आती हैं, मतलब हमारे देश के असली हीरो की कहानी। हाँ, उनके पिता साइकिल की मरम्मत का काम करते थे और वो देश के लिए जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक ले आई हैं। फाइनल में उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी को हराया। अस्मिता ने खेल की शुरुआत जूडो से नहीं की थी, ये और एक खास बात है। उन्होंने 800 मीटर की दौड़ से अपने खेलों की शुरुआत की थी। ठीक, मतलब उनका इवेंट जूडो नहीं था, उनका इवेंट क्या था, 800 मीटर रेस। लेकिन 2015 में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने प्रशिक्षकों की सलाह पर जूडो को अपनाया था, क्योंकि जूडो में लोगों को लगता है सिर्फ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे जूडोकास सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी फुर्ती से भी जीतते हैं, कई बार अपनी टेक्निक से भी जीतते हैं, क्योंकि खेलों में टेक्निक्स का बहुत महत्व है कि आप तकनीकी रूप से कितने सजग हैं, कितनी जल्दी आप ये पहचान लेते हैं कि आपके सामने वाले, मतलब आपके अपोनेंट की कमज़ोरी क्या है और उसी पर आप वार करते हैं, तब आप जीतते हैं। बहुत रणनीति होती है बच्चों खेलों के पीछे। आपको एक कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आपके अपोनेंट यानी कि आपके दूसरी तरफ जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है उसके ढेर वीडियो देखने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है कि ये किस तरह से खेलता है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये खेलों की परीक्षा ऐसे होती है, और जब आप देख लेते हैं कि ये खिलाड़ी ऐसे खेलता है, ये इसकी ताकत है, ये इसकी कमजोरी है, तो फिर आप अपनी खेल की रणनीति उस हिसाब से बनाते हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको एक और राज की बात बताऊं, जो भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र हैं उसमें भी अस्मिता डे ने प्रशिक्षण लिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भोपाल से भी इस गोल्डन गर्ल का नाता है। खास बात यह है कि ये जब लगातार मेहनत कर रही थी, इनके पिता की स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, लेकिन इनकी माँ ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो मेरी बेटी इस वक्त खेलने जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब परिवार पे संकट हो और उस वक्त भी हम बच्चे की जीत को चुने, तो ये बेटा बहुत कठिन निर्णय होता है। इसके लिए हमें अपने माता पिता को ढेरों धन्यवाद देना चाहिए, है ना। और आज जब वो मेडल जीत गई हैं, सब लोग उनके तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, तब वो गर्व से कह पा रही हैं कि ये मेडल मैं अपने कोच और अपने पिता को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा लगता है ना ये सब सुन के। तो खेलों की परीक्षा किस तरह से होती है ये आप समझ गए हैं। आपको ये भी बता दूँ कि इन्हीं खेलों की बदौलत उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी भी मिली।

0: कुछ संकल्प हम बाल सभा के अंत में जरूर लेते हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हमने बात की है कि खेलों में भी परीक्षा होती है, तब पहला संकल्प हम सब मिलकर यही लेंगे कि हमारी जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। पढ़ाई के अलावा किसी ना किसी खेल को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आज का तीसरा संकल्प ये है कि जीवन में अनुशासन के महत्व को समझेंगे। और आज का आखिरी संकल्प ये है कि हम जो भी काम हमें पसंद है उसमें एकाग्रता, परिश्रम और फोकस, इन तीनों को एकाकार करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें आप खोल सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, संकल्प भी हम सब ले चुके हैं, इतनी सारी कहानियां भी आपको सुना चुके हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की और उनके जीवन की। तो अब आप अपना ध्यान रखिए और आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उन्हें एक ठंडा ग्लास पानी जरूर दीजिए, ठीक है? इसी छोटी सी सीख के बाद मुझे भी बाय बाय कहिए, है ना? तो चलूं, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ। और अब आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का विषय था खेलों की भी परीक्षाएं होती हैं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीदी गौड़, ध्वनि संपादन अमित पुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। भारतीय सेना की आन बान और शान पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत है, हमारी सेना हमारा गर्व।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, गर्व है हमें अपने आप पर कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां के युवा स्वेच्छा से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और देश सेवा के लिए स्वेच्छा से हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। वरना विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ उस देश के हर युवा पर सेना में जाने की अनिवार्यताएं बनाई गई हैं, चाहे वो इसके लिए उत्सुक हो या ना हो। श्रोताओं, आजादी के बाद से ही हमारे राष्ट्र ने कई तरह की आपदाओं और युद्धों का सामना किया है और जब जब भी राष्ट्र की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न आया है, हमारी भारत की युवा शक्ति ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के रूप में इन कठिनाइयों से बड़े ही साहस के साथ मुकाबला किया है। आज का भारत युवाओं का भारत है, क्योंकि हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा ही तो हैं और युवा पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। यदि देश की युवा पीढ़ी अनुशासित, स्वस्थ और साहसी है तो देश के विकास को और देश की सुदृढ़ता को कभी ठेस नहीं पहुंच सकती। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही कई कदम उठाए गए ताकि देश का युवा नेतृत्वशाली, सशक्त और साहसी नागरिक बन सके और NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की गठन इसी सोच का परिणाम है। तो आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे NCC पर और हमेशा की तरह हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। नेशनल कैडेट कोर
2: जी,
3: जब भी आप ये शब्द का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो एक बहुत ही यंग स्मार्ट बॉय और गर्ल ड्रेस्ड अप इन अ यूनिफॉर्म मूविंग अराउंड इन अ डिसिप्लिन मैनर वो दिखता है।
2: बिल्कुल सर,
3: आरडी परेड जब होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है, आप उनको देखिए उस समय जो उनके चेहरे पे
2: जोश आता है जी, वो देखते ही बनता है जी।
3: और जिस तरह से उनकी मेहनत झलकती है, मतलब वो ऑलमोस्ट रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हो।
2: बिल्कुल सर,
3: सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऐसी फोर्स है ये जो कि युवाओं को डिसिप्लिन करने में, उनमें एक जोश भरने में जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा
2: जी,
3: है।
2: बिल्कुल सर,
3: इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटियर फोर्स है। आपने बिल्कुल सही कहा था
2: जी,
3: कि हमारे यहाँ जो है ये युवा जो है ये इतने तत्पर रहते हैं कि हमें कभी फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती
2: जी। बिल्कुल,
3: और वही हमने NCVC में भी देखा है कि वहाँ पे भी हर विंग में जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, हर जगह जो है बच्चे जो है बिल्कुल पूरे जोश से तैयार रहते हैं हमें NCC का हिस्सा बनना है। जो ट्रेन्ड मोटिवेटेड डिसिप्लिन फोर्स है, जो इसको बनाया किस लिए गया था, क्योंकि एक सोच आई थी कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो देश को अगर मुसीबत पड़ती है, मतलब किसी तरह से हमारे पास इमरजेंसी में जो है हमारी देश की आर्म फोर्सेस को मदद कर सके। दूसरा, इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर सके। तीसरा, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि जो देश के युवा हैं, मतलब उनके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना हो
2: जी,
3: उनके अंदर अनुशासन हो
2: जी,
3: उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, उनको ये पता चले कि हमारा देश क्या है, कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, वो दूसरे स्टेट्स के लोगों के बारे में जान पाए
2: जी,
3: एक कम्युनल हारमोनी वो हो लोगों के बीच में जो है। तो इन सब एम्स के लिए जो है इस पोस्ट का गठन किया गया था। ये जो है 48 में पार्लियामेंट एक्ट के बाद एनसीसी का मतलब एक जन्म हुआ और इसमें जो है सबसे पहले एनसीसी सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था।
2: अच्छा।
3: जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि आजकल जिसको हम एनसीसी डायरेक्टरेट बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जब सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था उसको कर्नल जीजी बीवूर थे।
2: अच्छा।
3: जो बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे जनरल नागू, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर बना, तो अब देखिए मार्च में मतलब जैसे हेडक्वार्टर बना था उन्होंने 31 मार्च को चार्ज एज्यूम किया था और जुलाई में जो है इसकी जो योजना है ये योजना स्कूलों में इंप्लीमेंट हुई थी।
2: अच्छा।
3: गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे जब समर वेकेशन के बाद हुए, तो उस साल 1948 में ही एनसीसी वाज एबल टू एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट 96 यूनिट्स
2: पहले ही साल में
3: जिसमें कि उन्होंने 83 इन्फेंट्री यूनिट्स थी, आर्मड की एक यूनिट थी, फिर आरटी इंजीनियर सिग्नल्स की यूनिट्स थी। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि वो बेस बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है।
2: अच्छा,
3: एक तरह से
2: बिल्कुल
3: फर्स्ट ईयर में ही तकरीबन 20,000 कैडेट्स जो है इसमें शामिल हो गए थे।
2: क्या बात है।
3: उस समय जो है ये सिर्फ मेल्स के लिए था जब शुरुआत में
2: जी।
3: लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 49 जो है जुलाई 1949 में ये गर्ल्स डिवीजन भी आ गई थी।
2: अच्छा, अगले ही वर्ष
3: अगले साल जो आ गई थी।
2: क्या बात है।
3: फिर एनसीसी का विस्तार हुआ तो 1950 में जो है एयरविंग भी इसमें जुड़ गया, तो उसमें एक स्क्वाड्रन मुंबई में रेज हुई थी, एक कोलकाता में रेज हुई थी, एंड फिर जो नेवी है नेवल विंग जो है वो 1952 में हो गया था। तो इस तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई 48 से 52 के बीच में तीनों विंग्स में आ गई थी। और जैसे हमने बोला फर्स्ट ईयर से शुरू करके आज आप ये देखिए कि इट इज द फोर्स consisting of almost 13 lakh plus people.
2: क्या बात है।
3: वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन
2: जी। सर बहुत गर्व की बात है,
3: बहुत गर्व की बात है। और इसका जो एम था वो यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके में कोर वैल्यूज डेवलप हो, पेट्रोटिज्म हो मतलब देशभक्ति की भावना हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, इनिशिएटिव होता है, करेज होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल रॉबस्टनेस होती है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है ना, तो सेल्फलेस सर्विस है। तो ये सब जो है मतलब एम को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया।
2: कुल मिलाकर आप मतलब एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने।
3: बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा, ताकि अगर आपने उनको ट्रेनिंग दी है वो आर्म फोर्सेस में ना भी जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपना भी काम करें, तो एक उनके अंदर एक भावना हो
2: जी,
3: और दूसरा है वो डिसिप्लिन रहे, है ना, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज होती है अगर आपने एक बार डेवलप कर दी तो फिर
2: आजीवन है सर,
3: आजीवन है
2: जी।
3: और ये देखा भी गया है कि जो एनसीसी में होते हैं उनका एक अलग पर्सनालिटी होती है
2: जी। बिल्कुल सर, उनका व्यक्तित्व अलग ही झलकता है,
3: अलग ही झलकता है
2: जी।
3: हम इसके बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करते हैं
2: जी। बिल्कुल,
3: अगर आप देखें तो दिल्ली में जो है हमारा एनसीसी हेडक्वार्टर है, जिसको कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में होते हैं वो उसको कमांड करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टरेट्स होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, एमपी छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट है, तो ऐसे करके 17 डायरेक्टरेट्स हैं।
2: अच्छा।
3: और इनको जो है मेजरल या ब्रिगेडियर कमांड कर रहे होते हैं, और जो ये जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनके नीचे फिर ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
2: अच्छा।
3: तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिगेडियर या कर्नल जो है कमांड करते हैं, और फिर उसके नीचे जो बटालियंस होती हैं जो कि कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह एसोसिएटेड होती हैं उनके अंडर में स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह आते हैं। तो ये जो बटालियंस होती हैं ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स में आती हैं, और फिर बटालियंस के अंडर में कंपनीज आती हैं।
2: अच्छा।
3: ठीक है। तो जैसे अगर एक एरिया में अगर वहाँ पे एक बटालियन है तो उसके नीचे जितने स्कूल कॉलेजेस वगैरह होंगे वो आते हैं, उनके फिर वो कंपनीज में मतलब डिवाइडेड होते हैं। तो बटालियंस जो होती है उसको अगेन कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करते हैं, एंड जो उसके नीचे जो कंपनीज स्टाफ होता है एनसीसी का, उसमें रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के।
2: अच्छा,
3: तीनों विंग के होते हैं जो कि जनरली कमांड में होते हैं, और ग्रुप हेडक्वार्टर में जैसे एडम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके होते हैं
2: जी।
3: फिर इसके अलावा इसमें एक और एंट्री होती है, ANOs होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बोलते हैं, जो कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एनसीसी में, जो वॉलंटियर करते हैं
2: जी।
3: तो उनको कॉलेज का जो होती है एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको कंट्रोल करते हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है विमेन्स के लिए जो है ग्वालियर में है स्कूल का, और कॉलेज एनसीसी कॉलेज है, और कामटी में जो है OTS कामटी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो है परमानेंट स्टाफ होता है उसमें ये आर्म फोर्सेस का होता है।
2: अच्छा।
3: फिर सिविलियंस होते हैं जो कि मतलब सिविल स्टाफ होते हैं जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है वो रहता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिक्स होती है।
2: तो सर क्या जो संगठन है एनसीसी वो भी क्या रक्षा विभाग के अंतर्गत?
3: हाँ जी, ये रक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, मिलिट्री डिफेंस में ही आता है। और जैसे हमने बताया कि इट्स टोटल तरह से मिक्स हो रहता है, तो इसमें जो स्टेट है स्टेट लेवल से भी एम्प्लॉइज होते हैं, देन उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस के होते हैं, सिविलियंस होते हैं, सब मिलके होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एनसीसी में वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है एनसीसी में। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इवॉल्व होते होते आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीसी का वो बहुत ही सशक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि सारे के सारे अपग्रेडेशन होते रहते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं, और इसी से जो हमारे एम है जो एनसीसी के उसको पूरा करने में सक्षम है आज तक।
2: तो सर अब एक प्रश्न ये आता है कि स्कूल लेवल से यदि कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होना चाहिए या वो किस स्टैंडर्ड से एनसीसी ज्वाइन कर सकता है?
3: गुड, देखिए एनसीसी के दो विंग्स होते हैं, एक होता है सीनियर डिवीजन होता है, एक होता है जूनियर डिवीजन
2: जी।
3: जूनियर डिवीजन से हम बात करते हैं, जूनियर डिवीजन 9th 10th 11th 12th में होता है।
2: अच्छा,
3: तो उस उम्र के बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं। और सीनियर डिवीजन कॉलेज में होता है। तो ये जो होते हैं बच्चे जो हैं उसके हिसाब से जो क्लास में होते हैं जिस क्लास में वो उसमें वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो उनको वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस रहती है कि उस कॉलेज का एसोसिएशन जिस के साथ है, आर्मी के साथ है, नेवी के साथ है, एयरफोर्स के साथ है, तो अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू ज्वाइन।
2: तो सर ये तो हो गया कि हमने एनसीसी ज्वाइन कर ली, तो अब ट्रेनिंग किस तरह से होती है उनकी?
3: एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है
2: जी,
3: उसको अगर हम बोलें जैसे एक तो होता है वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
2: अच्छा,
3: आपने देखा होगा कॉलेज में स्कूल्स में हफ्ते में एक दिन जो है दो दिन जो है परेड्स होती हैं।
2: हाँ जी।
3: और उनके लेक्चर्स होते हैं, है ना, तो वो उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: उसके बाद जो होता है कैंप्स होते हैं
2: जी।
3: कैंप्स का एनसीसी में बहुत महत्व
2: होता है। बहुत महत्व है सर।
3: निसंदेह मैं भी एनसीसी में अंडर ऑफिसर रहा हूँ और आप भी एनसीसी स्टूडेंट रही हैं, तो हम दोनों समझते हैं कि कैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इट हैज गॉट अ स्पेशल प्लेस, और जितना आपको वहाँ सीखने मिलता है उतना शायद कहीं नहीं मिलता। तो इनके जो कैंप्स होते हैं उसमें एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो कि साल में एक बार जो हेड होता है, एंड उसमें जो सेम लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, टीम स्पिरिट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ड्रिल्स होती हैं, फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग एंड इवन सोशल एक्टिविटीज। आपको याद होगा
2: हम
3: लोग सोशल एक्टिविटीज करते थे। मुझे कैंप्स की एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैं भी था तब भी, कि ये कैंप्स में सबसे बड़ी मदद जो मिलती है जो हमारा सोशल डिफरेंस होता है, सोशल इनइक्वालिटी जो हो रहती है कि आप कहाँ से आए हो, किस घर से हो, आप कितने अमीर हो, क्या है, मतलब वो सब खत्म हो जाता है।
2: सब खत्म हो जाता है सर, सब एक हो जाते हैं,
3: सब एक हो जाते हैं, और आप सबके साथ मिलके रहना सीखते हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल सर।
3: आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं केयरिंग की, शेयरिंग की, डिसिप्लिन की, क्वालिटी की, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मुझे अभी भी मतलब याद है कि जो मेरे एनसीसी का पहला कैंप था उसमें मतलब ये सब चीजें जब देखने को मिली थी, आप समाज के बहुत सारे अलग अलग तबके के लोगों से मिलते हैं। गांव के बच्चे वहां पे आते थे, तो किसी के फादर किसान थे जो, और मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी कभी नहीं हुई थी जितनी कि उस कैंप में जो 10-12 दिन का जो हमने कैंप किया था ट्रेनिंग कैंप उस दौरान हुई, और उस समय जो दोस्ती भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब वो रही। इसी तरह से ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं ये ग्रुप और डायरेक्टरेट लेवल पे होते हैं स्टेट में। फिर उसके बाद दूसरे कैंप्स होते हैं जैसे सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं,
4: अच्छा,
3: जो कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेवल पे प्लान किए जाते हैं। इसमें लीडरशिप कैंप्स होते हैं, ट्रैकिंग्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग वाले कैंप्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं। इवन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मेजर मेजर अपॉर्चुनिटी व्हिच दे गेट टू इंटरेक्ट विद द फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स, वो रहता है। लीडरशिप कैंप्स रहते हैं, देन एक एसएसबी ट्रेनिंग कैंप रहता है।
4: अच्छा,
3: यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा एसएसबी ट्रेनिंग कैंप का।
4: हाँ जी बिल्कुल सर।
3: ये जो कैंप होता है इसमें आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कैसे फेस करते हैं,
4: अच्छा,
3: उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे रहता है, उसके बारे में पूरा आपको बताया जाता है। और आई थिंक ये ट्रेनिंग कैंप्स जो थे, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ था।
4: अच्छा।
3: इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा था।
4: क्या बात है सर।
3: और मैं आज भी एनसीसी को धन्यवाद देता हूँ कि उस ट्रेनिंग कैंप के कारण ही जो है, उसके बाद मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था, आर्म फोर्सेस के लिए, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था।
4: क्या बात है
3: जी। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एनसीसी
4: सर
3: दैट हैड सेंड मी अक्रॉस फॉर दिस ट्रेनिंग कैंप, एसएसबी ट्रेनिंग कैंप। इट वाज इन ओटीएस कामटी में हुआ था। इट वाज अ वंडरफुल थिंग एंड आई बिलीव टिल डेट इट इज कंटिन्यूइंग। तो ऐसे और भी मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक सर्विस ओरिएंटेड कैंप्स भी होते हैं जो अलग अलग आर्मी नेवी एयरफोर्स भी कराती है। एंड सबसे जो बड़ा कैंप होता है उसको रिपब्लिक डे कैंप बोलते हैं,
4: आरडीसी।
3: मतलब उसका नाम सुनते ही हर एनसीसी के कैडेट के मतलब जो
4: है का सपना होता है सर उस कैंप में सेलेक्ट होने का,
3: उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि आरडी का करना है।
4: जी बिल्कुल सर।
3: 1 जनवरी से 29 जनवरी को तक जो है हर साल ये होता है। एंड इट इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईयर।
4: बिल्कुल सर।
3: और उसमें सिलेक्शन कितना टफ होता है, आपको कितना प्रूव करना पड़ता है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कंसिडर्ड एट नेशनल लेवल इज कि इट इज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जो कल्मिनेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब
4: करते हैं। जी बिल्कुल सर।
3: एंड उसमें जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बैनर दिया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर अ स्टेट टू गेट। ड्रिल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना मतलब बहुत बड़ा होता है। और कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जब हमने वहाँ पे देखे हैं, तो इसमें ओनली सिलेक्टेड कैडेट्स ओनली
4: पूरे राष्ट्र से सेलेक्ट होके आते हैं सर।
3: बिल्कुल, पूरे के पूरे स्टेट्स के जो है बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। और क्या माहौल होता है, कितना मतलब सीखने को मिलता है। इसमें एक और एक एम अचीव होता है हमारा कि हम जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए।
4: जी बिल्कुल।
3: एनसीसी का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आप जो है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सके। और इस मकसद में ये जो कैंप्स है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
4: बिल्कुल।
3: इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कैंप एनसीसी कराती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कि अगेन जो नेशनल इंटीग्रेशन कल्चर एंड कम्युनल हार्मोनी के बारे में नेशनल लेवल पे होता है, अलग अलग स्टेट से जो है

0: साथ एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जब कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है तो क्या उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं या कोई स्कॉलरशिप भी होती है क्या?
1: बिल्कुल होती है
0: जी,
1: अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेनिंग की और ये सब तो है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उनको इंसेंटिव मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलता है एंड प्राइमरली इन आर्म फोर्सेस।
0: जी,
1: अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं सीनियर डिवीजन के आर्म फोर्सेस में, अगर आप अफसर बनने के लिए जाते हैं, जैसे अगर आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो होता है तो उसका रिटन एग्जाम आपका वेव ऑफ हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं।
0: हाँ, यानी आपको लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं,
1: आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा जो है इंसेंटिव है, मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई इंसेंटिव हो
0: जी,
1: सकता
0: बिल्कुल
1: है
0: सर।
1: एंड बच्चे जो रिक्रूटमेंट पे जाते हैं
0: जी,
1: तो उनको वहाँ पे 5-10% बोनस मार्क्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसका रिक्रूटमेंट है, कौन से डायरेक्टर करा रही है, इन्फेंट्री है, मतलब अलग अलग वो रहता है, तो उसके हिसाब से 5-10% बोनस मार्क्स देते हैं। देन अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे, वो लोग बोनस मार्क्स देते हैं जो है प्रेफरेंस देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं, पुलिस फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन रिजर्वेशन फॉर वुमेन आल्सो देयर, ठीक है, महिलाओं के लिए भी जो है सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है
0: जी।
1: और ये जो बच्चे होते हैं जो एनसीसी क्वालिफाइड होते हैं, अगर ये आगे चल के एनसीसी में ही किसी अपॉइंटमेंट में काम करना चाहते हैं, लाइक वो एएनओ बनना चाहते हैं या परमानेंट स्टाफ में जो विमेन आना चाहते हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलता है। एंड एक इनकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होती है।
0: अच्छा,
1: अगर किसी कैडेट को किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई फैटल इंजरी होती है तो भी को जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारे स्टेट लेवल पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं एनसीसी के, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इंसेंटिव्स तो बहुत ज्यादा हैं इसमें, हम नटशेल में बता रहे हैं और ये टाइम टू टाइम इनके बारे में और आते रहते हैं
0: जी। सर, हम कहीं भी अप्लाई करते हैं और यदि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो इंटरव्यूअर है उसका देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंटरव्यूअर का देखने का नजरिया बदल जाता है, आपकी खुद के एक कॉन्फिडेंस में फर्क आता है,
0: आपको
1: बिल्कुल पर्सनैलिटी फर्क आता है, आप कैसे अंदर जाते हैं, वॉक करते हैं, वो बहुत मायने रखता है और बहुत फर्क आता है। और पता नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम एनसीसी में ओटीएस कमिटी में से, जैसे मैंने बताया एडवांस लीडरशिप कोर्स कर रहे थे, तो हम तीन दोस्त बने थे, तीन लोग, एक उसमें से नॉर्थ के थे, एक साउथ के और एक मैं सेंट्रल भोपाल से था। एंड आज तक हम तीनों दोस्त हैं।
0: वो समय ही सर ऐसा रहता है, कैंप का समय तो कभी भूला नहीं जा सकता,
1: मतलब आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है
0: जी।
1: और अभी अभी रिसेंटली ही, मतलब मेरे, हम तीनों से एक जो दोस्त है उसके बेटे की शादी थी तो हम सब वहाँ फिर से एकत्रित हुए थे, और आज भी जब मिले थे तब भी हम एनसीसी को याद कर रहे थे, वो कैंप को याद कर रहे थे
0: जी।
1: एक दूसरे से वही बात हो रही थी, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ व्हिच आई हैड स्पेंड इन एनसीसी एज अ कैडेट। एंड आई से कि दिस इज वन organization which is doing an extremely wonderful job in training, in orienting, in disciplining the young youth.
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि एनसीसी युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना जगाकर बड़ा ही मौलिक बदलाव लेकर आता है। कठोर प्रशिक्षण विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क और साथ ही निर्णय लेने की कुशलता सिखाता है, जो आगे उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नियमित व्यायाम, खेल और ड्रिल, उनमें शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, जबकि तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं उन्हें समाज और देश के प्रति जिम्मेदार होना सिखाती हैं। श्रोताओं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति उन्हें जीवन की चुनौतियों से निडरता से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की ताकत देती है। एनसीसी उन्हें एक बेहतर नागरिक और एक सक्षम इंसान बनने में मदद करता है। तो फिर प्रेरित करिए अपने नौनिहालों को और अपने युवाओं को कि वे एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आज की कड़ी का यहीं समापन करते हैं। सर, आपने एनसीसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद पूर्वा जी, धन्यवाद श्रोताओं, जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना रही अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगले कार्यक्रम की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। घर, घर।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार, नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के आप पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं, वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडीदीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए सिद्ध भी हो गया कि ये 5,000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5,000 साल पुराने हैं या 4,000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे, और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के समय मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूँगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है, कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चरी राजवंश था। इस कल्चरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है, कि इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था। लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियां बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग कल्चरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय, ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कौल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कौल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएँ थी, सब ने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और इन प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है, हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा।
2: मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा, और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे, हाथ वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है काल प्रलय घन घोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिशा त्रिशित है शेष देन, दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गट गट घटित घटित घट घट अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो एकारणो तो एकारणो के निवृत्त मेरे में निष्ठ चेतना चल स्थिर में गंज लीन स्तेज लीन है परसनाथ थिर चेर स्थिर में जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत उदय पर जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत काल प्रलय घन घोर गहन है दिग दिगंत तक घोर गहन लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिशा त्रिशित है शेष देन, दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गट गट घटित घटित घट घट अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो रहो न तब भी रहो न तब भी रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा, हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा, शुभम वरेण्य सदा सर्वदा नर्मदाति पुण्य नर्मदा। हर निनाद शम शम निनाद शंभू निनाद जलधार सर्वदा, शिव स्थापन हृदय हृदय हर हर हर हर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो नर्मदा, काल नहीं बाधा प्रवाह में मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा।
3: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य, विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: उद्योग, व्यापार ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और भारत देश औद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रमुख संस्थानों पर आधारित है हमारा कार्यक्रम देश के संस्थान। तो सुनिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्धपोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
0: हाँ बेटा।
1: कितनी सारी छुट्टियां हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
0: हाँ बिल्कुल दी है
1: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
0: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
1: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
0: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्धपोत, गश्तीपोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्तीपोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
1: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो, तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
1: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
0: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
1: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी जुआरी जो सदियों से बह रही है।
1: जुआरी नदी?
0: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
1: अच्छा।
0: जाने कितनी नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
1: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड और पास ही आपकी जुआरी नदी।
0: हाँ बेटा, ये जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
1: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
0: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
1: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
0: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
1: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
1: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
0: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
1: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
0: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
1: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
0: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
1: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
0: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
1: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जुआरी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
1: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
0: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
1: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
0: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
1: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
0: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
1: ठीक है,
0: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
1: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
0: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
0: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
0: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
1: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है, यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यहीं किया जाता है।
1: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
1: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक, और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
0: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
1: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
0: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियाँ भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
1: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
0: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
1: दिमाग में?
0: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
1: सही कहा दादाजी।
0: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है, और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
1: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
0: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है, यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है,
1: और यहीं पर CAD काम आता है।
0: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्री आयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
1: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
1: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
0: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
1: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
0: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती हैं। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
1: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
0: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
1: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
0: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है, यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
1: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
0: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
2: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
0: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है, और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
2: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
2: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
0: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है, बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
2: और जीएसएल भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
0: हाँ बिटिया, इसीलिए जीएसएल केवल जहाज नहीं बना रहा, बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
2: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
0: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगे कम परावर्तित हो। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
2: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है, लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
2: दादू,

0: आजकल कई आधुनिक युद्ध पोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
1: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
0: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है।
0: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
1: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
1: सो तो है दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
1: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
0: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
1: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना, फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
1: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
0: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
1: दादू, जीएसएल खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
0: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
1: तो क्या ये युद्धपोतों से छोटे होते हैं?
0: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
1: दादू, मैंने पढ़ा था कि जीएसएल स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
0: हाँ सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्युमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
1: दादू, आपने कहा था कि जीएसएल की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
0: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
1: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
1: दादू, क्या जीएसएल में अनुसंधान भी होता है?
0: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
1: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
0: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहाँ हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
1: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि जीएसएल अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
0: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
0: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
1: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
0: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
1: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
0: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और GSL ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
1: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
0: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे, GSL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
1: और इसमें होता क्या है?
0: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है कहाँ जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
1: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
0: हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
1: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
0: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
1: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
0: हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
1: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
1: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
0: हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
1: सो तो है।
0: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
1: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिपलिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
0: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिपलिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
1: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
0: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
1: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
0: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
1: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
0: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
1: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
0: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
1: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
0: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई है। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
1: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
0: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
1: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
0: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
0: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे, ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा, और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
1: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
0: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
1: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
0: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो, चलो।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम याद करो कुर्बानी लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र भारती। आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में रमेश चंद्र दत्त की।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
1: श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त योग्य प्रशासक, देशभक्त और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी गिनती बांग्ला के विख्यात साहित्यकारों में होती है। 19वीं शताब्दी में कमिश्नर के उच्च पद पर पहुंचने वाले वो एकमात्र भारतीय थे। उनके प्रशासन और साहित्य दोनों में ही हमें उनकी देशभक्ति देखने को मिलती है। उनके महत्व को ठीक ढंग से आंकने के लिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 1857 के गदर के बाद जिन कर्मठ महापुरुषों ने अंग्रेजी शासन की अभारतीय नीति से उत्पन्न कठिन परिस्थिति में भारत को एक राष्ट्र बनाने का व्रत लिया और मरते दम तक उसे निभाया भी, उनमें रमेश चंद्र दत्त की गिनती सदा अग्रणी रहेगी। इस संबंध में उनका अधिक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में भारतीयों की अभिरुचि फिर से जगाई थी और विदेशियों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा की थी। रमेश चंद्र ने इस बात की भरसक कोशिश की थी कि भारतवासी अपने देश की कला और साहित्य का आदर करना सीखें। उनका विश्वास था कि जो देश अपने प्राचीन गौरव का आदर करना नहीं जानता, उसकी उन्नति ना तो वर्तमान में होती है और ना ही भविष्य में संभव होती है। जब भारतवासियों में अपनी पुरानी उन्नति और गौरव का मान होगा और भूतकाल में उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की उनसे बचने की वो कोशिश करेंगे, तभी ये भारत स्वतंत्र हो पाएगा। श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त के बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और जो केंद्रित है आज रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता के एक धनी सुशिक्षित और साहित्य प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता ईशान चंद्र दत्त डिप्टी कलेक्टर थे। वो डिप्टी कलेक्टरी के सिलसिले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अनेक राज्यों में घूमते रहते थे। इस तरह बालक रमेश चंद्र को कई जिलों की अच्छी जानकारी हो गई। जब रमेश चंद्र की आयु लगभग 11 वर्ष की हुई तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और 2 साल बाद 1861 में सरकारी काम के सिलसिले में दौरे पर जाते हुए नदी में नौका डूबने से पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद 3 साल तक चाचा शशि चंद्र दत्त की देखरेख में ईशान चंद्र के अनाथ बच्चों का पालन पोषण हुआ। उनके चाचा की साहित्य में बहुत अच्छी रुचि थी। जब रमेश चंद्र 4 साल के हुए तभी कलकत्ता की एक पाठशाला में उनका दाखिला करा दिया गया। इस पाठशाला में पहले ताड़ के पत्रों पर फिर केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता था। इस पाठशाला से निकलने पर वो एक बंगला स्कूल में नाम लिखाने चले गए। वहां कुछ समय तक पढ़ने के बाद हायर स्कूल में दाखिल हो गए। इसी स्कूल से उन्होंने 1864 में एंट्रेंस की परीक्षा पास कर ली और 2 साल के लिए 12 रुपए मासिक का वजीफा पा लिया उन्होंने। 2 साल बाद एफए की परीक्षा में जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनमें रमेश चंद्र दत्त का 2रा नंबर था। उन्हें 2 साल तक 32 रुपए मासिक का वजीफा मिलता रहा। 1868 में वो बीए की परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद वो चाचा से पूछे बिना ही विलायत में आईसीएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए चले गए और 1870 में उन्होंने इस परीक्षा में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा ही दिया। इस परीक्षा में बैठे तो थे लगभग 325 विद्यार्थी पर उनमें से केवल 50 लोग ही चुने गए और उन 50 विद्यार्थियों में रमेश चंद्र का नंबर 3रा था। जी हाँ, उनके साथ आईसीएस की परीक्षा देने वाले 3 और भारतीय सज्जन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिहारी लाल गुप्त और श्रीपद बाबाजी ठाकुर। ये 4 भारतीय विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए चुने गए। इनके पहले सिर्फ 1 भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भारत की सिविल सर्विस में प्रवेश कर पाए थे। श्रोताओं, कैसी थी आगे की विद्यार्थी जीवन की यात्रा रमेश चंद्र दत्त की, जानेंगे इस देशभक्ति गीत को सुनने के बाद।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो आज केंद्रित है रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त इंग्लैंड के विद्यार्थी काल में ग्लैडस्टन और डिजरेली के भाषण सुनने अक्सर जाते थे। उनका परिचय उस समय के प्रसिद्ध नेताओं जॉन ब्राइट और हेनरी फॉसेट से भी हो गया। इंग्लैंड के जिन साहित्यकारों से उनकी भेंट हुई उनमें जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डिकेंस के नाम उल्लेखनीय हैं। जनवरी 1864 में रमेश चंद्र का विवाह मतंगिनी मोहनी बोस के साथ हो गया। विवाह के बाद 45 वर्ष तक उन्होंने आनंद पूर्वक जीवन बिताया। रमेश चंद्र के 6 बच्चे हुए, 5 लड़कियां और 1 बेटा। उनकी 6 संतानें और उनकी पत्नी 1909 तक साथ रहे। 1871 में रमेश चंद्र दत्त असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर पहली बार नियुक्त हुए और 11 साल तक इसी पद पर विभिन्न परगनों में काम करते रहे। दक्षिण शहबाजपुर गंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक टापू है। 1876 में इस टापू में भीषण तूफान और बाढ़ आने के कारण एक ही रात में 40,000 जाने चली गईं। वहां 20 फुट से भी अधिक पानी भर गया। सरकारी इमारतें नष्ट हो गई, सारा शासन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी भी इस प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हो गए, शेष जान बचाकर भाग गए। दुर्घटना के बाद और बाढ़ के बाद टापू में हैजा फैल गया, जिसके कारण 20,000 आदमी उसके शिकार हो गए। बीमारी को रोकने के लिए भी दत्त महाशय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो घर जाते और घर वालों का हाल सुनकर उनका समुचित प्रबंध करते थे। आखिर कुछ महीनों के बाद इस रोग का प्रकोप शांत हुआ और उनकी बदली किसी दूसरे परगने में कर दी गई। 1873 से 1882 तक वो कई जिलों में जिलाधीश रहे। फिर 1883 में उनकी नियुक्ति स्थानापन्न कमिश्नर के पद पर हो गई और इसके बाद 1895 में वो बंगाल की विधानसभा के सरकारी सदस्य मनोनीत हो गए। कह सकते हैं कि 26 साल तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। जिस समय उन्होंने आईसीएस में प्रवेश किया उस समय देश के शासन में ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, क्योंकि देश के अंग्रेज शासकों की यह धारणा थी कि ऊंचे पदों की जिम्मेदारी भारतीय नहीं उठा सकते। लेकिन दत्त महाशय ने अपनी योग्यता से ये सिद्ध कर दिया कि जहां अंग्रेज अधिकारी जिले की शासन की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सके, वहां उसी जिम्मेदारी को भारतीय अधिकारियों ने पूर्ण योग्यता से निभाया है। फिर भी भारत के शासन में अंग्रेजों का इतना अधिक हाथ था कि दत्त महाशय जैसा प्रतिभाशाली भारतीय भी स्थानापन्न कमिश्नर के पद पर 4 वर्ष तक ही रह पाया था। रमेश चंद्र की योग्यता से भारत के अंग्रेजों ने अपनी अभारतीय नीति को बदलने का फैसला किया, लेकिन ये परिवर्तन इतने अधिक समय बाद हुआ कि अंग्रेजों की निष्पक्षता पर से भारतीयों का विश्वास उठ गया था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रमेश चंद्र दत्त ने सरकारी नौकरी निराशा के कारण छोड़ दी। सरकारी नौकरी तो उनकी दृष्टि में गौण थी। प्रौढ़ होने के बाद भी उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत भूमि की सेवा करना। सरकारी नौकरी का मोह तो उन्हें कभी रहा भी नहीं। सिस्टर निवेदिता का कहना था कि उनका लक्ष्य भारत को ऊंचा उठाना था। यश कमाने की लालसा उन्हें छू भी नहीं पाई थी। वो तो उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अपने देश के लिए बड़ी बड़ी बातों का स्वप्न देखा था और उन स्वप्नों को सार्थक बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। रमेश चंद्र दत्त की लेखनी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले ये देशभक्ति गीत।

सन 1897 से 1904 तक रमेश दत्त ने अपनी वाणी और लेखनी से इंग्लैंड स्थित अंग्रेजों को भारत के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता समझाने की पूरी कोशिश की थी। उनके इस आंदोलन से इंग्लैंड वालों को भारतीयों की राजनीतिक मांगों पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ा था। लेकिन इस आंदोलन में दत्त महाशय को जिस निराशा का सामना करना पड़ा, उसकी झलक उनके पत्रों में हमें देखने मिलती है। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने ठीक कहा था कि दत्त महाशय की पीढ़ी वालों के भाग्य में तो असफलता ही लिखी है, बाद में उन लोगों की बारी आएगी जो सफल होंगे। इंग्लैंड में रमेश चंद्र के आंदोलन को देखकर कृतज्ञ भारतवासियों ने 1899 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इस पद से उनका जो संभाषण हुआ, उसकी सभी दलों ने प्रशंसा की। उनके संयमित और ठोस तर्कों से विरोधियों का विरोध भी फीका पड़ गया। बात 1904 की है। भूतपूर्व बड़ौदा रियासत के अधिपति सयाजी राव गायकवाड़ के अनुरोध पर रमेश चंद्र दत्त ने राज्य में माल मंत्री के पद पर काम करना स्वीकार कर लिया। इस पद पर उन्होंने 3 साल तक काम किया। राज्य और जमींदारों के कर भार से गरीब किसानों को मुक्त कराने का काम उन्होंने उसी समय किया जब वो अंग्रेज शासित भारत में सरकारी मुलाजिम थे। उनके इस पद पर आने के बाद सभी लोग एकटक इस बात को देख रहे थे कि अंग्रेज शासित भारत में सरकारी नौकरी के आरंभ से ही जिन सुधारों के लिए वो लड़ते आए हैं, अब कार्य कर रहे हैं कि नहीं। पर दत्त महाशय भी अपनी धुन के ही व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ौदा में गरीब किसानों का पक्ष लेकर जो सुधार कार्य किया, उसको देखकर आलोचक भी उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे थे। राज्य का कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जिस पर रमेश चंद्र दत्त की पैनी दृष्टि ना थी। उसमें कुछ न कुछ सुधार हुए ही हुए थे। बड़ौदा राज्य में उनके प्रमुख सुधारों का उल्लेख करना यहाँ बिल्कुल जरूरी है। किसानों का कर भार घटाना, दुखदायी करों और शुल्कों को बंद करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, राज्य परिषद का संगठन, प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और बड़ौदा राज्य में धनिकों द्वारा उद्योग और व्यवसाय की उन्नति कराना, ये सारे कार्य रमेश चंद्र दत्त ने किए थे। 1907 में विकेंद्रीकरण कमीशन की नियुक्ति हो गई। उसके एक भारतीय सदस्य रमेश चंद्र दत्त ही थे। 2 साल तक इस कमीशन में काम करने के बाद वो भारत लौट आए और जून 1909 में उनकी नियुक्ति बड़ौदा राज्य के दीवान के पद पर हो गई। 6 महीने भी काम नहीं कर पाए थे कि भारत के बड़े लाट की अगवानी में काम करने के कारण वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए और 30 नवंबर 1909 को वो इस संसार से विदा हो गए। अपने जीवन काल में उन्होंने कम से कम 18 ग्रंथों की रचना की। इनमें से अधिकांश वे ग्रंथ हैं जिनको सरकारी अधिकारी रहते हुए छुट्टी के दिनों में उन्होंने लिखा था। इनमें से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं यूरोप में 3 साल 1872 में लिखा, बंगाल के किसान 1875 में, बंगाल का साहित्य लिखा उन्होंने 1888 से 90 के बीच में, प्राचीन भारत की गाथाएं 1894 में। ये चारों ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में हैं। बांग्ला इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह रमेश चंद्र दत्त ने लिखे थे। पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो आज हमने केंद्रित किया है रमेश चंद्र दत्त पर। रमेश चंद्र दत्त ने ऐतिहासिक और दो सामाजिक उपन्यास बांग्ला में लिखे। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम हैं बंग विजेता, माधवी कंकड़, राजपूत जीवन संध्या और महाराष्ट्र जीवन प्रभात। इन चारों उपन्यासों में मुगल शासन के 100 वर्षों का इतिहास लिखा गया है, इसलिए 100 वर्ष नाम से एक पुस्तक भी निकाली गई, जिसमें चारों उपन्यास एक साथ छापे गए थे। अंतिम दो ऐतिहासिक उपन्यासों का भारत के अलावा विदेशों में भी बड़ा मान हुआ था। रमेश चंद्र ने हिंदू शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था और इन पर लिखना भी चाहते थे। बंकिम चंद्र ने उनके इस विचार का स्वागत किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 2 खंडों में हिंदू शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की। रमेश चंद्र ने जो उपन्यास लिखे उनसे उनकी प्रगाढ़ देशभक्ति और कल्पना की उड़ान का परिचय हमें मिलता है। समालोचकों का कहना है कि ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि सुंदर रूप से की गई है। सामाजिक उपन्यासों में गांवों का जो चित्र रमेश चंद्र ने खींचा है वो अभूतपूर्व है। बंगला भाषा में इस तरह के सामाजिक उपन्यास रमेश चंद्र ने ही पहले पहल लिखे थे। नौकरी से अलग होने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में 4 और ग्रंथ रचे थे, इंग्लैंड और भारत। दूसरा लिखा भारत का आर्थिक इतिहास। तीसरा ग्रंथ था महाभारत और रामायण। इसका उन्होंने अंग्रेजी में पद्यबद्ध अनुवाद किया था। भारत में दुर्भिक्ष, इन चारों अंग्रेजी ग्रंथों के प्रकाशन का उद्देश्य यही था कि अंग्रेज भारतीय संस्कृति में रुचि लेने लगे। उन्हें भारत में अपने देश की अभारतीय नीति के कुपरिणामों को समझने और भारतीय शासन में भारतीयों का अधिकाधिक प्रभाव बढ़ाने के लिए वो विवश हो सके। 1890 से 1904 तक न जाने कितनी सभा सोसाइटियों में रमेश चंद्र बोलते थे और न जाने कितने विषयों पर उन्होंने लेख लिखे, लेकिन उनकी चेष्टा यही रही कि भारत के कष्टों को जानकर इंग्लैंड के अंग्रेज भारत के शासन में अभारतीय नीति को बदल दें। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अंग्रेज कर्मचारियों ने भारत में जो लूट मचाई थी, उनकी कहानी आज भी हमें दत्त महाशय लिखित भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास के प्रथम खंड में देखने को मिल जाती है। उन्होंने बार बार इस बात को स्वीकार किया कि अपनी मातृभाषा में लिखकर ही कोई व्यक्ति अमर हो सकता है, विदेशी भाषा में लिखकर नहीं। रमेश चंद्र दत्त ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था भारतीयों को अपनी पुरानी कला और संस्कृति के गौरव का मान करना सिखाना। जब वो अभारतीय परिस्थिति में राजनीतिक कार्य करते थे, सरकारी नौकरी में या स्वतंत्र रूप से, उस समय देश की वो परिस्थिति नहीं थी जो बाद में हो गई। लॉर्ड कर्जन ने रमेश चंद्र दत्त से भेंट में कहा था कि भारत में तो एकाधिपत्य राज्य ही चल सकता है। लॉर्ड कर्जन खुल्लम खुल्ला इस बात को दोहराते थे कि भारत में तानाशाही का बोलबाला रहेगा। ऐसी अवस्था में जिन कर्मठ देशभक्तों ने भारत को स्वराज की ओर बढ़ाया, उनमें रमेश चंद्र का नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के प्रति उन्होंने सदा उदारता का व्यवहार किया। इस संबंध में कभी उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं हुई। गोखले जी उनसे छोटे थे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी समवयस्क, पर उन दोनों की ही प्रशंसा उन्होंने मुक्त कंठ से की थी। मृत्यु से पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र से रमेश चंद्र दत्त की निस्वार्थ देशभक्ति टपकती है। इस पत्र का सार है, एक पीढ़ी के जीवन काल में हमने कैसी आश्चर्यजनक क्रांति देखी है। भारतीय राष्ट्र के विचारों और धारणाओं में कितना परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तन लाने में तुमने कितना उच्चतम भाग लिया। एक एक करके हमारे साथ ही गिरते जाते हैं। बैनर्जी चले गए, आनंद मोहन चले गए, लाल मोहन चले गए, हम दोनों भी शीघ्र ही उठ जाएंगे। लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रथम चरण का जो इतिहास होगा, उनमें उन देशभक्तों का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा जिनकी बदौलत ये परिवर्तन हुआ है। उन देशभक्तों में तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बहुत संभव है कि रमेश चंद्र की सरकारी नौकरी को लोग भुला दें, लेकिन साहित्यकार और देशभक्त के रूप में उनका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। उसे भूल जाना या भुला देना हम नहीं कर सकते, ऐसे अप्रीतम रमेश चंद्र दत्त लेखक को हमारा नमन। तो श्रोताओं, रमेश चंद्र दत्त को हम देते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां 11 अगस्त से रूपाभ प्रदर्शनी श्रृंखला के अंतर्गत चित्रों और शिल्पों की समूह प्रदर्शनी का शुभारंभ।

0: इस मौके पर हमने बात की वहां मौजूद कलाकारों से।
1: मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ।
2: पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में आप कैसे आईं? यह महज एक इत्तेफाक है या बचपन से आप चाहती थी आर्टिस्ट बनना?
1: मैं बचपन से पेंटिंग करती थी और धीरे धीरे उसको अपने एक कहते ना कि अपनी हॉबी में रखा उसको मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना एमए ग्रेजुएशन और मेरा पीएचडी भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही किया, तो मैंने अपना पूरा फील्ड, पूरी चीज़ें अपनी अपने पेंटिंग में ही करी है।
2: तो ये सब आपने भोपाल में किया?
1: जी हाँ।
2: तो ये आपका सफ़र कैसा रहा?
1: देखिए, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया क्योंकि देखा उन्होंने कि हाँ काम अच्छा है। फिर मैंने पहले तो इतना नहीं था पता कि इस फील्ड में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, है ना, अपना फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। हमारी फील्ड में बहुत सारे कैंप होते हैं, तो पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। पर जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तब मुझे पता लगा कि इसमें कैंप भी हैं जिसमें ये लोग हमें इनवाइट करते हैं, पे भी करते हैं, हमें पेंटिंग बना के देनी होती है। तो धीरे धीरे करके फिर इस चीज़ में मैं अपने आप को मैंने आगे बढ़ाया और अभी काफ़ी सारे कैंप भी किए हैं, एग्जीबिशंस भी करी हैं, ये भारत भवन में हमारा ग्रुप शो।
2: पहली पेंटिंग आपकी कौन सी थी, उसको थोड़ा सा याद कीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, सब बदल गई दुनिया, सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग है ना, उसको भी थोड़ा सा बताइए कितना चेंजेस आए।
1: चेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली क्या था, पहले हमें इतना पता नहीं था कि किस, पहले तो ये होता था कि हमने कोई चीज़ देखी उसे देख के ड्रॉ करते थे, पर उसके बाद पता चला कि मतलब ये होता है कि आर्टिस्ट के मन की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने पेंटिंग में निकालते हैं। फिर जब धीरे धीरे सबके काम देखे तो समझ आया कि हाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने काम को चेंज किया। फिर अभी मैं अपने, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे नारायण, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन पे, उनको लेके और नारायण को लेके मैं पूरे पेंटिंग में आप देखेंगे ना तो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें पेन से, तो मैं ऐसा मैंने काम शुरू किया। मैं जैसे हमारे भारत भवन में ही कई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अखिलेश सर हैं, यूसुफ सर हैं, उसके अलावा जब यहाँ कैंप हुए थे विजय आचरेकर सर हुए, मनोज सर हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन सब का काम देखा। और भी भोपाल के काफ़ी लोग हैं।
2: जो कलाकार होता है, जो वो जो सोचता है वो बनाता है ना। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज़ हम सोसाइटी से, समाज से भी लेते हैं जो घटता है, क्या ऐसा भी होता है?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट को भी अपनी पेंटिंग्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये तो होता है।
2: कोई नया इंसान जो नहीं जानता पेंटिंग को, जैसे कि मैं ही अगर देखूंगा तो जो समझने वाले होंगे वो अलग तरह से समझे, मैं शायद मैं ना समझ पाऊँ। एक नया इंसान जो आके चले जाता है, कोई क्या गायन का हो या थिएटर हो या पेंटिंग हो, आप जो बनाती हैं तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है? मैं ये नहीं पूछूंगा 8 दिन में बनती है, महीने भर बनती है, वो अलग अलग शायद डिपेंड करता हो, तो प्रोसीजर उसका क्या रहता है थोड़ा सा वो ज़रूर समझाइए। और एक कलाकार में क्या भावनाएँ आती हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा हम मतलब अपने दिमाग में चीज़ें वो करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कॉपी में हम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या इंक्लूड करना है। मतलब एक दो दिन तो आप ये मान लीजिए कि हम काम करते भी हैं तो भी हम अपनी कॉपी में ही उसको और मेमोरी में जो भी आता है उसको ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम कैनवस पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिर उन पर कलर्स लगाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे फिर कलर करके फिर वो कंप्लीट हो जाता है या फिर भी लगता है। मतलब काम तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है या कुछ ना कुछ बनाना है, तो वो चीज़ तो रहती है, पर कंप्लीट ऐसे ही करा जाता है।

0: मैं डॉक्टर स्वाति एम जैन हूँ, भोपाल से ही हूँ।
1: कला की दुनिया में आप, मतलब पेंटिंग दुनिया में आप कैसे आ गए?
0: एक्चुअली मैं भोपाल की हूँ और मेरा पूरा बचपन और अभी तक सारा टाइम मेरा भोपाल में ही निकला है। भोपाल में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब मैं, हमारे स्कूल में सर थे सचिदा नागदेव सर, उनका काम देखती थी, उनको देखती थी, तब से मेरा बहुत मन था इस फील्ड में आने में। बट मैं साइंस स्टूडेंट थी तो 12th तक मेरा साइंस था और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अपने फैमिली में कहा कि मुझे अब मुझे आर्ट की फील्ड में ही जाना है, मुझे साइंस वगैरह नहीं चाहिए। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे कॉलेज ख़त्म किया, एमए किया पीजी करने के बाद, और उस बीच में मतलब बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही, अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे तो थोड़ा सा और वो लगा कि हाँ चलो अब मुझे इस फील्ड में ही जाना है। तब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। क्या होता है कि लाइफ तो चलती रहती है, अलग अलग सब, हर एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी होती है। जैसे मेरे जर्नी की बात करें तो मैंने जब एमए किया उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, वो किया, वो कर ही रही थी कि मेरा जॉब, हाँ जी वो मैंने भोपाल से किया, फिर मेरा जॉब लग गया। तो मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब मेरा थोड़ा सा गैप हुआ, फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, पहले तो सोचा था कि अब शादी हो गई तो अब ये करेंगे वो करेंगे, बट एक लंबा, हाँ एक ठहराव समझ लीजिए लगभग 10-11 साल का एक लंबा गैप आ गया। उस बीच में मैं अपना घर में काम करती रहती थी बट बाहर नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा जॉब लगा, मैंने 5 इयर्स जॉब किया, घर से बाहर निकलना था, लोगों से मिलना था, वो सब किया, जी सब भोपाल की बात है, तो वो किया। उसके बाद मुझे कहीं लगने लगा कि अब मुझे लोग जानने लगे हैं, फिर से पहचानने लगे हैं, बट मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। एक लाइफ हो गई कि घर और स्कूल, बस उसके अलावा कोई तीसरा कुछ नहीं था। तो मैंने अपना जॉब छोड़ा और फिर मैं पूरी की पूरी तरह से आर्ट की फील्ड में, जी कहीं ना कहीं मन में एक घुटन सी होने लगी थी कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ।
1: यही तो कलाकार की पहचान है,
0: जी। तो मैंने अपना स्कूल का जॉब छोड़ा और उसके बाद फ्रीलांस करना शुरू किया और कर रही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से मिलती है, कभी होता है कि हमारे कुछ काम किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, तो वो हमारे लिए बोल के भी जाते हैं, बट ये कि हम उससे और नई चीज़ें सीखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाएँ हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
1: आपने कहा ना, एक बात मुझे याद है, आपने कहा कि आपका जो काम रहता है, तो कभी ऐसा भी होता होगा जो काम आपको बहुत पसंद है वो लोगों की समझ में नहीं आता होगा, और जो आपको कमज़ोर लगता है?
0: हाँ होता है, कई बार लगता है कि मुझे लगता है ये काम तो मेरा बहुत सबसे फेवरेट काम है, सब है, लेकिन सामने वाले को लगता है अरे यार इसमें तो ये नहीं है वो नहीं है, और जो काम मैं डर रही होती हूँ लगाने में उसकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग फ़र्क पड़ जाता है सबकी, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग है, उनकी सोच अलग है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है किसी को कोई चीज़ पसंद आती है।
1: जब आप शुरुआती दौर में और फिर इतने लंबे टाइम में, वो कौन से आर्टिस्ट थे जिनको आप देख रही थी, उनके काम को देखती थी, उनसे आप इंस्पायर होती थी, उन लोगों के नाम ज़रूर लीजिए।
0: हाँ जी, बेसिकली मैं स्टार्ट किया था तो मुझे लाइनिंग का काम बहुत पसंद है, बारीक काम, तो मैं मधुबनी आर्टिस्टों को देखती थी, मानव संग्रहालय में उनके वर्कशॉप्स होते थे, उस समय एक यशोदा देवी जी करके आए थे, तो उनका काम मैं देखती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और लाइनिंग वाले काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, जितना बारीक काम होगा उतना मज़ा आता है, तो उनको देखा, मधुबनी में थोड़ा काम किया, फिर उसको करते करते धीरे धीरे मैंने अपना एक स्टाइल निकाला और फिर मैंने अपना एक नया काम शुरू किया, फिर मैंने अपना धीरे धीरे काम निकाला और काम करना शुरू किया।
1: अच्छा, तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था, आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि जब कलाकार बनाता है अपनी किसी भी कला से, वो तो आप लोगों के मन में क्या चलता है?
0: देखिए, जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे जो काम है उनमें आपको सब कामों में टेक्सचर का ज़रूर दिखेगा, मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद है, वो टेक्सचर्स मैं सबसे पहले अपनी उस पर डालती हूँ, और फिर जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चलता है, जैसे आप इस पेंटिंग में भी देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में एक टेक्सचर डाला हुआ है, फिर उसके बाद मैं अपना जो मेन काम होता है वो स्टार्ट करती हूँ कि मुझे उस कैनवास के ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, तब उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा काम शुरू होता है।
1: अच्छा, तो ये पूरा इस तरह से तो इस पर अगर अपन एग्जाम्पल तो कितने दिन लगते हैं?
0: अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है, जैसे ये हाँ जैसे वो लाइनिंग वाला काम है मेरा राम मंदिर के ऊपर, तो इसमें मेरे को कम से कम 1-1.5 महीना लग गया, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करके किया। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई काम बहुत जल्दी करना होता है तो हम उसे 3-4 दिन में भी ख़त्म करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमें कहीं एग्जीबिशन के लिए काम करना और ऐसा है कि अभी हमें तुरंत हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम रहता है।
1: टाइम अगर आप लोगों को बस चले तो आप आराम से करें।
0: हाँ मैं तो फिर सोच सोच के, क्या होता है ना कोई काम हम जब करते हैं तो फिर हम उसको बैठ के दूर से देखते भी हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या ठीक लग रहा है कि और क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही। कई बार होता है हमने कुछ बनाया बट हमको वो चीज़ बाद में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको फिर से नए सिरे से करते हैं।
1: जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें इस पेंटिंग की फील्ड में, उनसे आप क्या कहेंगी?
0: देखिए सबसे पहले अगर कोई भी आर्टिस्ट की फील्ड में आना चाहता है तो वो कम से कम एग्जीबिशंस में जाए, लोगों का काम देखे, जितना वो देखेगा उतना उसको सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिस, मतलब आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाजी में आप चाहोगे कि आपको फेम मिल जाए और उसके पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको लोग पूछ रहे हैं, बट जब लोग देखेंगे कि ये तो खाली ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनका काम में कुछ वो नहीं है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आपका खुद का मन ही ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है कि आप जितना लोगों को मिलोगे और जितने आर्टिस्टों का काम देखोगे आपके दिमाग में उतने आइडियाज़ आएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे मेन काम है कि आप देखो, जितना देखोगे उतना सीखोगे, वो चीज़ है।

0: मेरा नाम नेहा सैयद है। मैं एक सेरेमिक आर्टिस्ट हूँ और सेरेमिक में सूफीज़म पे मैं काम करती हूँ।
1: मैं थोड़ा सा सेरेमिक का आपने जिक्र किया, तो सेरेमिक की फील्ड में आप कैसे आ गई?
0: मैं सीखकर तो अपने ग्वालियर से ही आई थी। अच्छा। मैंने यहाँ के प्रैक्टिस स्टार्ट की और मुझे गाइडेंस जरूर मिलता रहा सबका, तो उनके गाइडेंस में फिर मैंने नए नए ग्लेजेस एक्सप्लोर करे और बहुत सारी चीज़ें मैंने नई करने की कोशिश की जो कि ग्लेज में। फिर मैं बाहर भी बहुत सारी एग्जीबिशंस मैंने कर चुकी है बाहर, और पोटस मार्केट भी मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ।
1: अच्छा, तो सेरेमिक आर्टिस्ट लोग तो नहीं समझते, क्या है
0: सेरेमिक? उनको ऐसे बताना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग तो जानते हैं कि सेरेमिक क्या होता है, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता तो उनको बताना पड़ता है चीनी मिट्टी जो होती है उसका ही एक रूप है ये, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है। तो इस तरह से मैं उन्हें बताती हूँ। और मेरी जो

0: में भी मुझे कई अवार्ड मिले, पेंटिंग में भी मिले, तो मैं पेंटिंग भी करती थी और स्कल्पचर भी। फिर मैंने स्कल्पचर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने ग्रेजुएशन स्कल्पचर से किया। उसके बाद मैंने उसमें सोचा कि मैं क्या मीडियम ले सकती हूँ, क्योंकि स्टोन पे जब मैं काम करती थी तो मेरे पूरे हाथ छिल जाते थे। फिर मैंने सेरेमिक लिया कि मैं क्ले में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो मैं सेरेमिक पे और अच्छे से कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या है कि सेरेमिक में जब मैं सूफी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, वो अपने आप उसका जब आप फेस देखेंगे तो वो पूरा खुद से एक्सप्रेस हो जाए। मुझे कुछ अलग से बताने की या दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं ये चाहती हूँ। तो मैं उसके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं पूरे इस तरह से बनाती हूँ कि लोग देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये पूरा ऊपर खोया हुआ है।
1: ये बनता कैसे है?
0: सेरेमिक तो देखिए एक तरह के क्ले है, तो क्ले को मैं किसी भी चीज़ का सांचा या मैं टूल्स भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर्स से ही पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ और उसी से उसका शेप वगैरह और नीचे का जो स्कर्ट होता है उसका पूरा फॉल वगैरह मैं पेपर के थ्रू देती हूँ कि उससे उसमें अच्छे से फॉल आ जाए। और जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, बुक्स बनाई, तो ये भी सारी फ्री हैंड है, मैंने कोई मोल्ड वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। और बनने के बाद में हम एक फायरिंग करते हैं जो 800 टेम्परेचर तक जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मजबूती आ जाती है उसमें। उसके बाद में फिर हम इस पर ग्लेज करते हैं जो भी कलर्स मुझे करना होता है, फिर हम दोबारा से इसको फायर करते हैं। उसमें लगते हैं 8 से 10 घंटे, तो वो 1200 टेम्परेचर तक जाता है। उसके बाद में उसमें जो चमक आती है, जो इफ़ेक्ट आता है, उसके बाद में आता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद का जीवन बड़ी ही घटनाओं से भरा रहा है। उनके भारत भ्रमण के दिनों में वे भारत के लगभग सभी प्रांतों में गए। उन स्थानों में उनकी भेंट तरह तरह के लोगों से हुई। उन्हें खट्टे मीठे कड़वे अनुभव भी हुए, पर कभी वे विचलित नहीं हुए। शांत भाव से सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपने ज्ञान तथा भक्ति से सबको प्रभावित किया। केवल मानव ही नहीं, प्रकृति एवं पशु पक्षी भी उनके सामने माथा टेक देते थे।
1: वृंदावन की एक और मजेदार घटना है। एक दिन स्वामी जी ने अपने एकमात्र वस्त्र कौपीन को धोकर किनारे पर सूखने को डाल दिया और स्वयं स्नान करने के लिए श्री राधा कुंड के पवित्र जल में उतर पड़े। स्नान कर चुकने के बाद स्वामी जी ने देखा तो कौपीन गायब। बड़े विस्मय के साथ उन्होंने देखा, एक बंदर कौपीन उठाकर ले गया है और वह वही किनारे पर एक वृक्ष की डाल पर बैठा है। जल में खड़े खड़े उन्होंने उस बंदर से काफी अनुनय विनय की, पर बंदर ने केवल मुंह बनाकर कौपीन ना लौटाया। तब तो ये सोचकर कि संपूर्ण नग्नावस्था में अब कैसे भ्रमण करेंगे, वे बालक की तरह व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, क्या यही श्री राधा रानी की इच्छा है? तुरंत उनके व्यथित हृदय में अभिमान जाग उठा। जल में से निकलकर स्वामी जी घने जंगल में घुस गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक पहनने का वस्त्र ना मिलेगा, तब तक इसी अरण्य में ही अनशन करते रहेंगे।
0: इतने में उन्होंने सुना कि कोई दूर से उन्हें बुला रहा है। घूमकर देखा, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से उनकी ओर चला आ रहा है, पर स्वामी जी ने उसकी परवाह न की। वे अपनी धुन में ही आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आकर स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। स्वामी जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ खाद्य पदार्थ है तथा एक नया गेरुआ वस्त्र भी है। उस व्यक्ति के अनुरोध से मंत्रमुग्ध जैसे स्वामी जी ने उसके उपहारों को जैसे ही ग्रहण किया कि वह व्यक्ति उस घने जंगल में अदृश्य हो गया।
1: संभव है वो व्यक्ति स्वामी जी की दुर्दशा दूर से ही देख रहा हो। खैर, वस्त्र पहनकर स्वामी जी फिर राधा कुंड लौट आए। आकर उन्होंने देखा कि उनका वो पहले का कौपीन जहाँ पर उन्होंने उसे सुखाया था वहीं पर सुरक्षित रखा हुआ है। अब तो वे बड़े विस्मित हुए। इस घटना से सारी युक्ति और विचारों की सीमा को पार कर उनका हृदय प्रेमानंद से भर गया। वे आनंद विभोर हो गए और तन्मय चित से श्री राधा कुंड के तट पर कृष्ण गुणगान करने लगे।
0: वृंदावन प्रवास के दिन खत्म हुए। विवेकानंद वहां से हरिद्वार जाना चाहते थे। रास्ते में हाथरस नामक शहर में वे थोड़े दिन रुके। एक दिन थके हारे विवेकानंद एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। इतने में हाथरस स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त महाशय वहां से गुजरे। उन्होंने विवेकानंद को पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए देखा। शरद चंद्र को जाने क्या लगा, वे उनके पास आए। युवा सन्यासी के मुख पर एक ऐसा सौम्य भाव था जिससे आकृष्ट होकर के शरद चंद्र ने सोचा कि साधु के लिए कुछ करना अच्छा होगा। उन्होंने कहा,
2: प्रणाम महाराज।
3: कल्याण हो तुम्हारा।
2: महाराज, आप क्रांत दिख रहे हैं।
3: हाँ, चलना बहुत हुआ, थक गया हूँ।
2: महाराज, क्या आप भूखे हैं?
3: हाँ, भूख तो लगी है।
2: तो दया कर मेरे घर चलिए और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मेरा घर पास ही है महाराज।
3: क्या खिलाओगे?
1: शरद चंद्र जौनपुर में पले बढ़े थे। वे बंगला अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने जवाब में फारसी का एक शेर पढ़ दिया जिसका अर्थ है,
2: हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं अपना कलेजा मसाले में पकाकर तुम्हें खिलाऊंगा।
1: दोनों हंस पड़े। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर शरद चंद्र ने उन्हें हाथरस में उनके घर में रहने का अनुरोध किया। विवेकानंद मान गए।
0: आनंद मंगल से भरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से कहा,
2: मुझे कुछ उपदेश दीजिए महाराज।
3: ज्ञान प्राप्ति अगर करना चाहो चंद्र वदन पर राख मलो।
2: जी।
3: कर ना सको ये तो इसी क्षण अपने पथ पर चले चलो।
2: स्वामी जी आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ।
1: शरद चंद्र के बड़े भाई अधर चंद्र गुप्त ने बहुत पहले ही सन्यास ग्रहण किया था, इसलिए शरद चंद्र के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। स्वामी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने सुना कि ब्रिजेन बाबू नामक एक भद्र व्यक्ति निकट ही रहते हैं। जितना कुछ सुना उससे स्वामी जी को लगा कि वे जैसे उनके परिचित हों। अतः उनके घर जाकर उनसे मिले। देखते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और ब्रिजेन बाबू ने स्वामी जी से कुछ दिन अपने घर में रहने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद शरद बाबू के घर लौट कर जाएंगे, ये कहकर स्वामी जी तत्काल वहीं ठहर गए।
0: इस मकान में रहने के समय उनके आकर्षण से बंगाली टोला के लोग मानो वहां टूट पड़े। कुछ दिन पहले से इन लोगों में काफी विरोध और मन मुटाव चल रहा था। स्वामी जी के आगमन से वह समाप्त हो गया। समागत व्यक्तियों के साथ वे धर्म और स्वदेश से संबंधी काफी चर्चाएं करते थे। शरद बाबू और उनके मित्र निकट कृष्ण बाबू के घर भी वे अक्सर जाते थे। दोनों के साथ उनकी काफी घनिष्ठता हो गई थी। इन दोनों के आग्रह पर स्वामी जी इसके बाद कुछ दिन लोगों के घर पर रहने लगे और पहले की तरह ही आगंतुक व्यक्तियों के साथ धर्म चर्चा के दिन बिताने लगे। उनके कंठ संगीत से आकृष्ट होकर के अनेक गणमान्य और उच्च पदस्थ व्यक्ति नित्य उनकी बैठक में भाग लेते। संध्या का समय संगीत में ही कटता था।

0: एक दिन शरद चंद्र ने स्वामी जी से पूछा,
1: महाराज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं?
2: देखो बच्चा, मेरा एक महान जीवन व्रत है, किंतु मैं अपनी अल्प क्षमता के कारण ये सोचकर उदास हूं कि इस व्रत का कैसे निर्वाह करूंगा। इस व्रत को पूरा करने का आदेश मुझे अपने गुरु से मिला है
1: जी।
2: ये व्रत है मातृभूमि का पुनरुद्धार करना। इस देश में आध्यात्मिकता का अत्यंत ह्रास हो गया है और सर्वत्र भूख ही भूख व्याप्त है। भारत को सचेतन और गतिशील होना होगा तथा उसे अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व विजय करनी होगी।
1: मैं आपके साथ इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा कहिए महाराज।
2: क्या तुम भिक्षा पात्र और कमंडलू लेकर इस महत कार्य को करने के लिए तैयार हो?
1: जी।
2: क्या तुम घर घर जाकर भिक्षाटन कर सकते हो?
1: हाँ महाराज, आपका आदेश सराखों पर।
3: और परीक्षा देने के लिए हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कुलियों के घर से भिक्षा लेने निकल पड़े। शरद चंद्र के मन की दृढ़ता और साहस देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कुछ दिन इस गुप्त परिवार में रहने के बाद स्वामी जी ने हाथरस छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन शरद बाबू को बुलाकर उन्होंने कहा,
2: सन्यासी के लिए एक स्थान में अधिक रहना अनुचित है और विशेषता तुम लोगों के प्रति मैं एक आकर्षण का अनुभव कर रहा हूं, अतः मेरे लिए शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है।
1: स्वामी जी आप मुझे अपने सत्संग से वंचित मत करिए, अपना शिष्य बनाकर साथ चलिए।
2: क्या तुम सोचते हो कि मेरा शिष्य होने से ही तुम्हारी आध्यात्मिक पिपासा तृप्त होगी? किसी व्यक्ति के गुरु होने की योग्यता मुझ में है या नहीं, इसमें संदेह है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर कर्म किए जाओ, वे ही सब प्रकार के कल्याण करेंगे। मैंने अभी श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने का संकल्प किया है। तुम दुखी न हो, प्रसन्न मन से मुझे विदा दो, मैं फिर से हाथरस लौटने का प्रयत्न करूंगा।
3: शरद चंद्र इस प्रकार की सांत्वना से संतुष्ट होने वाले ना थे। उन्होंने उत्तर दिया,
1: आप कुछ भी कुछ न कहें महाराज, आप जहां जाएंगे मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपको मुझे दीक्षा देनी ही होगी महाराज।
3: विवश हो स्वामी जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। इसके बाद शरद अपना कार्यभार दूसरे को सौंप कर स्वामी जी के साथ ऋषिकेश गए। उनका नया नाम स्वामी सदानंद रखा गया।
0: कल्पना में सन्यासी का जीवन जैसा प्रतीत हुआ था, वास्तव में सामने होकर के शरदचंद ने देखा कि यह उनकी अपेक्षा से भी कठिन है। गृह सुख में अभ्यस्त उनकी दृष्टि में यह सन्यासी जीवन कठोर साधन, अनिश्चितता और शारीरिक कष्टों का सम्मिलित रूप प्रतीत हुआ। वो तो मानो विविधताओं से भरा यह जीवन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। उन दिनों को याद करके शरद चंद्र ने कहा था,
1: एक बार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा करते समय भूख प्यास से अवसन्न हो मेरे मूर्छित हो जाने पर स्वामी जी ने सेवा कर निश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की थी। और एक बार भयावह तेज धार वाली और फिसलन भरे पत्थरों से व्याप्त पहाड़ी नदी को पार करते समय वे पथ प्रदर्शक की भांति मेरे घोड़े को पकड़े पकड़े ले गए थे। मेरे जीवन की रक्षा के लिए कितनी ही बार उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। मित्रों, मैं उनकी बात कैसे कहूं, केवल यही कह सकता हूं वे थे प्रेममय, प्रेम मूर्ति, प्रेम स्वरूप। मैं जब इतना दुर्बल हो गया था कि किसी तरह डगमगाते हुए चल पाता था, तब उन्होंने मेरे सामान, यहां तक कि जूते भी अपने कंधे पर वहन किए थे।
0: बाद में जब भयंकर रोग से पीड़ित शरदचंद्र ने एक बार स्वयं को अत्यंत असहाय समझकर स्वामी जी से पूछा था कि क्या वे उनको सदा के लिए छोड़कर के जाएंगे, तब स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक कहा था,
2: कैसे बेवकूफ हो, क्या तुझे याद नहीं मैंने तेरे जूते तक धोए हैं।
0: और एक बार भ्रमण करते करते उन लोगों ने एक जगह पर आकर के देखा कि मनुष्य की बहुत सारी हड्डियां और गेरवे वस्त्र के फटे टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े हैं। स्वामी जी ने उस ओर उंगली से निर्देशित करते हुए कहा,
2: देखो वहां किसी साधु को बाघ ने खाया है, तुझे डर लग रहा है क्या?
1: नहीं स्वामी जी, आपके साथ रहने पर कोई डर नहीं लगता।
0: नव दीक्षित शिष्य स्वामी सदानंद गुरुदेव के बताए हुए पथ पर कठोर साधना में लीन हो गए, पर शारीरिक परिश्रम में अभ्यस्त न होने के कारण वे नवीन सन्यासी कुछ ही दिनों के बाद अस्वस्थ हो गए। स्वामी जी बाध्य हो शिष्य के साथ फिर हाथरस लौट आए, पर यहाँ आकर स्वामी जी ने भी अस्वस्थ होकर के शैया ग्रहण कर ली। यहाँ के कुछ उत्साही नव युवकों तथा गुप्त परिवार के प्रयत्नों एवं सेवा भाव से थोड़ी समय में फिर से स्वस्थ होकर के स्वामी जी वराहनगर मठ लौट गए। बाद में कुछ दिनों में सदानंद भी स्वस्थ होकर के सन 1888 ईस्वी के नवंबर महीने में मठ में आ गए तथा अन्य सन्यासियों द्वारा उन्हें भी बड़े स्नेह के साथ रामकृष्ण संघ में सम्मिलित कर लिया गया।
3: इस बार स्वामी जी ने सन 1888 ईस्वी में वराहनगर मठ में पहुंचकर पूरा एक वर्ष गुरु भाइयों के साथ आनंद से व्यतीत किया। केवल बीच में एक बार 1889 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य लाभ एवं आत्मीय स्वजनों से मिलने के लिए वे शिमुलत्ता गए थे। हाथरस से लौटकर वे निश्चय ही अपने अनेक गुरु भाइयों को मठ में नहीं देख सके, कारण उस समय वे लोग तीर्थ भ्रमण या तपस्या में निरत थे, किंतु ग्रही भक्तगण अपने अपने घरों में थे। पहले की भांति इस बार भी स्वामी जी अवशिष्ट गुरु भाइयों के साथ ध्यान धारणा में डूब गए।
0: बिहार और उत्तर पश्चिम प्रदेशों में पैदल भ्रमण कर तथा तीर्थ स्थानों में उन्हें विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहारों एवं रीति रिवाजों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने देखा था धर्म के प्रति अनुराग की कमी नहीं है, पर सामाजिक जीवन में स्वाभाविक गतिशीलता नहीं है। यह समस्या केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोगों की ही नहीं वरन भारत के विशाल जन समुदाय की समस्या है। पूर्ववर्ती सुधारकों की तरह जातीय समस्याओं को कुछ इने-गिने तथा कथित शिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से देखने की संकीर्णता उनमें नहीं थी। श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेशों का विश्लेषण कर वे अपने गुरु भाइयों से कहते,
2: दोष धर्म का नहीं है, वरन धर्म के नाम पर धर्म का व्यवसाय करने वाले गुरु पुरोहितों और पंडों ने ही समाज पर अधिपत्य फैलाकर समाज जीवन को पंगु बनाए रखा है। शत शत वर्षों के विधि निषेध के अंधानुकरण ने समाज में एक और जैसे वंश और रक्त की श्रेष्ठता का मिथ्याभिमान सृष्ट किया है। उसी प्रकार दूसरी ओर उसने हीनता बोध विभिन्न संप्रदायों तथा अनेकानेक शाखा प्रशाखाओं वाले कृत्रिम जाति विभाग को जन्म दिया है। यदि हम समग्र भारतवासियों को एक अखंड जाति में परिणित करना चाहते हैं तो हमें इन सब गहरे भेदे हुए संस्कारों के विरुद्ध खड़े होकर ये प्रचार करना होगा कि धर्म की साधना में तथा सामाजिक सुख सुविधा की प्राप्ति में प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है। ये ठीक है कि ये भावधारा लोगों को सहज ही ग्राह्य न होगी, काम उतना सरल नहीं है।
3: इस समय लगभग एक वर्ष स्वामी जी ने वराहनगर मठ तथा बाग बाजार कलकत्ते में बलराम बसु के मकान में व्यतीत किया। अधिकांश समय वे शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। अपने विद्वान गुरु भाइयों के साथ वेदांत और पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करते थे। इसी समय काशी के प्रमदादास बाबू ने इन निर्धन सन्यासियों को वेदांत तथा अष्टाध्यायी के ग्रंथ दान दिए थे। इस बात का उल्लेख स्वामी जी ने अपने एक पत्र में कृतज्ञता के साथ किया है। 1888 ईस्वी फरवरी मास में स्वामी जी एक बार श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कमारपुकुर तथा श्री माता जी की जन्मभूमि जयराम बाटी गए थे और उसके बाद कुछ दिन शिमुलत्ता में रहकर जुलाई मास में कलकत्ता लौट आए थे।
0: इस समय स्वामी जी बड़े उत्साह के साथ उपनिषद और शंकर भाष्य का अध्ययन कर रहे थे और प्रत्येक समस्या व संदेह को मिटाने के लिए काशी में प्रमदा दास बाबू के पास पत्र लिख रहे थे। इस समय 4 जुलाई के एक पत्र में अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रमदा दास बाबू को लिखा,
2: ये बात ठीक है और कई बार मैंने अनुभव भी किया है कि नाना प्रकार के नए नए मतों को मस्तिष्क में धारण करने से समय समय पर कष्ट झेलना पड़ता है, परंतु अब की बार तो मुझे एक दूसरे ही प्रकार का रोग हुआ है। ईश्वर के मंगल हस्त में मेरा विश्वास अभी मौजूद है जो सदा अटल रहेगा। शास्त्र पर भी मेरा विश्वास है, परंतु भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैंने जीवन के गत 5-7 वर्ष लगातार कई प्रकार की विघ्न बाधाओं को देखा, परंतु पूर्ण रूप से स्वयं अब तक कुछ भी नहीं कर सका हूं, यही बड़ा कष्ट है।
0: उन्होंने एक दूसरे पत्र में लिखा,
2: विशेष रूप से कलकत्ते के पास रहकर तो कुछ भी होने का उपाय नहीं दिखता। मेरी मां और 2 भाई कलकत्ते में रहते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। मझला भाई कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है और तीसरा छोटा है। उनकी स्थिति पहले ही बहुत अच्छी थी, परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद से बहुत शोचनीय हो गई है। यहां तक कि कभी कभी उपवास करके ही दिन व्यतीत हो जाता है। इस पर भी संबंधियों ने उन्हें कमजोर समझकर पैतृक घर से निकाल बाहर कर दिया था। अंत में हाईकोर्ट से मकान का कुछ भाग मिला, पर हुआ ये कि उस मुकदमेबाजी में वे सब कुछ खो बैठे, और ऐसा तो प्रत्येक मुकदमे में होता ही है।
3: इन पत्रों में उनकी मनोदशा लक्षित होती है। उन दिनों में वे बहुत बेचैन रहा करते थे। उन्होंने प्रमदा बाबू को अपनी मनोवेदना जताई थी।
2: कलकत्ते के पास रहने से उनकी दुखद स्थिति देखने के कारण कभी कभी रजोगुण की प्रबलता से अहंकार के विकार रूप कार्यकारी वासना का उदय हो जाता है। उस समय मन के भीतर बड़ा घोर संग्राम होने लगता है। इसलिए तो मैंने लिखा है कि मानसिक स्थिति भयंकर है। अब मुकदमा भी समाप्त हो गया है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ दिन कलकत्ते में रहकर सब कुछ समाप्त कर इस शहर से हमेशा के लिए विदा ले सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हृदय महान ईश्वरी बल से बलवान हो और सभी प्रकार की माया मुझसे दूर हट जाए।
0: परंतु दिसंबर महीने के पहले स्वामी जी कलकत्ता छोड़ न सके। वे कलकत्ते से वैद्यनाथ गए। वहां कुछ दिन रहकर के उनके हृदय में काशी दर्शन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हुई, परंतु विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। 30 दिसंबर सन 1889 को वे प्रयाग धाम से प्रमदा बाबू को लिखते हैं,
2: आपको एक पत्र में लिखा था कि 2-1 दिन में काशी जा रहा हूं, परंतु विधि के विधान का खंडन कौन कर सकता है। मुझे इस बात की सूचना मिली कि योगानंद नाम के मेरे एक गुरु भाई चित्रकूट ओंकारनाथ आदि का दर्शन कर यहां आकर माता के रोग से पीड़ित हो गए, अतः उन्हीं की सेवा टहल करने के लिए मैं यहां आया हूं। अब मेरे गुरु भाई संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, परंतु मेरा मन काशी जाने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है।
0: हम देखते हैं कि स्वामी जी के अशांत मन को शांति नहीं मिली। वे कभी विश्वनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। क्या उन्हें वहां शांति मिली, ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजने वाले हैं और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें। कल सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जीवन सौरभ झरने का पानी, 7:10 पर, और शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, सुबह 7:20 पर, और पुनः प्रसारण 5:10 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 8 बजे और पुनः प्रसारण 6 बजे वतन कारा कार्यक्रम सुनिए ठाकुर केसरी सिंह बारहट की पुण्यतिथि पर। कार्यक्रम आमने सामने पेश किया जाएगा सुबह 8:30 पर और पुनः प्रसारण 6:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे पद्मश्री नारायण व्यास की खास चर्चा। वागर्ध कार्यक्रम सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे कविता पाठ सविता भार्गव का। विशेष कार्यक्रम जैज संगीत समारोह पाठ एक सुनेंगे आप उसका 9:30 पर सुबह और शाम को 7:30 पर। रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा सुबह 10 बजे और पुनः प्रसारण 8 बजे, 10:30 और 8:30 पुनः प्रसारण हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम का आप सुन सकते हैं भिकाजी रुस्तम जी कामा की पुण्यतिथि पर। कला कल्लोलनी पंडित विनायक राव पटवर्धन पर आधारित सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण 9:00 आप सुन सकते हैं, और 11:30 पर सुबह और पुनः प्रसारण 9:30 पर आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद, जिसका भाग आप 18 सुन सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और अब दीजिए अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को अनुमति, सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।